हम स्वागत करते हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की पहली तिथि, तदनुसार 21 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ होती है हम

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। समाचारों के तुरंत बाद सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को। कृपया कुछ पल करिए प्रतीक्षा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले तीन टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: प्रस्तुत है वंदन वा

आज का चिंतन। महर्षि पतंजलि के अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, मन की चंचल वृत्तियों को पूरी तरह शांत और नियंत्रित करना ही योग है। अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

अब हम सुनते हैं बेमिसाल फिल्म का एक गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत है। सुनना चाहा है आप सबों ने। पत्र आया है जय हिंद तेंदुआ नबी नगर से, गिरेंद्र सिंह, अजीत सिंह, सुजीत और टुनटुन सिंह का। ये पत्र है कैथोलिक चर्च न्यू एरिया गली नंबर 6 से। सुजयकांत सिंह, वीना सिंह, अनुज कुमार, अंकित कुमार और उनके प्यारे दादा दादी। इस गाने के लिए आखिरी पत्र है ग्राम नहोना सासाराम से, भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल सिंह, जयनाथ सिंह, जगदीश सिंह, हृदयनाथ सिंह, दशरथ सिंह, विमला देवी, मास्टर अनिल सिंह, रविंद्र सिंह और डमरू कलाकार का। आप सबों ने सुनना चाहा है बेमिसाल फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
1: चलो
0: कहाँ
1: एडमिशन कराने?
3: खाता हुआ एक्टिव,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: स्वागत है कार्यक्रम पसंद आपकी में, और आप इस समय सुन रहे हैं अपने पत्रों पर आधारित फिल्मी गाना। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं किशोर कुमार और वंदना शास्त्री की आवाजों में, पलकों की छांव में, फिल्म से गुलजार साहब ने इसे लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है। सुनना चाहे आप सबों ने ग्राम पंचायत बठेना बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चटौदा सारा गांव से आप हैं सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। तो ये सुनिए अपने मनपसंद का यह गीत फिल्म पलकों की छांव में, फिल्म से।

0: दिया डाक।
1: कार्यक्रम के आखिर में सुन लेते हैं एक और गीत किशोर कुमार, माफ कीजिएगा, लता मंगेशकर की आवाज़ में, समाधि फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, आर डी बर्मन ने संगीत दिया है। सुनना चाहा है आप सबों ने। समाधि फिल्म के लिए हमारे पास पत्र आया है। मछली गोदाम कैदी मुंडा रायगढ़ से भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लल्लू, रितु सिंह, ये श्रोता हैं। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह, लखविंदर सिंधु, महावीर सिंधु, गुरुचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी। और कार्यक्रम के आखिरी पत्र है फुटानी चौक नरहन एस्टेट से ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बीबी आराध्या, लल्लू पंडित, मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से भाई फटफटिया जा, गुंजन परासर, अमित, सुमित, छोटू, बी के सूर, गनैया। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम के आखिर में समाधि फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: आटा सजन जाए लेकर जिया, नैन सुई लगे तो निकले पिया, हाय रे बंगले के पीछे तेरी बेरी।
1: समाधि फिल्म के इसी गीत के साथ पत्र आधारित कार्यक्रम पसंद आपकी से दीजिए इजाजत। अपने रेडियो दोस्त विनोद को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:45 हो चुके हैं। आकाशवाणी के पटना केंद्र से सुनते हैं प्रादेशिक समाचार थोड़ी देर में।
2: अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से जुड़ी किसी भी योजना की जानकारी या अपनी शिकायतों का समाधान तो डायल करें टोल फ्री नंबर 1800-345-6345।
3: सभी दिवस पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सहायता आपके हक और तरक्की का साथी।
2: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं।
5: जैसे
4: कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है
5: तो लेन देन
4: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
5: ओ,
4: जैसे UPI से।
5: अच्छा।
4: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
5: वो क्या है मम्मी जी?
4: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
5: हम भी ना मम्मी जी।
6: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
7: हर लेन देन अब है आसान।
8: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। योग दिवस पर पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित हुआ मुख्य समारोह। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने किया सामूहिक योगाभ्यास। देश भर में नीट यूजी की परीक्षा आज दोबारा आयोजित की जा रही है। प्रदेश के 34 जिलों में बने केंद्रों पर 1,56,000 से अधिक परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। और जदयू की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठक आज पटना में, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व

0: कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित योग शिविर में योगाभ्यास किया। योग शिविर में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी योगाभ्यास किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मुजफ्फरपुर में, नित्यानंद राय उजियारपुर में और सतीश चंद्र दुबे वाल्मीकि नगर में योग कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से भी योग शिविर के साथ योग दिवस पर अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पटना उच्च न्यायालय में भी इस अवसर पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुंगेर, शेखपुरा और अररिया समेत सभी जिलों के शैक्षणिक संस्थानों में भी योग शिविर आयोजित किए गए। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। यह परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। वहीं परीक्षा के लिए राज्य के 34 जिलों में 331 केंद्र बनाए गए हैं। राज्य सरकार ने कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। परीक्षा में 1,56,000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। इधर नीट यूजी पुनर्परीक्षा को लेकर पटना में कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा भवन के आसपास विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। कई मार्गों पर वन वे ट्रैफिक लागू रहेगा। ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए कई मार्गों पर डायवर्जन लागू किया जाएगा।
2: जो बापू परीक्षा सेंटर खास करके है, जहाँ पर जाम की समस्या प्राय हो जाती है, उसके मद्देनजर हम लोग ट्रैफिक की व्यवस्था में कुछ डायवर्जन प्लान बनाए हैं। जो धनकी के तरफ से, चाहे जो पहाड़ी के तरफ से जितने पिकअप हैं, टेम्पो हैं, ई रिक्शा हैं, 8 बजे के बाद हम उसको डाइवर्ट किए हैं। अगर उनको टाउन में आना ही है तो बिस्कुमान ऊपर है, बिस्कुमान से होके जो कुम्हरार वाला पुल है उससे फिर जा सकते हैं टाउन में। जो भी बस धनकी पर आएंगे, जो गांधी सेतु की तरफ से आते हैं, चाहे जो पूर्वी दिशा से टोल प्लाजा की ओर से आते हैं, न्यू बाईपास होकर, मीठापुर होकर, गांधी मैदान, चाहे कहीं भी अन्यत्र जाना है तो जाएंगे। धनकी से या बिस्कुमान से कोई भी बस नीचे, चाहे कोई भी कॉमर्शियल गाड़ी, जब तक एग्जाम होगा उस पीरियड में जाने की अनुमति नहीं होगी।
0: इधर परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग की ओर से विशेष बसों का परिचालन किया जा रहा है। साथ ही रेलवे की ओर से भी नीट अभ्यर्थियों के लिए

0: ये विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठक आज पटना के कर्पूरी सभागार में आयोजित हो रही है। अलग अलग होने वाली बैठकों में पार्टी की रणनीति और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अशफाक अहमद ने बताया कि सुबह में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें परिषद के सभी निर्वाचित पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद राज्य परिषद की बैठक होगी। इधर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि बैठक में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में मंत्री, सभी सांसद, विधायक और MLC मौजूद रहेंगे।
1: यहाँ जो है बिहार प्रदेश जनता दल कार्यालय में राष्ट्रीय परिषद का राज्य परिषद का बैठक होने जा रही है। इसको लेकर हम लोग काफी उत्साहित, सब हमारे पार्टी के जो भी प्रदेश के स्तर के जो भी कार्यकर्ता है, नेता है, सब उत्साहित है। बिहार में पहली बार इसके पहले भी हुआ है, लेकिन बिहार में जो है राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है। परिषद के सभी डेलीगेट सभी प्रदेश से आ रहे हैं, उनको यहाँ गर्मी से स्वागत किया जाएगा।
0: राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी पदाधिकारियों की सूची जारी की। नई कार्यकारिणी में 8 उपाध्यक्ष, 5 महासचिव और 6 सचिव बनाए गए हैं। मधुबनी से विधायक माधव आनंद को एक बार फिर प्रधान महासचिव बनाया गया है। अरविंद वाजपेयी को राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा है कि नई टीम सामाजिक न्याय, सुशासन और विकास के एजेंडे को संकल्प के साथ आगे बढ़ाएगी। उद्योग मंत्री शेरसी सिंह ने कहा है कि सरकार उद्योग और निवेश के लिए एक सक्षम, प्रतिस्पर्धी और निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पटना में प्रमुख उद्योग संगठनों के साथ समन्वय बैठक में कहा कि हर 30 से 35 दिन के अंदर उद्योग संगठनों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे उद्योग जगत की जरूरतों के अनुसार सरकार को नीति निर्धारित करने में मदद मिलेगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं संयुक्त परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 2027 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने परीक्षा परिणाम जारी करते हुए बताया कि 593 अंक प्राप्त कर श्रद्धा पांडे टॉपर बनी हैं। वहीं 592 अंकों के साथ शशांक गौरव सेकेंड टॉपर बने हैं, जबकि आयुष विजय ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2024 में आयोजित 70वीं BPSC संयुक्त परीक्षा के PT में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस परीक्षा में 1282 पुरुष और 745 महिला अभ्यर्थी सफल हुए हैं। टॉप 10 में 5 महिला अभ्यर्थी हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य के विकास में अपना सकारात्मक सहयोग दें। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों से ईमानदारी और निष्ठा के साथ दायित्व निभाने की अपील की है। प्रदेश में जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज अब ऑनलाइन ही मिलेंगे। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। निर्देश में कहा गया है कि ऑफलाइन मोड में दस्तावेज जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग की उपनिदेशक मोना झा ने इस संबंध में कहा है कि सभी प्रकार के राजस्व अभिलेखों की केवल डिजिटल हस्ताक्षरी प्रतियां ही भू अभिलेख पोर्टल के माध्यम से दी जाएंगी। सरकार ने कहा है कि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से जमीन संबंधी धोखाधड़ी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि वर्ष 1996 से अब तक के दस्तावेज

0: डिजिटल कर दिए गए हैं। प्रदेश में मौसम के मिजाज में तेजी से बदलाव आ रहा है। दक्षिण बिहार में तपिश की स्थिति बरकरार है, जबकि उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। विभाग ने नवादा और पश्चिम चंपारण जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: राज्य के पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर जबकि शेष भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के मध्य एवं पश्चिमी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के नवादा एवं पश्चिम चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भभुआ, भोजपुर और बक्सर जिलों में लू चलने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने नीट परीक्षा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने नीट परीक्षा पर लिखा है, अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट, मुख्य सचिव और डीजीपी खुद कर रहे निगरानी। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर लिखा है, भरत तिवारी मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के आदेश। दैनिक भास्कर ने बीपीएससी परीक्षा परिणाम पर लिखा है, 70वीं बीपीएससी में श्रद्धा टॉपर, टॉप 100 में 45 महिलाएं। प्रभात खबर ने केंद्र सरकार के निर्देश को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, लाभ से ज्यादा नुकसान की आशंका वाली 16 एफडीसी दवाएं हुई बैन। राष्ट्रीय सागर लिखता है, पीएम किसान योजना के तहत 9,44,00,000 किसानों के खातों में भेजे गए 18,880 करोड़ रुपये। आज अखबार की सुर्खी है, पॉलिटेक्निक संस्थानों में शुरू होंगे नए कोर्स। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। योग दिवस पर पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित हुआ मुख्य समारोह। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने किया सामूहिक योगाभ्यास। देश भर में नीट यूजी की परीक्षा आज दोबारा आयोजित की जा रही है। प्रदेश के 34 जिलों में बने केंद्रों पर 1,56,000 से अधिक परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। और जदयू की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठक आज पटना में, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: PLI है ना?
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
5: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
9: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
10: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
11: आकाशवाणी @90

90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अभी आप आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:05 हुए हैं। जान लेते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह के 9:10 पर हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका सुनेंगे और 9:30 पर सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार और सुबह 10 के हिंदी समाचारों के तुरंत बाद लौटेंगे पुनः अपनी कार्यक्रमों की तरफ। सुनेंगे 10:05 पर बाल श्रोताओं का कार्यक्रम अंकुर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी विश्व योग दिवस के बारे में। संकलन एवं वाचन वंदना कुमारी का होगा, प्रस्तुत करता होंगे संतोष कुमार। कार्यक्रम लोक माधुरी, इसके अंतर्गत सुनेंगे कुछ भोजपुरी एल्बम लोकगीत सुबह 10:30 पर।

सुबह के 10:45 पर सुनेंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसधार, और पूर्वाहन के 11 बजे विविध भारती के कार्यक्रमों की तरफ चलेंगे जहां से ढेर सारी कार्यक्रम सुन पाएंगे, और पुनः आप सबों की सेवा में हाजिर होंगे 5:10 पर। शाम 5:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन के साथ, और विज्ञान एवं पर्यावरण सुन पाएंगे 5:30 पर। संकलन एवं वाचन अर्चना कुमारी का होगा, प्रस्तुतकर्ता होंगे संतोष कुमार। 6:00 भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम सुन पाएंगे, और भोजपुरी समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से 6:05 पर। अपने ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर सुन पाएंगे 6:10 पर, और भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत का समय होगा 6:40 पर। ममता का आंचल इस प्रायोजित कार्यक्रम को सुनेंगे 7:00। सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास सुन पाएंगे 7:15 पर। शाम 7:25 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल का समय होगा, और 7:50 पर सुनेंगे कार्यक्रम ई मनपसंद ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम। समाचार संध्या का समय होगा 8:45 पर, हम इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 9:00 पुनः लौटेंगे आप सबों की सेवा में भोजपुरी लोकगीतों के साथ कार्यक्रम लोकधारा में। रात्रि 9:15 पर सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल, और आज के फनकार पुनः विविध भारतीय सुन पाएंगे 9:30 पर। रात्रि 10:00 सुनेंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसरंग। अगले दिन का कार्यक्रम और लगाएंगे मौसम पूर्वानुमान 10:55 पर। रोजाना की तरह 11:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार, 11:05 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही अंग्रेजी समाचार।

अभी आपने सुना आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का जानकारी। अब हम सुनते हैं हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं आराधना फिल्म का एक गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, एसडी वर्मन का संगीत है। फिल्म है आराधना।

कार्यक्रम की अगली पेशकश कुमार सानू अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में, फिल्म है आशिकी। रानी मलिक ने इसे लिखा है, नदीम श्रवण ने संगीत दिया है। फिल्म है आशिकी, कुमार सानू अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में।

0: लता मंगेशकर के गाए इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। अगला प्रसारण विविध भारती से आज के फनकार थोड़ी देर में।
1: 29 सितंबर को निधन हो गया उन पर केंद्रित विशेष आज के फनकार कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। ये बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।
1: सदमा न पहुंचे कोई मेरे जिस्म-ए-ज़ार पर, आहिस्ता फूल डालना मेरे मजार पर। हर चंद खाक में था मगर ता फलक गया, धोखा है आसमान का मेरे गुबार पर।
0: ये थे थॉमस बीच ऑल्टर, जिनका जन्म 22 जून 1950 को मसूरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दरअसल टॉम ऑल्टर एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरीज के बेटे थे। बचपन का उनका समय हिमालयन हिल स्टेशन लैंडोर में बीता था। वैसे आपको बता दें, टॉम ऑल्टर ने हाल ही में एक लेख में बताया था कि उनके जो परदादा थे वो ओहायो यूनाइटेड स्टेट्स से सन 1916 के जमाने में भारत में आए थे और उसके बाद भारत में उनका परिवार अलग अलग जगहों पर रहा। टॉम ऑल्टर के पिता इलाहाबाद के इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाया करते थे। इसके बाद वो सहारनपुर की एक सेमिनरी में पढ़ाने लगे थे। बाद में उनके माता पिता ने राजपुर में एक आश्रम शुरू किया था जिसका नाम था मसीही ध्यान केंद्र। फिर जबलपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर राजपुर में रहने के बाद देहरादून और फिर वो मसूरी में जाकर बस गए।
2: मैं जल्दी से एक बात बताता हूँ, अमर प्रेम दिल्ली में लगी थी, हम मसूरी में थे उस टाइम। तो मसूरी में फिल्में बहुत बाद में लगती हैं, पहले देहरादून आती है फिर धीरे धीरे मसूरी आ जाती है। तो हम लोग रात की बस पकड़ के मसूरी से रात का सफर करके दिल्ली गए थे ये फिल्म देखने के लिए, अमर प्रेम, मुझको याद है। 3 बजे का शो देखकर फिर थोड़ा सा खाना वाना खा के वापस आकर हमने ये 6 बजे का शो देखा, फिर रात वाली बस से हम वापस आए मसूरी। तो ये अमर प्रेम से इतना हमारा अमर प्रेम था उस टाइम। तो इस फिल्म के भी गाने मतलब एक के बाद एक सब सुपरहिट थे और बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक जो गाना है जो जिसका इस फिल्मी दुनिया से एक खास ताल्लुक है वो मैं पेश करना चाहूंगा। उस गाने का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना।

बचपन से ही चूंकि उत्तर प्रदेश के इलाकों में रहना हुआ तो उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद टॉम अमेरिका चले गए थे, तब उनकी उम्र 18 साल की थी। एक साल तक वो येल यूनिवर्सिटी में रहे। 19 बरस की उम्र में टॉम टीचर बनकर आ गए जगाधरी हरियाणा में। ये वो दिन थे जब वो टीचर तो थे ही एक स्कूल में जिसका नाम सेंट थॉमस स्कूल था, लेकिन चूंकि स्पोर्ट्स से उनका गहरा लगाव था तो वो वहां बच्चों को क्रिकेट भी सिखाया करते थे। 2.5 बरस तक टॉम ऑल्टर जगाधरी में रहे। इसके बाद वो उसी स्कूल में चले गए जहां उनकी खुद पढ़ाई लिखाई हुई थी, यानी मसूरी का वुडस्टॉक स्कूल। यहां भी उन्होंने थोड़े दिन पढ़ाया। जब वो जगाधरी में रह रहे थे तब हिंदी फिल्मों से उनका ज्यादा लगाव हुआ। इसी दौरान उन्होंने आराधना फिल्म देखी।

0: ये फिल्म उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक हफ्ते में 3 बार इसे देख डाला। यहां से टॉम ऑल्टर की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने सोचा कि वो फिल्मों में काम करेंगे। इसके तकरीबन 2 बरस के बाद टॉम ऑल्टर फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी पुणे में एक्टिंग का डिप्लोमा लेने के लिए आ गए। सन 1972 से 1974 तक वो पुणे में रहे।
1: मैंने सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और एक्चुअली इस जगत का सफर तब शुरू हुआ था सन 72 से। 2 साल वहाँ रहा मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में, बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 74 में मैं यहाँ आया था, मेरे ख्याल से मई का महीना था, और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पूना से बॉम्बे आया था। मुझको याद, अच्छी तरह याद है, जेब में 44 रुपए थे और एक पुरानी मोटरसाइकिल थी मेरे पास, उसके अलावा सपनों के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। ये सपनों का सफर तब शुरू हुआ था। काफी तकलीफें भी झेलनी पड़ी, आज भी झेल रहा हूँ, बट एक संघर्ष जो है ना, ये बहुत जरूरी है हर आदमी के जीवन में। संघर्ष आज भी जारी है और एक मजेदार संघर्ष है।
0: टॉम ऑल्टर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो राजेश खन्ना बनना चाहते थे, वो एक रोमांटिक हीरो बनना चाहते थे। हालांकि फिल्मों में उनका जो करियर रहा वो बतौर हीरो नहीं बल्कि बतौर चरित्र अभिनेता रहा। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी।
1: राज कपूर की एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, फिल्म मैंने मंदाकिनी के ब्रदर का रोल किया था, तो एक पहाड़ी आदमी है, वो भी हिंदुस्तानी रोल, और ये जुनून से बहुत पहले, लेकिन जिस तरह मैंने कहा लोग जल्दी भूल जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है। वो रोल मुझे बहुत बहुत पसंद आया क्योंकि वो अपनी जान की कुर्बानी देता है अपनी बहन के लिए, तो वो एक रोल था। फिर एक फिल्म आई थी शतरंज के खिलाड़ी, मिस्टर सचिन जी ड्रेक की, उसमें मैंने अंग्रेज का रोल किया था जरूर, लेकिन उस

0: को शेर व शायरी में दिलचस्पी थी और हिंदुस्तान से बेहद प्यार था और उर्दू में बात करता था वो, तो वो बहुत ही एक दिलचस्प किरदार था और शतरंज के खिलाड़ी में।
1: We are most grateful to His Majesty for granting us this interview.
2: इस मुलाकात के लिए हम सुल्तान आलम के बेहद शुक्रगुजार हैं।
1: We also appreciate his gesture in disarming his soldiers.
2: हम फौजियों की उनकी अच्छी कदर करते हैं।
1: We regard it, we hope rightly, as evidence of his concern to negotiate a peaceful conclusion for the treaty.
2: हम समझते हैं अली जाह अहदनामे के बारे में दोस्ताना बातचीत के लिए तैयार है।
1: I would like, if I may, to add a personal request to His Majesty that he please sign this treaty and formalize his abdication.
2: हमारी दरख्वास्त है सुल्तान आलम अहदनामे पर दस्तखत फरमा के अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबदार हो जाएं।
1: His Majesty shall have a maximum of 3 days for deliberation.
2: इस मसले पर फरमाने के लिए सुल्तान आलम को ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की मोहलत मिलेगी।
1: After which the company will assume the administration of Oud.
2: बाद इस मुद्दत के कंपनी बहादुर अवध का सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लेगी।
1: I hope the king has understood what I've said.
2: हमने जो कुछ कहा है उम्मीद है सुल्तान आलम समझ गए होंगे।
1: What is this? You please tell His Majesty that I have no use for that.
2: ये रेजिडेंट साहब की किसी काम की नहीं है।
3: आप हमारी दस्तार तो ले सकते हैं रेजिडेंट साहब, दस्तखत नहीं ले सकते।
0: और अब जहाँ तक हिंदी या हिंदुस्तानी का सवाल है, मैं तो मेरी पैदाइश तो मसूरी के है, यूपी की है। जिस जमाने में मेरी पैदाइश हुई यूपी के उस इलाके में लोग या तो हिंदुस्तानी में बात करते थे या तो उर्दू में। हिंदी तो उस इलाके में बाद में आई, मैं वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ, मसूरी देहरादून की बात कर रहा हूँ। बचपन में मेरे वालिद साहब उर्दू लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, बात भी करते थे उर्दू में। तो शुरू से मेरे अंदर एक बहुत ही एक दिलचस्पी रही, एक शौक रहा उर्दू सीखने का। हिंदी तो हमने स्कूल में सीखी थी। तो मैं जब पूना आया था 1972 में फिल्म इंस्टीट्यूट में, मैंने कहा मैं इस शौक को अब मतलब उसको एक अंजाम भी दूं। मेरे एक दोस्त वहाँ बने मोहम्मद रफीक, तो उन्होंने मुझको उर्दू सिखाना शुरू किया पूना में 2 साल तक। फिर मैं यहाँ आया तो मेरी खुशनसीबी ये रही कि उस्ताद जालिब साहब से मेरी एक मुलाकात हुई। बहुत जाने माने उस्ताद थे उर्दू के, उनका इंतकाल हुआ कुछ 6-7 साल पहले। तो 5 या 6 साल तक मुसलसल मैं जालिब साहब के साथ उर्दू सीखता रहा। और जालिब साहब के बारे में इस वक्त कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही जज्बाती मामला है, लेकिन अगर कुछ हद तक मुझको उर्दू आती है वो सिर्फ जालिब साहब की वजह से। लेकिन उर्दू का शौक मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि मेरे फादर बोलते थे, लिखते थे, पढ़ते थे उर्दू।
4: अच्छा।
0: और उस जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि यूपी के उस इलाके में जहां मेरी परवरिश हुई उस जमाने में उर्दू या हिंदुस्तानी जबानें चलती थी, हिंदी बाद में आई। शकील बदाउनी एक शेर है, अगर वो बहुत ही जाने माने शायर थे, उन्होंने लिखा कि शकील दिल हूँ मैं हूँ मोहब्बतों का राजदान, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। यानी कि शायरी और जिंदगी अगर जुदा यानी कि अलग अलग रहे तो तब आदमी शायरी नहीं कर पाता, शायद शायरी लिख पाता लेकिन कर नहीं पाता।
5: आज के इस कार्यक्रम में आप टॉम ऑल्टर की जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो बहुत बरस पहले विविध भारती के एक इंटरव्यू के दौरान कही गई बातें हैं।
0: उस तरह से एक और फिल्म का नाम लूंगा मैं जरूर, उसका नाम था चमेली मेम साहब, जिसमें मेरा हीरो का रोल था। वो भी बहुत ही सिंपथेटिक रोमांटिक बहादुर इंसान था वो, तो मुझे वो रोल शायद सबसे ज्यादा पसंद है। वो फिल्म भी पसंद है लेकिन वो रोल मुझे बहुत पसंद है। और वो जो हीरो का रोल था वो मुझको उस फिल्म के अलावा बस और एक फिल्म में मिला था हीरो का रोल, जो कभी कंप्लीट नहीं हुई थी फिल्म। तो मेरी जो तमन्ना थी ना, जो एक मसूरी से लेकर जो मैं तमन्ना लेकर यहाँ बम्बई आया था, उस फिल्म में जाकर वो तमन्ना जो है वो पूरी।
5: फिल्म क्रांति में उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर का रोल किया था।

0: सन 1993 में उन्होंने फिल्म सरदार में काम किया।
1: आज इस मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे उनका असर सिर्फ इस मुल्क ही पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए और आप सब लीडरों के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द सौंप दी जानी चाहिए आपके हाथ में। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके इन फैसलों से पैदा होने वाले हालात को संभालने के लिए आप सब तैयार होंगे।
0: टॉम ऑल्टर न केवल फिल्मों में सक्रिय थे बल्कि बरसों बरस तक वो टेलीविजन के लिए भी काम करते रहे।
2: प्रोफेशनली मैं सबसे पहले सिनेमा से जुड़ गया था क्योंकि उस टाइम में टेलीविजन था लेकिन बस उसकी ज्यादा अहमियत नहीं थी। तो और हम आए थे बंबई में फिल्मों में काम करने के लिए, टेलीविजन में काम करने के लिए नहीं, या नहीं तो थिएटर में काम करने के लिए। तो सिनेमा से मैं जुड़ गया था और एक सपना था हीरो बनने का फिल्मों में, और कुछ एक छोटी सी हद तक वो सपना साकार भी हुआ। लेकिन आज भी, हालांकि टीवी में बहुत काम करता हूं मैं और टीवी से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को फिल्म आर्टिस्ट मानता हूं। प्रेफरेंस में रखना बहुत मुश्किल है। प्रोफेशनल तौर पे तो टीवी को मैं ज्यादा पसंद इसलिए करता हूं कि टीवी में एक मुसलसल आपको काम मिलता रहता है, और अगर आपकी सीरियल हिट हो गई तो जिस तरह जुनून हिट हो गया है, 5 या 5.5 साल तक लगातार आप एक ही किरदार को निभा रहे हैं तो बहुत उसमें मजा आता है। तो प्रोफेशनली आजकल मैं टीवी को ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन जो एक मजा आता है काम करने में, या जब आपकी पिक्चर हिट होके रिलीज हो जाती है या रिलीज होके हिट हो जाती है, वो जो मजा है जब आपकी पिक्चर हिट हो जाती है और लोग, मतलब बेशुमार लोग थिएटर हॉल में जाते हैं आपकी फिल्म देखने के लिए, तो वो जो मजा है वो सिर्फ सिनेमा में है, वो टीवी में नहीं है। तो उसका एक अलग मजा है फिल्मों का। और जहां तक थिएटर का सवाल है, वो एक नॉन प्रोफेशनल तौर पर मुझे थिएटर बेहद पसंद है क्योंकि थिएटर में आराम है, फुर्सत है, कोई जल्दी नहीं है, और एक चीज को आप बाकायदा 3-4 महीने तक रिहर्सल कर सकते हैं, उसके बाद आप पेश कर सकते हैं, ऑडियंस भी सामने बैठे हैं। तो हर चीज का एक अलग पहलू है, हर एक अलग मजा है। तो प्रोफेशनली जिस तरह मैंने कहा, शायद प्रेफरेंस में टीवी को दूं, और जहां तक मजे का सवाल है तो शायद प्रेफरेंस को मैं सिनेमा को दूं, और जहां तक पर्सनल एक तसल्ली या सेटिस्फेक्शन का सवाल है तब मैं शायद प्रेफरेंस दूं थिएटर को।
3: तो आपने उसे अपने ही साए के घटने बढ़ने से परेशान कर दिया।
4: और क्या करते हुजूर, क्या है कि वहां से निकलने का रास्ता में और कोई मिल नहीं रहा था, और वो बेचारा इतना परेशान था कि उसके दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं आ रही थी कि हम उस लाइट को कभी आगे खिसका रहे थे तो कभी पीछे, जिससे उसका साया कभी बढ़ रहा था तो कभी घट रहा था।
5: आपने कभी अपने साये को घटते बढ़ते देखा है?
4: मैडम, हम दूसरों के सायों को नापते रहते हैं, अपनी फिक्र कहां। मिस्टर धनराज, आप इतने खामोश क्यों हो गए?
6: नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस
7: आप ये सोच रहे होंगे कि इस केशव कलसी से पहले आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर होती तो वो जमीन का टुकड़ा आपके हाथों से नहीं जाता।
8: मेरे दोस्त मुझे प्यार से के कहते हैं, काम का कलसी। आप भी मुझे के कहें तो बहुत मुसर्रत होती।
2: और शुरू में मैं ये कहूं कि मेरी मदर को ये रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वो अपने बेटे को ऐसे रूप में देखना पसंद नहीं करती थी। तो उससे मुझको एक अंदाजा मिला कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर या किरदार जो है वो अपने अपनी निजी जिंदगी के ऊपर हावी हो जाए। लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये जरूर है कि आदमी जब कोई किरदार निभाता है तो वो अपनी निजी जिंदगी से कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी बातें निकाल कर उस किरदार के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो ये

0: मशहूर है कि केशव कलसी का जो किरदार है, मेरे अंदर जब मैंने वो शुरू किया था कैरेक्टर, तो मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा गुस्सा था और एक जिद थी मेरे अंदर दिखाने की कि मैं इस तरह का रोल कर सकता हूं। तो ये थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ी सी जिद थी, तो मैंने अपनी जिंदगी से ये चीजें निकाल कर उस कैरेक्टर के अंदर डाल दी। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो कैरेक्टर है वो मेरी निजी जिंदगी के ऊपर हावी नहीं हुआ, बल्कि 5.5 साल तक इस कैरेक्टर को निभाते निभाते बीच में कभी कभार ये मुश्किल हुआ कि उस कैरेक्टर के अंदर वही गुस्सा वही जिद उसको बरकरार रखना मुश्किल हो गया था मेरे लिए 5.5 साल तक। तो बीच में एक बार मैंने उसको थोड़ा सा ढीला भी छोड़ दिया था जानबूझकर, और मुझको लगा कि कोई नोट करेगा नहीं, लेकिन 2-3 लोग मेरे पास आए थे पब्लिक में से और उनने बाकायदा मुझको गालियां दी कि ये तुमने क्या किया, अचानक तुमने नरम क्यों बना दिया। तब वापस मुझे अपने आप को बिल्कुल कस के रखना पड़ा। तो बहुत ही दिलचस्प रहा यह सफर केशव कलसी के साथ, और मेरे ख्याल से इस सफर से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझको।
1: चीलों से टॉम ऑल्टर का बड़ा गहरा लगाव रहा। जैसे कि हमने आपको बताया, टॉम ऑल्टर जब जगाधरी के एक स्कूल में पढ़ाया करते थे, उन दिनों में बच्चों को वो क्रिकेट भी सिखाया करते थे। अगर आप YouTube पर खोजें तो आपको महान सचिन तेंदुलकर का एक बहुत पुराना, लगभग शुरुआती दौर का इंटरव्यू नजर आएगा। वो टॉम ऑल्टर ने ही लिया था। खेलों से अपने जुड़ाव के बारे में टॉम ने हमें बताया था।
0: एक्चुअली खिलाड़ी बनना चाह रहा था, खासकर क्रिकेट का, तो मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था, तो मैं बन नहीं पाया। स्पोर्ट्स में, मतलब शुरू से बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, ये यूं कहना चाहिए कि एक जुनून सवार रहा मेरे ऊपर स्पोर्ट्स, आज भी है। स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स की दुनिया से, खिलाड़ियों से बहुत गहरा है मेरा एक रिश्ता रहा है शुरू से बचपन से। क्रिकेट के साथ धीरे धीरे जो है मेरा रिश्ता और गहरा होता जा रहा है, और लेकिन स्कूल में ऐसा कोई खेल, ऐसा कोई स्पोर्ट था ही नहीं जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया, स्कूल और कॉलेज में दोनों। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने बास्केटबॉल में भी हिस्सा लिया, तो बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, इन सारे जो खेल हैं इन सब में मैंने हिस्सा लिया। आजकल मैं खेलता हूँ क्रिकेट और थोड़ी बहुत रनिंग भी करता हूँ। मैं लिखता भी हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, पेपर्स में, मैगजीन्स में, स्पोर्ट्स के मैंने कई प्रोग्राम्स भी बनाए हैं टीवी के लिए, और कॉमेंट्री भी मैंने दी है। तो मालूम नहीं, स्पोर्ट्स से मुझे एक हमेशा एक प्रेरणा मिलती रहती है कि स्पोर्ट्स जो है हमको बहुत कुछ सिखा सकता है जिंदगी के बारे में, जिंदगी का संघर्ष जो है किस तरह लड़ना चाहिए वो आदमी स्पोर्ट्स से सीख सकता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स ने शुरू से लेकर आज तक मुझको बहुत सहारा दिया है, सुकून भी दिया है, राहत भी दी है, और मुझको सिखाया बहुत कुछ है स्पोर्ट्स ने।
1: टॉम ऑल्टर का थिएटर से गहरा लगाव रहा है, इस बारे में उन्होंने बताया।
0: थिएटर में इसलिए मैं करता हूँ, ज्यादातर पैसे के लिए तो मैं करता नहीं हूँ थिएटर। पूरा जो सिलसिला है थिएटर का, एक आपने पहले दोस्तों के साथ प्ले को आपने जांचा, फिर आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपने रिहर्सलें की, रिहर्सलों के अंदर इतनी तब्दीलियां आ जाती हैं हर चीज में, फिर आखिरकार एक परफॉर्मेंस भी होता है वो भी ऑडियंस के सामने। तो एक लंबा एक सफर है ये थिएटर का, तो मुझे वो सफर बेहद पसंद है। वो सफर आपको थिएटर, इसमें सिनेमा और टीवी में नहीं मिलता है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। लोगों के साथ दोस्ती कायम करना, नए रिश्ते पैदा हो जाते हैं रिहर्सल करते करते परफॉर्मेंसेस का, और हर परफॉर्मेंस में कुछ नए रंग आ जाते हैं, तो ये मजा है थिएटर का कि आपको फुर्सत मिलती है, एक टाइम मिलता है आपको, एक अरसा पूरा आपको मिल जाता है। मैंने मेरे ख्याल से 15-20 प्लेस किए हैं बॉम्बे में आके। एक प्ले है जो मैं अपने दो बहुत ही अजीज दोस्तों के साथ किया करता था, नसीरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी के साथ, उस प्ले का नाम है वेटिंग फॉर गॉडो। इंग्लिश का प्ले है, बहुत ही कठिन प्ले है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी, लेकिन हम लोगों ने कम से कम 50-60 उसके शोज किए हैं, और वो प्ले मुझको बेहद पसंद है, वेटिंग फॉर गॉडो।
1: संगीत में अपनी दिलचस्पी के बारे में टॉम ऑल्टर ने विविध भारती को अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी।
0: क्लासिकल संगीत से कोई खास मेरा रिश्ता नहीं रहा है, ना तो हिंदुस्तानी क्लासिकल ना तो इंग्लिश क्लासिकल, लेकिन हाँ पुराने, अब तो खैर पुराने हैं, उस टाइम तो नए थे हमारे लिए, पुराने फिल्मी गीत मुझे बेहद पसंद है। और जहाँ तक इंग्लिश म्यूजिक का संबंध है, तो बीटल्स के गाने, फिर ईगल्स के गाने, उससे पहले एक और फोक ग्रुप था पीटर पॉल एंड मैरी, उनके गाने ये मुझे आज तक मतलब बेहद पसंद है। इंडियन म्यूजिक में हाल ही में कुछ, पिछले मैं देख रहा हूँ 1-2 साल से, कहीं से मालूम नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक क्लासिकल म्यूजिक में एक दिलचस्पी पैदा हुई है जो पहले बिल्कुल नहीं थी मेरे अंदर। अभी हाल ही में मैं

भोपाल में था तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का एक वहां पर कार्यक्रम था, तो फर्स्ट टाइम जिंदगी में मैंने ध्यान से बैठकर किसी एक इस तरह के प्रोग्राम को सुना और मेरी आंखों में तो आंसू आ गए सुनते सुनते। तो शायद इस बुढ़ापे में क्लासिकल म्यूजिक में भी एक दिलचस्पी मेरे अंदर पैदा हो रही है, लेकिन अब तक जो है मेरी इंटरेस्ट रहा है या तो फोक म्यूजिक में या तो पॉपुलर म्यूजिक में, रॉक में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो फिल्मी गाने बस वही हमारे तीन जो सितारे हैं, किशोर जी, रफ़ी साहब और मुकेश जी, उनके गाने तो घंटों तक, क्या मैं दिनों महीनों तक सुन सकता हूँ। मैं सच बताऊं, कुछ इसका कारण क्या है मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन आजकल जब गाने मैं सुनता हूं तो मुझको 10 बार सोचना पड़ता कि आवाज़ किसकी है। शायद मेरे अंदर दिलचस्पी कम हो गई या शायद कुछ आवाज़ें जो हैं वो सेम टू सेम होती जा रही हैं, मुश्किल है। मुझको याद है हम आशिकी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें फर्स्ट टाइम कुमार शानू ने

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट्स सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: अमेरिका में डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों से स्वस्थ जीवन शैली के लिए योगाभ्यास करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण किया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन।
1: और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्व

0: महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले हैं INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।
1: इन पोतों का विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सन्मार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इजरायली हमलों के कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन के भीतर ईरान के साथ अंतिम समझौता न होने पर जलमार्ग पर टोल लगाने की बात कही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। 2 वर्ष में एक बार होने वाला यह महोत्सव इस वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। समारोह में वृत्तचित्र, लघुकथा, एनिमेशन और AI फिल्में प्रदर्शित की गईं। आज रात एक भव्य समारोह के साथ इसका समापन होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, रायलसीमा, कराईकल, केरल और माही में भी मंगलवार तक तेज वर्षा हो सकती है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार और तेलंगाना में भी आज लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचारों से पहले हमारे श्रोता विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 10:05 हुए हैं। सुनते हैं बाल श्रोताओं का कार्यक्रम अंकुर।

0: जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
2: आज के अंकुर कार्यक्रम में आप सभी श्रोता बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप सभी को आपकी वंदना दीदी का बहुत सारा प्यार।
1: आपको भी हम बच्चों का नमस्कार।
2: बच्चों, जिस तरह कहा जाता है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, ठीक उसी तरह योग के बिना अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और यह तो आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि हम स्वस्थ रहते हैं तभी मन को खुशी प्राप्त होती है, नहीं तो अस्वस्थ रहने पर खुशियों के समय में भी मन कष्ट में डूबा रहता है। हम खुशी को सबकी तरह महसूस नहीं कर पाते। और बच्चों, यह तो हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास बहुत ही जरूरी है, और फिर आप सब बच्चों के लिए तो यह और भी फायदेमंद है। इससे मन मस्तिष्क में स्थिरता आती है, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में भी सहायता मिलती है। आज योग के चमत्कार को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। यही कारण है

0: दुनिया के अधिकांश देशों में योग शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। बच्चों, बहुत सी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए या स्वस्थ जीवन जीने के लिए डॉक्टर या वैज्ञानिक योग करने की सलाह देते हैं। योग सभी के लिए जरूरी है, विशेषकर छात्र जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। योग शिक्षा जितनी कम उम्र से ली जाए उतना ही शरीर को ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि आप सब बच्चों का शरीर बड़ों की तुलना में ज्यादा लचकदार होता है और फिर बच्चे चीजों को जल्दी और आसानी से भी सीख जाते हैं। एक बात और है कि पहले बच्चे घर से ज्यादा बाहर खेलते थे, यानी उनके पास खेलने के लिए बाहर में ज्यादा अवसर होते थे, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में बच्चे ज्यादा उलझे रहते हैं। सुबह के समय यदि आप सब बच्चे योग करेंगे तो तन मन में चुस्ती और फुर्ती बनी रहेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा और सभी काम में मन भी लगेगा। बच्चों, जिस तरह आज पढ़ाई और प्रतियोगिता का दौर है, ऐसे में मन को एकाग्र और मजबूत बनाने के लिए आप सब बच्चों को शुरू से ही योग पर ध्यान देना होगा। यदि सही खान पान और प्रतिदिन योगाभ्यास आप करेंगे तो न सिर्फ दिमाग तेज होगा बल्कि अच्छी अच्छी बातें भी दिमाग में आएंगी, जिससे आप जीवन में बहुत आगे बढ़ते जाएंगे। आइए आप सब बच्चों के लिए कुछ प्रमुख आसन पर चर्चा करते हैं। प्रणाम आसन, दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम की मुद्रा में सीधे खड़े होकर यह आसन किया जाता है। इसे हर घर में किया जाता है जब मेहमानों और बड़ों का स्वागत करते हैं या प्रार्थना के समय। यह आसन शरीर तंत्र को आराम देता है और शरीर को अच्छा संतुलन देता है। हस्त उत्तान आसन, सीधे खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखते हुए यह आसन किया जाता है। इसे करने से कंधे मजबूत बनते हैं, रक्त में ऑक्सीजन का स्तर बेहतर बनता है। यह गर्दन और पीठ की मांसपेशियों को आराम देता है, पेट की मांसपेशियों के लिए भी यह अच्छा आसन है। बच्चों, आप सबके लिए सूर्य नमस्कार बहुत ही जरूरी है। सूर्य नमस्कार में ही प्रणाम आसन, हस्त उत्तान आसन इत्यादि आते हैं। और भी बहुत से आसन हैं सूर्य नमस्कार में, इन्हें अच्छी तरह सीखकर प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। सूर्य नमस्कार सुबह के समय करना अच्छा होता है। यह मन और शरीर को ऊर्जा से भरकर तरोताजा कर देता है और दिन भर के कामों के लिए तैयार कर देता है। यह मांसपेशियों के लिए अच्छा व्यायाम है। 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे नियमित रूप से सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। इसका नियमित अभ्यास करने से शांति और खुशी महसूस होती है, एकाग्रता बढ़ती है और दिमाग सही तरीके से काम करता है। बच्चों, हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी अनेक बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि संतुलित भोजन की जानकारी, तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए योगा या व्यायाम वगैरह की जानकारी, जैसा कि हमने अभी बातें की। साथ ही बच्चों, यह भी जानकारी रखनी होगी कि किस चीज की कमी से कौन सी बीमारी होती है और स्वस्थ रहने के लिए उन सब चीजों को हम कहाँ से प्राप्त करें, यानी कि स्वस्थ रहने के लिए हमें बीमारियों की भी जानकारी रखनी होगी, तभी हम समय पर उनका इलाज भी कर सकेंगे। आइए इसी क्रम में एक बीमारी अनीमिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
1: मैं उर्वी स्वामी आज आपको अनीमिया के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। मनुष्य के शरीर में अनेक तत्व होते हैं। मानव रक्त में लाल कणिकाएं होती हैं, जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं। यह शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। भोजन में आयरन की कमी होने से हेमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है, इससे खून पतला हो जाता है और इसकी लालिमा में कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन की पूर्ति कम हो जाती है। इसी अवस्था को अनीमिया या खून की कमी कहते हैं। अनीमिया से वो लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं जिनके भोजन में आयरन की मात्रा कम होती है। इनमें बढ़ने वाले बच्चे भी शामिल होते हैं। किशोरावस्था में अधिक आयरन की आवश्यकता होती है। यदि माँ में खून की कमी या अनीमिया है तो यह उसके बच्चे में भी जा सकता है, और यदि बच्चे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया तो यह आगे भी बना रहता है। इस तरह अनीमिया या खून की कमी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग कहा जाता है। आइए एक नज़र डालते हैं अनीमिया के कारणों पर।

0: या इसे हम कैसे पहचान सकते हैं? ऊंचाई या सीढ़ी चढ़ते समय सांस का फूलना, शारीरिक कार्य क्षमता का घटना, मानसिक थकावट, चिड़चिड़ापन, जीभ में फीकापन महसूस होना, हथेली और पैर के तलवे का रंग फीका होना। ये तो हुए अनीमिया के कुछ सामान्य लक्षण। अब हम उन बातों को जानेंगे जिनसे इसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है, यानी ऐसा आहार जिनमें वो सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज आवश्यक मात्रा एवं अनुपात में मिले, जिनसे सेहत और सामान्य स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। संतुलित आहार खाने का मतलब है प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे कि दालें, चपाती या चावल, हरी सब्जियां, फल और दूध का सेवन किया जाए। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध आयरन युक्त भोज्य पदार्थ जैसे बथुआ का साग, पालक, सहजन, गुड़, काला तिल आदि का सेवन करें। इसके अतिरिक्त आयरन की गोलियों का भी सेवन करना जरूरी होता है, लेकिन यह डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। इस तरह कुछ बातों का यदि ध्यान रखा जाए, अनीमिया या खून की कमी को दूर किया जा सकता है।
1: अभी हम अनीमिया के बारे में उर्वी स्वामी से जानकारी ले रहे थे, और अब कुछ कविता वगैरह आप सब बच्चों की। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के चलते आप सब बच्चे दूरी बनाकर बैठे हुए हैं, फिर भी हम एक एक बच्चे से उनकी कविता सुन सकेंगे। सबसे पहले निधि, आप क्या सुनाएंगी?
2: कविता
3: सुनाइए।
2: एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर, देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटा, कभी उधर से कभी इधर से फुदक फुदक कर घर घर जाती, चिपरा दुगरा सुतली धागा ले जाती वह कुछ पाती, ले जाती वह मुंह में दाबे कोटर में रख रख आती, देख बड़ा सामान इकट्ठा किलक किलक कर वह गाती, चित्रे दुगरे सुतली धागे सबको अंदर फेराकर काट कुतर कर एक बराबर एक बनाएगी बिस्तर, फिर जब उसके बच्चे होंगे उस पर उन्हें सुलाएगी और उन्हीं के साथ लेटकर लोड़ी भी सुनाएगी।
3: गिलहरी अपने बच्चों को क्या सुनाएगी?
2: लोड़ी।
3: लोड़ी सुनाएगी। बहुत ही प्यारी कविता थी निधि।
1: और गौतम कुमार, आप क्या सुनाइएगा?
4: फुलवारी।
1: फुलवारी कविता सुनाइए।
4: रंग बिरंगे फूल चेहे मक रही फुलवारी, मन पवन के झोंके से झूल रही है फुलवारी, जूही चंपा यहाँ के ले है मक बेला की क्यारी, सफेद गुलाब और लाल कमल अपनी ही शोभा नयारी, नाच दिखाती उरे तितलिया करती मीठे रस का पान, भौरे भी गुन गुन करके यहाँ सुनाते अपना गान, अपनी खुशबू रंग रूप का इसे नहीं तनिक अभिमान, सबके मन को हर्षित कर दे समझ इसमें अपना मान, हम बच्चे भी फूल जैसे खिले हंसे और मुस्कुरा अपने भीनी से सुगंध से जगती फुलवारी महकाए।
1: आप बच्चे भी बिल्कुल फूलों जैसे हैं और अपनी हंसी से अपने बातों से सबके मन को खुश कर देते हैं। और आइए सुमित कुमार से सुनते हैं
5: प्रार्थना।
1: प्रार्थना।
5: देश की मिट्टी, देश की जल हवा, देश का फल सजने पूर्व सजने, देश की घर और देश की घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने पूर्व सरल बने, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने पूर्व विमल बने, देश की इच्छा देश की ऐसा काम, देश का एक बने प्रभु एक बने, देश की मिट्टी देश की जल हवा देश का फल सजने पूर्व सरस बने,
1: सरस बने प्रभु सरस बने। बहुत अच्छी प्यारी ये प्रार्थना थी, बहुत अच्छा लगा। बच्चों हमारी बातें आगे भी जारी रहेंगी, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और सुनते हैं कुछ संदेश। अंतराल के बाद कार्यक्रम में पुनः आप सभी का स्वागत है। बच्चों कहते हैं जीवन में आगे बढ़ना है तो सभी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, और सभी का आशीर्वाद तभी मिलता है जब आप अच्छे अच्छे काम करें, अच्छी अच्छी आदतों को अपनाएं और नियमित उसका पालन करें। अच्छी आदतों जैसे आप घर और आसपास की सफाई कर सकते हैं, अपनी कॉपी किताब का ध्यान रख सकते हैं, उन्हें फाड़ें या गंदा नहीं करें। साथ ही बच्चों पानी की बर्बादी आप रोक सकते हैं, दूसरे की चीज़ चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो बिना पूछे नहीं लें, बड़ों की आज्ञा का पालन करें, अपनी पढ़ाई समय से करें, घर में या बाहर जहाँ तक संभव हो सभी की मदद के लिए तैयार रहें, हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करें। सीखते समय छोटा या बड़ा नहीं देखना चाहिए, यदि हमसे छोटा हमें कोई अच्छी बात सिखाता है तो तुरंत सीख लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि अपने माता

0: पिता की बातों की अनदेखी कभी ना करें, उनकी हर बात को माने। कहते हैं कि जो बच्चे अपने माता पिता की या बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करते, ईश्वर भी उनसे नाराज हो जाते हैं। कई बार तो जो बच्चे अपने माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें अनेक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। आइए बच्चों, सुनाते हैं आपको ऐसे ही एक बच्चे की कहानी, जिसने अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया और बाद में उसे अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। सुनना चाहेंगे आप ऐसे बच्चे की कहानी?
1: हाँ दीदी।
0: बच्चों, कुछ समय पहले की बात है, एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसका एक ही लड़का था, जिसका नाम था किशन। किशन बहुत ही वीर था और सभी प्रकार की युद्ध विद्याओं में पारंगत था। किशन वीरता के कार्य करना चाहता था, परंतु उसे इसके लिए कभी मौका नहीं मिला था। उसने एक दिन अपने पिता से इसके लिए इच्छा व्यक्त की कि वो बाहर घूमने जाना चाहता है। पिता ने उसे घूमने जाने की आज्ञा दे दी। घूमने जाने से पहले किशन के पिता ने उसे बुलाया और कहा, तुम घूमने या पर्यटन के लिए निकल रहे हो, यह तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें तीन बातों का खास ध्यान रखना होगा। पहली बात है कि कभी पर्यटन में अकेले मत जाओ, और दूसरी बात कि जहाँ पर विश्राम करो उस जगह को अच्छी तरह याद कर लो। तीसरी बात कि भारत के जंगलों में भालू बहुत हैं, उनका सामना कभी न करना। यदि कभी संयोगवश भालू दिखाई दे तो चुपचाप सांस रोककर जमीन पर लेट जाना, क्योंकि भालू ऐसे लोगों को कभी नहीं छेड़ता है। पिता के सीख लेकर किशन पर्यटन के लिए निकल पड़ा। उसकी देखभाल के लिए पिता ने दो आदमी साथ में कर दिए, परंतु किशन अकेले पर्यटन करना चाहता था, अतः किशन उन दोनों को छोड़कर चला गया। चलते चलते रास्ते में एक जंगल पड़ा। जंगल में वह थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा होगा कि सामने एक शेर गरजता हुआ उस पर कूद पड़ा। किशन को अपनी वीरता दिखाने के लिए पहली बार मौका मिला था। उसने वीरता के साथ कटार निकाली और शेर से भिड़ गया। काफी देर तक दोनों में लड़ाई होती रही। अंत में उसने शेर को मार गिराया। शेर को मारने के बाद उसने सोचा, मैं ऐसे ही सभी खतरों का सामना आसानी से कर सकता हूँ। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह वहां से उठकर आगे बढ़ा। किशन थोड़ी ही दूर आगे गया होगा कि उसे एक आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही उसने कटार निकालने के लिए जैसे ही कमर पर हाथ बढ़ाया, उसे कटार नहीं मिली। वह कटार वहीं पर भूल गया था जहाँ उसने विश्राम किया था, परंतु उसे अब वह जगह याद नहीं थी। थोड़ी देर में उसे दो भालू अपनी ओर आते दिखाई दिए। उसे अपने पिता की दी हुई सीख याद आ गई, भालू के दिखाई देने पर सांस रोककर लेट जाना। वह वहीं पर सांस रोककर लेट गया। भालू वहां से उसे बिना कोई हानि पहुंचाए चले गए। भालू के जाते ही किशन उठा और अपनी कटार ढूंढने के लिए उस जगह पर जा पहुंचा जहां उसने विश्राम किया था, परंतु उसे वह जगह ढूंढने पर भी नहीं मिली और न ही कटार मिली। किशन बिना कटार के जंगल में और आगे जाने का ख्याल छोड़कर वापस लौटने लगा। कड़ी दोपहर में किशन को भूख प्यास सताने लगी। उसे निकट ही एक बड़ा बागीचा और सरोवर दिखाई दिया। सरोवर देखते ही उसे नहाने की इच्छा हुई। वह कपड़े उतार कर नहाने लगा। नहाने के बाद जब वह लौटकर किनारे आया तो देखा कि उसके कपड़े नहीं हैं। उसने चारों तरफ देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने पेड़ के ऊपर नजर दौड़ाई तो उसे पेड़ पर बंदर दिखाई दिए। बंदरों के पास उसके कपड़े थे और वे कपड़ों को दांतों से नोच रहे थे। उसने सोचा, पिताजी ने ठीक ही कहा था, सफर में अकेले नहीं चलना चाहिए। यदि साथ में कोई होता तो ऐसा न होता। कपड़े प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने बंदरों पर पत्थर फेंके तो बंदरों ने जवाब में उसके कपड़े फेंक दिए। कपड़े तो किशन को वापस मिल गए, परंतु वे फट चुके थे। मजबूरी में किशन को फटे कपड़े पहनने पड़े। फटे कपड़े पहनकर वह वापस घर आ गया। उसने अपने पिता से पर्यटन में हुई मुश्किलों को बताया और पिता द्वारा बताई गई

बातों को न मानने पर उत्पन्न हुई परेशानियों को भी बताया और मुझके लिए माफी मांगी। पिता ने किशन से कहा, तुम्हें मेरी बातों का अनुभव हुआ? हर अनुभवों से ही आदमी कुछ सीखता है। इसके बाद किशन भी पिता के कामों में हाथ बटाने लगा। अब वह अपने पिता की हर बात मानता था और इस तरह किशन अपने पिता का लाडला बेटा बन गया। तो बच्चों, जो बच्चे अपने माता पिता की, शिक्षकों की या बड़ों की बातें मानते हैं, वे निश्चित रूप से सभी के प्यारे बन जाते हैं। अच्छी अच्छी बातों को सीखकर और बड़ों का आशीर्वाद

0: पिता का लाडला बेटा बन गया। तो बच्चों, जो बच्चे अपने माता पिता की, शिक्षकों की या बड़ों की बातें मानते हैं, वे निश्चित रूप से सभी के प्यारे बन जाते हैं। अच्छी अच्छी बातों को सीखकर और बड़ों का आशीर्वाद लेकर वे जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं, है ना बच्चों?
1: हाँ दीदी।
0: इस कहानी के बाद आइए बच्चों सुनते हैं एक मीठा सा गीत।

0: इसी के साथ घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि कार्यक्रम को यही विराम देना होगा। तो बच्चों, चलने से पहले हम अपने श्रोता बच्चों से यह जरूर कहना चाहेंगे कि बच्चों, कैसा लगा आपको आज का कार्यक्रम? अपने विचारों को पत्र में लिखें और भेज दें हमें इस पते पर। कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम अंकुर, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। इसी पते पर भेजे गए आपके पत्रों का करेंगे हम बहुत ही इंतजार। दीजिए अपनी वंदना दीदी को इजाज़त। जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।

अभी हमारे श्रोता बाल श्रोताओं का कार्यक्रम अंकुर सुन रहे थे आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। संकलन एवं वाचन वंदना कुमारी का था, प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। श्रोताओं, अब सुबह के 10:30 होने वाले हैं। अब हम सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। कार्यक्रम में पहला गीत सुनेंगे भरत शर्मा व्यास की आवाज़ में। इस पारंपरिक गीत को भरत शर्मा व्यास ने ही संगीत दिया है और एल्बम है करी हम कौन बहाना। तो आइए इसी एल्बम से सुनते हैं करी हम कौन बहाना। एल्बम से एक खूबसूरत सा गीत भरत शर्मा व्यास के आवाज़ में।

आप सुन रहे हैं भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश सुनते हैं शारदा सिन्हा की आवाज़ में। पारंपरिक गीत को शारदा सिन्हा ने ही संगीत दिया है और एल्बम है परदेसिया बलमुआ।

शारदा सिन्हा के गाए इसी गीत के साथ भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:45 होने वाले हैं। अगला कार्यक्रम सुनते हैं भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स रसधार। इस कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ भोजपुरी एल्बम गीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनेंगे भरत शर्मा ब्यास के आवाज़ में खूबसूरत सा गीत। अशोक शिवपुरी के बोल हैं, भरत शर्मा ब्यास का संगीत है और एल्बम है निमिया के डाढ़ मैया।

आप सुन रहे हैं भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसधार आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम की अगली और आखिरी पेशकश तनु प्रियंका की आवाज़ में, विट्टू विद्यार्थी के बोल हैं, अंजनी सिंह का संगीत है और एल्बम है राम जी के रचल विधान। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम के आखिर में राम जी के रचल विधान एल्बम से एक खूबसूरत सा गीत।

0: तनु प्रियंका के गाए इसी गीत के साथ भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम रसधार अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। पूर्वाहन के 11 बजे हैं, सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों को थोड़ी देर में।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती। बेचारा

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार।
1: आज की जो विविधा है इसमें फुहारों की बात होगी, लेकिन ये जो वर्षा है ये सुरों की वर्षा है और सुरों की इस रस वर्षा में हम भीगेंगे। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में दो महान संगीतकारों की बात, एक ऐसे संगीतकार की बात जिन्होंने हिंदी फिल्म संगीत को बहुत कर्णप्रिय की थी, और एक और संगीतकार की बात जिनके बारे में सिर्फ एक ही शब्द निकलता है और वो है वर्सेटाइल। तो हमारे श्रोता समझ रहे हैं हम किनकी बात करने जा रहे हैं।
0: दो संगीतकारों की हम बात करने वाले हैं, इनमें जो सीनियर है, वरिष्ठतम हाँ। है, उनकी बात पहले करते हैं
1: जी।
0: कल्याण जी वीर जी शाह,
1: वाह, एक से एक सुंदर मीठे धुनों के रचयिता कल्याण जी वीर जी शाह।
0: मूलतः ये शाह परिवार गुजरात का जो कच्छ इलाका है
1: जी जी।
0: वहाँ के कुंद्रोड़ी गांव का रहने वाला था, और कल्याण जी के पिता मुंबई आ बसे थे व्यापार करने के लिए
1: जी।
0: और दोनों भाई कल्याण जी और आनंद जी उन दिनों व्यापार में अपने पिता का हाथ भी बटाते और संगीत सीखा करते।
1: हाँ, और बड़ी दिलचस्प बातें उस समय से जुड़ी हुई हैं जो कई बार हमारे श्रोताओं ने भी सुनी है, मुझे लगता है उन्हें भी पता है, लेकिन ये जरूर है कि उनके जो शॉप थी, उनकी जो दुकान थी, वहाँ एक संगीत रसिक आया करते थे।

0: जी,
1: और उनके साथ ये बातचीत जुड़ी हुई है।
0: वो संगीत शिक्षक थे असल में, वो कल्याण जी के पिता की उसी दुकान के ग्राहक थे, बहुत
1: जी
0: पुराने ग्राहक थे, और सौदा ऐसे ही तय हुआ करता था हमेशा कि जो पैसे उन्हें देने होते हैं उसके बदले वो कल्याण जी और आनंद जी को संगीत सिखाया करते
1: क्या
0: थे।
1: बात है। देखिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे संगीत रचा बसा है। एक दुकान है जहाँ पिता के साथ दो पुत्र हैं और वहाँ संगीत का जो है माहौल बना हुआ है। क्या ही सुंदर दृश्य होगा और क्या ही सुंदर बातें हैं ये जो हम सुनते हैं।
0: और जिस इलाके में ये लोग रहा करते थे शाह परिवार, वहां बहुत से गुजराती और मराठी संगीत प्रेमी बसते थे।
1: हाँ
0: जी, पूरा माहौल ऐसा था कि
1: जी
0: गणेशोत्सव हो या दुर्गा उत्सव हो, अलग अलग अवसरों पर संगीत के कार्यक्रम वहां हुआ करते थे।
1: जी
0: और कल्याण जी और आनंद जी को बचपन से ही मौका मिलता रहा संगीत वो सुना करते, सीखा करते, बहुत से वाद्य वो बजाया करते। और चूंकि कल्याण जी बड़े भाई थे, वो पहले इंडस्ट्री की तरफ आए, और 1954 की बात है कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, या हम ये कह सकते हैं कि वो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो विदेश से आया
1: कौन
0: था,
1: सा।
0: उसका नाम था क्लेवियोलाइन, और इसमें किसी कीबोर्ड या पियानो की जैसी कीज थी,
1: जी जी
0: और उस कीबोर्ड पे इन्होंने वो धुन बजाई थी जिसे हम नागिन धुन के नाम से जानते हैं।
1: हाँ, हेमंत दा ने अपनी फिल्म नागिन में उसी धुन का
0: जी
1: प्रयोग किया है और हमारे श्रोता बखूबी जानते हैं कि कल्याण जी भाई ने इस धुन को बजाया और अमर धुन हो गई ये।
0: बिल्कुल, और फिर तो सिलसिला चल पड़ा। पहले वाद्य बजाते थे, बाद में कल्याण जी भाई असिस्ट किया करते थे हेमंत कुमार जी को,
1: जी जी
0: और फिर
1: जी
0: उन्हें मौका मिला स्वतंत्र रूप से एक फिल्म के संगीतकार बनने का, और वो फिल्म थी सम्राट चंद्रगुप्त।
1: और क्या ही मीठे गीत उस फिल्म के
0: जी
1: हैं। तो श्रोताओं, आज हम इतनी बातें कर रहे हैं कल्याण जी वीरजी शाह की, उनकी पहली फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त तक की जो यात्रा है उसका एक संक्षेप में विवरण अभी तक जयंत जी ने दिया। और मुझे लगता है ये समय आ गया है जब बाकी की बातें जो हैं या इसके अलावा जो बातें हैं वो स्वयं हम कल्याण जी के स्वर में ही क्यों न सुने। और आज श्रोताओं, कल्याण जी वीरजी शाह जी को हम याद कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम विविधा में 30 जून उनका जन्म दिवस है,
0: जी
1: तो आज विविधा में जो सबसे पहली प्रस्तुति है वो यही है। श्रोताओं, संगीतकार कल्याण जी वीरजी शाह से बातचीत की ये रिकॉर्डिंग जिसे हम अपने संग्रहालय से लेकर आए हैं, और कल्याण जी से बातचीत की है गणेश शर्मा ने।
2: ये सब जानते हैं कि नागिन की वो मशहूर बीन आपने, कल्याण जी भाई ने ही बजाई थी, उसकी कुछ यादें हमें बताइए।
3: शॉर्ट में कहूँगा कि वो क्लेविलिन इंस्ट्रूमेंट था, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट था, जो उस टाइम फर्स्ट सिंथेसाइजर आया था। उसके बाद तो अभी सिंथेसाइजर की दुनिया हो गई, और उसमें वो कॉम्बिनेशन था नहीं एक्चुअली नागिन बीन, क्योंकि फॉरेन में तो बीन समझती नहीं है, तो हमने कुछ कॉम्बिनेशन बना के वो एक नाग पंचमी करके एक पिक्चर थी, नाग कहीं जा बसी हो रही मेरे पिया को न दसी हो रही। उसके बाद ये सुन के वो मुझे लगता है जालान साहब ने सुना था, और उनके बाद हेमंत कुमार जी ने, वो नागिन पीछे बन रही थी उसके लिए मुझे बुलाया गया, और फिर उसमें नागिन बीन बजाई मैंने। और वो आप पूछेंगे कि उसमें कोई कोई इंटरेस्टिंग बात सुनाइए, तो मुझे याद है बरोबर कि लता जी उस टाइम ही कह रही थी कि कल्याण जी कुछ भी बोलो मुझे लगता है कि ये गाना ऐसा सुपरहिट होने वाला है कि आप याद करेंगे, मेरी बात याद करना। आज भी हम याद करते हैं, सही लता जी ने कहा था उससे।

0: लालन जी भाई, फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त आपकी पहली फिल्म थी जिसमें आपने संगीत दिया, और उस फिल्म में लता मंगेशकर ने आपके लिए गीत गाए। उसके बाद तो आपका लता जी के साथ में एसोसिएशन बहुत सारे गानों में रहा, कुछ बताइए।
1: लता जी के बारे में कुछ कहना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनका गाना ही कह रहा है कि वो क्या थे। अभी हमें लता मंगेशकर अवार्ड मध्य प्रदेश का होता है, वो हमें इस साल का मिला, तो वहाँ भी मैंने कहा कि इंदौर में जन्म हुआ उनका, और इंदौर में जन्म हुआ उसी टाइम से लगा कि फिल्म संगीत का जन्म हुआ, इससे ज़्यादा वर्ड मेरे पास नहीं है। और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं कह सकता हूँ कि जब भी हम गाना रिकॉर्ड करके आते हैं तो वही गाना हम जब सुनते हैं तो, और किसी भी सिंगर का गाना जब भी सुना था ऐसा लगता है कि ज़रा और यहाँ कुछ करते तो और अच्छा हो सकता था। लेकिन ये एक ऐसी सिंगर कि जब भी हम गाना लिखे कभी ऐसा लगा नहीं कि नहीं नहीं नहीं अभी कुछ कम रह गया, कम रह, बस यही, बस इनकी खूबी, ऐसे आगे कुछ नहीं।

0: कलंजी भाई, स्टेज प्रोग्राम्स आपने सबसे ज्यादा किए हैं। एक खास बात यह भी रही है कि उसमें सभी फिल्म स्टार्स आपके स्टेज शोज में रहे हैं, तो स्टेज आपने कब से शुरू किया और कुछ बातें उस बारे में बताइए हमें।
1: एक्चुअली क्या था कि हम फिल्म लाइन में आए उसके पहले स्टेज की दुनिया में थे। हमारी एक पार्टी चलती थी कल्याण जी विजयन पार्टी,

तो उसमें काफ़ी शो करते थे हम, मतलब उसमें क्या उस टाइम के रतन और इस टाइप के गाने पॉपुलर होते थे, वो गाने बजाने के और पब्लिक को खुश करना। उसके बाद तो नागिन की बीन आई, उसके बाद तो स्टेज की दुनिया हमारे लिए बहुत ईजी हो गई। लेकिन हमारे माइंड में ऐसा हमेशा चलता था कि अगर कोई पॉपुलर सिंगर और पॉपुलर एक्टर अगर स्टेज के ऊपर आ जाए तो बहुत ही बड़ी बात बन सकती है, क्योंकि पब्लिक उनको सुनना चाहती है, देखना चाहती है। तो सिंगरों को उस टाइम हेमंत कुमार, अपने मुकेश जी, पहले वो शर्माते थे क्योंकि आदत नहीं ना, जो रिकॉर्डिंग करते हैं उनको स्टेज पे ज़रा प्रैक्टिस नहीं होती है ना, कुछ बोलना भी पड़ता है कभी कुछ भी, लेकिन सबको प्रैक्टिस डालते डालते और सभी अच्छे हो जाए। तो उस टाइम फिर आए किशोर कुमार। किशोर कुमार तो पहले एकदम डरते थे ऑडियंस के सामने आना करें, पर बड़ा उनको ऐसे, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो गए थे फिनेंशियल, तो उनके जो एडवाइज़र था वो बोले किशोरदा आप स्टेज पे आ जाइए तो बहुत पैसे मिलेंगे। हम भी बोलते, तो बोले नहीं स्टेज के ऊपर मैं जाऊँगा तो मैं गिर जाऊँगा। तो हम उनको कैसे समझाते थे, एक दिन मैंने समझाया उनको, किशोरदा आप क्यों डर रहे मेरे को समझाइए कि आपके सामने जो भी बैठे हैं वो सात जन्म तक किशोर कुमार नहीं बन सकते। क्यों कि सामने कोई बैठे हुए ऐसे नहीं है कि लता मंगेशकर बैठी हैं, कि बड़े गुलाम अली बैठे हैं, कि आमिर खान बैठे हैं, कि आपको डर लगे कि अरे बात पॉइंट अच्छा है, अच्छा है, फिर से बोलो मेरे को अच्छा लग रहा है। मतलब वो अगर हो तो ठीक है भाई, हमको डर लगे कि भाई वो क्या होने, ये तो बेचारे ऑडियंस है एकदम, जिसने गाना खा लिया आपके इतने फैन है कि यार एक दो दफे बोलते रहो बहुत अच्छा यार, मैं क्यों डर रहा हूँ, फिर क्यों डर रहा हूँ, नहीं डरूंगा, ऐसे करके करके उनको स्टेज पे ले जाते थे और डरते थे। पर बाद में तो ऐसे मास्टर हो गए कि ओ हो आप बिलीव नहीं कर सकते, उनके तो इतने किस्से हैं, कभी मैं सुनाऊंगा आपको तो लगेगा। एक दिन क्या हुआ, हम कलकत्ता में गए उनके प्रेजेंटेशन में बताता हूँ, तो योडलिंग उन्होंने निकाली, मतलब योडलिंग, तो हम लोग बैठे हुए कोई प्लान बने थे, मतलब किशोरदा एक सवाल मैं पूछूंगा फिर आपने, तो हम बोले तो मेरे किशोरदा आप जो ये योडलिंग जो निकाले वो कैसे आपको आइडिया आया। वो बोले मैं छोटा था बच्चा एकदम, तब मैं बहुत शरारती था, मेरी माँ बहुत मारती थी मेरे भी, तो बाद में क्या हुआ मैं अच्छा हो गया, फिर भी मेरे को पिट रही है। तो मैं बोला ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्यों मार रही है मेरे को माँ कुछ। तो बोले तुम रोते हो तो एक आवाज़ निकलती है हमको बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बोला कि किशोरदा अभी वो आवाज़ निकाली आप इतने अच्छे आप बात कह रहे हैं, तो बोले नहीं ऐसे नहीं निकलेगी, मेरे को मारो तुम। अरे मतलब कैसे मारेंगे इतने ऑडियंस के बीच में, मैं आपको मारूँ ऐसे, तो बोले तब मैं तो नहीं निकलूँगा। तो हमने ऐसे प्लान किया था, मैं ऐसा एक दौर से एक ऐसे लाफा मारा, तो हमने दौड़ करके और उसमें से रो के फिर उसमें आवाज़ निकल के उन्होंने गाना शुरू किया, बस ये इस टाइम।

रहो झुम झुम झुम झुम झुमरो पकड़ घूमो बन के घुमरो साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला सीधा।

0: बहुत बड़े बड़े अवार्ड से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति पुरस्कार, पद्मश्री। कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट किसी अवार्ड फंक्शन का अवार्ड लेते हुए आप श्रोताओं को बताइए।
1: कोई भी अवार्ड मिलता खुशी तो होती है, उसमें कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन मुझे लगता है कि जनता का जो अवार्ड है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं और पहला ही जनता के सामने जाते हैं और उनकी क्या खुशी हुई है, वहीं हमें अवार्ड मिल जाता है। बाकी तो फिर किसने रिकग्नाइज किया कि

0: नहीं किया उसमें नहीं, लेकिन जब भी कोई अवार्ड लेते हैं तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है हमारी, क्योंकि हम चाहते हैं कि कितने प्यार से लोगों ने हमें अवार्ड दिया है, तो हम इस संगीत के जरिए क्या समाज की सेवा कर सकते हैं, क्या देश की सेवा कर सकते हैं, क्या हमारे आने वाले भाइयों के लिए हम कुछ कर सकते हैं, ये हमारा हमेशा माइंड में रहता है। इसलिए जब भी कोई अवार्ड लेते हैं हमारी जिम्मेदारी तो बढ़ जाती है, बस यही है। फिर आप अगर मजा की बात करें तो जैसे फिल्म फेयर अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है, तो हमें कोरा कागज के लिए मिला, लेकिन बहुत लेट मिला था, 27 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद हमें मिला था। तो आप पूछते हैं कि ये अवार्ड मिलने से आपको क्या महसूस हो रहा है आप, तो मतलब भाई बहुत खुशी हो रही है, क्यों नहीं खुशी हो, क्योंकि बड़ी उम्र में लड़का हुआ है।
1: कल्याण जी भाई, इस तरह के जो जोक्स हैं, जो एक चुटकुले और आप बातों बातों में कहते हैं, जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी बहुत मशहूर है, आप जोक्स बहुत अच्छा बोलते हैं और चुटकुले आप बहुत अच्छा बोलते हैं।
0: जब ये ह्यूमर का सब्जेक्ट निकाला है तो मुझे लगता है कि ह्यूमर को मैं बहुत महत्व देता हूँ, कि वो क्या कि जहाँ जाएँ कोई लोग हंसते नहीं हो सब, तो और इसमें सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसने इंस्पायर किया हो तो आचार्य रजनीश जी ओशो, उन्होंने मुझे बोला था कि कल्याण जी आप में जो आर्ट है इसको आप डेवलप कीजिए, वो कमाल का आर्ट है, बिल्कुल अगर हमारे में भी हो जाता तो मैं तो जो मेरा सब्जेक्ट है प्रीचिंग ना लगे, इसलिए मैं आपसे काफ़ी चीज़ें एडॉप्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और उन्होंने बहुत इंस्पायर किया, इसलिए मैंने बहुत स्टडी किया, मैंने ह्यूमर की क्लासेज भी शुरू किए थे। अभी आप बोलेंगे कोई जोक सुनाए, जैसे मैंने बोला अभी बड़ी उम्र में लड़का, पिक्चर साइन की थी नन्ना फरिश्ता, तो हमको पहली मद्रास की फिल्म थी हमारे पास, तो वहाँ स्टोरी राइटर बड़ी सीरियस स्टोरी सुना रहा था कि हमारी स्टोरी देखो ये है ये, और उसमें लास्ट में बोला कि इसमें एक लोरी आती है, बस दिस इज बेस्ट आके पिक्चर में, वो लोरी बहुत काउंट करती है, लोरी लोरी लोरी बहुत अच्छी, कल्याण जी भाई बस बनाना बना। तो मैंने ऐसे बोला कि हमारे तो ऑर्डिनरी गाने में लोग सो जाते हैं, तो लोरी में तो हम जान लड़ा देंगे, सवाल ही नहीं। तो इतना बड़ा लाफ्टर आया, वो बोले वो क्या, वो समझे नहीं, बाद में उनको समझाएगा कि हम सही।

0: मुकेश जी को आपने उनके करियर के सबसे ज्यादा गाने गवाए हैं, बहुत से हिट गाने मुकेश जी के आपके द्वारा संगीतबद्ध हैं।
1: मुकेश जी के बारे में कुछ कहना हो तो हम इतना ही कह सकते हैं कि जब भी वो गाते थे तो सीधे हार्ट तक पहुंच जाते, सीधा हृदय, कोई दिमाग के ऊपर गाना नहीं जाता था कि मेरे टूटे हुए दिल से अगर गाते हैं तो ऐसा लगता है कि सही इनका दिल टूटा हुआ है, बस ये इनकी एक खूबी थी। तो फुल ऑफ एक्सप्रेशन, और जितने वो अच्छा गाते थे इतने ही अच्छे इंसान थे, ग्रेट आर्टिस्ट। सभी गाने उन्होंने बहुत प्यारे गाए, लेकिन शमीम जयपुरी जिनका पहला ही गाना हमने मतलब उन्होंने लिखा था, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो, अर्जुन हिंगोरानी की पिक्चर दिल भी तेरा मेरा,

0: कल्याण जी भाई, गायक गायिकाओं की बात हम कर रहे हैं और मोहम्मद रफ़ी का जिक्र अगर ना हो तो प्रोग्राम पूरा नहीं कहलाएगा।
1: मुझे लगता है कि रफ़ी जी एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए गिफ्ट जिसको बोल सकते हैं। रफ़ी जी वॉज ए ऑलराउंडर आर्टिस्ट। जैसे क्रिकेट में हम चाहते हैं कि भाई बैट्समैन भी हो, विकेट कीपर भी हो, बॉलर भी अच्छा हो, अच्छा फील्डर भी हो, किसी भी रंग का गाना गवा लीजिए आप, क्लासिकल से लेके कॉमेडी गाना, पैथोस गाना। और एक हीरो के लिए कोई भी हमें दूसरा सिंगर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अभी इसके लिए और, बस ये इनकी खूबी थी और बहुत प्यार से गाते थे, बस यही।

0: कल्याण जी भाई, कोई ऐसे संगीतकार हमारे और वरिष्ठ संगीतकारों में जिनके काम ने आपको इंस्पायर किया हो?
1: कोई भी आदमी किसी भी सब्जेक्ट में जब आगे बढ़ता है तो उस सब्जेक्ट के जो टॉप लोग होते हैं उनको जरूर सुनता है, देखता है क्या किया है उन्होंने। तो हमारा म्यूजिक का सब्जेक्ट रहा, तो हमने अपने टाइम में देखा कि नौशाद जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग, क्या बात है। फिर उस टाइम के सी रामचंद्र, उन्होंने बहुत अच्छा किया। मदन मोहन, उन्होंने अच्छा किया। शंकर जयकिशन, उन्होंने अपना एक रंग अलग दिखाया था। संजीव चौधरी, अनिल विश्वास, ये सब हैं। लेकिन अगर हमें पूछे कि भाई आपको ज़्यादा में ज़्यादा किसने इंस्पायर, तो मैं एस डी बर्मन को बहुत मानता। काहे के लिए कि एक 4-5 मिनट का हमारा गाना होता है, उस 4-5 मिनट के अंदर 2-2.5 मिनट सिंगर गाता है, बाकी ऑर्केस्ट्रा बजता है। तो उसमें ऐसा एक एटमोसफियर पैदा करो कि सिर्फ कानों से दिखाई देने लग जाए कि ये बनाया है, ये बनाया, वो बहुत मुश्किल है। और वो बना देते तो हम उसको बहुत स्टडी करते थे, क्या किया गया इन्होंने, कि अगर कोई सीने के बादल है तो लगता है कि बादल गरज रहे हैं, ये गरज रहे हैं, ऐसे हर रंग में उन्होंने अपना अपना रंग। सुन मेरे बंधु, उनका जो अपने स्टाइल से गाया है वो सुनाइए, बहुत मजा आया।

0: कल्याण जी भाई, हम सब जानते हैं कि बच्चों के लिए एक ग्रुप जिसका नाम है लिटिल वंडर्स, वहाँ बच्चों को, छोटे बच्चों को परफॉर्म करते देख, गाते देख, बजाते देख, विश्वास ही नहीं होता कि बच्चों में इतना टैलेंट हो सकता है। आप मुझे ये बताइए कि ये ग्रुप को फॉर्म करने में ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको ये सोचने के लिए मजबूर किया कि बच्चों के साथ कुछ काम किया जाए?
1: फिल्म की दुनिया और स्टेज की दुनिया, तो उसमें देखा कि जब भी कल्याण जी आन जी नाइट होती थी तो सबसे ज़्यादा अगर कोई स्कोर कर जाए तो बाल कलाकार कर जाता था। कितने भी बड़े आर्टिस्ट आए हो, लेकिन जब भी एक छोटा कलाकार आ जाता था तो भले वो उतना उसका अच्छा नहीं भी परफॉर्मेंस हो, फिर भी इतनी क्लैपिंग ले जाता। तब भी सोच रहे थे कि क्यों ना ऐसा हो कि पूरा शो अगर बच्चों का हो जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है। और फिर बच्चों में क्या है कि मैं देखा हूँ बहुत फास्ट डेवलपिंग, उनको कोई टेंशन नहीं होता ना, उनको जो काम दिखा देंगे बस वही काम करना है उनको। तो देखा कि ट्राई करें हम, और आज देखते हैं कि मुझे लगता है कि सभी लोगों का ये कहना है कि शो की दुनिया का सबसे बड़े बड़ा शो है, क्योंकि तीन पीढ़ियों को बच्चे संभालते हैं। एक तो छोटे बच्चे आते हैं, फिर उनके पेरेंट्स, फिर उनके पेरेंट्स, ये तीन पीढ़ियाँ एक ही, और वो तीन घंटे बच्चे ऐसे परफॉर्म करते हैं कि अगर जिसने शो देखा हो कोई बता सकता है कि वो बहुत है। और हम बहुत लकी रहे कि बड़े बड़े जितने आर्टिस्ट हैं, अमिताभ जी, दिलीप कुमार जी, सुनील दत्त, वहाँ से लेके जितने अभी गोविंदा जी आए थे, अमरीश पुरी आए थे, सभी ऐसे सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल काम छोड़ के अपने बिल्कुल आते हैं और बिल्कुल सिखाते हैं। ये एक शो देखा हमने कि कोई की आदमी को जेलसी नहीं होती है, सब एक दूसरे को तारीफ कर रहे हैं, बस यही एक खूबी है।
0: बच्चों की बात चली है, मैं चाहता हूँ एक कोई ऐसा गाना आप सुनवाएं श्रोताओं को जो आप ही का कॉम्पोजिशन हो और बच्चों के लिए हो। जो गाना
1: बजाइए, एक बट्टा दो, दो बट्टी चार, कालीचरण में था, जिसमें अनुराधा पौडवाल और कंचन जी ने गाया था, और वो मुझे लगता है वो दोनों का पहला ही गाना था उसे।

0: कलन जी भाई, संगीत सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है जिस पे आप काम कर रहे हैं। बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और बहुत से साधु संतों का सत्संग भी आपको मिला है, तो आपकी जिंदगी की फिलॉसफी, जिंदगी का फलसफा क्या है, हमें बताइए।
1: अच्छा सवाल है ये, और मुझे लगता है कि सभी लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम बचपन में जब भी कोई ज़्यादा तो एजुकेटेड है नहीं, लेकिन पिताजी मेरे वो भी कोई ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छी बातें करते थे और प्रैक्टिकल में ना आचरण उनका बहुत स्ट्रांग था। तो कहते थे बेटा देखो,

कोई भी लाइन में जाना, लेकिन जीवन की जरूरत कोई ज्यादा नहीं है, और वो जरूरत से अगर आगे निकल गए तो बाकी का चीज है वो बांटना है। ऐसा होना पैसा है काम कर रख के बैठे हुए कुछ बड़े, वो भी बात हमें अभी भी माइंड में है बिल्कुल, और बड़ों की इज्जत करना ये करना, तो वो सब हमारे बचपन में जो डाले हुए संस्कार हैं वो अभी तक हैं। तो हमने देखा कि हम संगीत में आगे बढ़ गए तो मनी तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो बाकी सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो हमने देखा कि अगर आदमी को निजी आनंद लेना हो तो दूसरों के लिए हम कुछ करते हैं तो ये अच्छा लगता है। तो ये उनकी वजह से हम जितना भी कुछ अपना जो भी कुछ है तो उस चैरिटी में डालने की कोशिश की, फिर अपने शो की दुनिया में जो भी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं उनके लिए जो भी कुछ कर सके तो ये करते हैं। तो ये इसका एक आनंद है, वो एक बहुत ही बड़ा आनंद है और सभी को इसमें लेना चाहिए ऐसा मुझे लगता है।

0: मनीषा जी, इस रिकॉर्डिंग को सुनकर के कैसा अलग सा आनंद महसूस कर रहे हैं? हमारे श्रोता भी निश्चित रूप से इसको अनुभव कर रहे होंगे।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा जयंत जी आपने। और संगीत में वो ताकत है, वो शक्ति है कि वो इंसान के मन मस्तिष्क को शीतल कर देती है, ठंडा कर देती है। बहुत परेशान अगर कोई इंसान है, डिप्रेशन में है, तो वो एक मधुर संगीत सुन के आनंदित हो उठता है, और अगर आनंद में है तो उसका आनंद जो है वो द्विगुणित हो जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: संगीत का सौंदर्य है। जिन कलाकारों को ये गुण मिला है, जिनको माँ सरस्वती ने ये आशीर्वाद दिया है, वो वाकई बहुत पुण्यात्मा होंगे जिन पर ये आशीर्वाद माँ सरस्वती का है। एक ऐसे ही कलाकार हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूंगी, और वो हैं राहुल देव बर्मन।
0: वाह क्या बात है।
1: जिनके लिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था ना शुरुआत में, वर्सेटाइल।
0: वर्सेटाइल, वैविध्यतापूर्ण कलाकार।
1: जी हाँ जी। और आपको नहीं लगता जयंत जी कि राहुल देव बर्मन जी की संगीत की जो विशेषता है ना, वो ये है कि वो नित युवा संगीत है हमेशा।
0: जी,
1: आज
0: जी।
1: तक भी जो आज की जो नई पीढ़ी है, वो भी आरडी बर्मन के संगीत को लेकर उतनी ही उत्साही है जितनी पुरानी पीढ़ी थी, या 60, 70 और 80 के दशक में उस संगीत को जितना पसंद किया उस पीढ़ी ने, उतना ही पसंद आज की पीढ़ी भी कर रही है।
0: और विविधता, ये जो शब्द है, इसको सार्थक किया है आरडी बर्मन के संगीत ने।
1: जी हाँ,
0: आप उनका पहला गाना ले लीजिए या उनका आखिरी गीत कंपोजिशन ले लीजिए।
1: जी हाँ, एक लंबा दौर आरडी बर्मन साहब का रहा संगीत में, और पहला गीत जिसका जिक्र भी है जयंत जी कर रहे हैं, छोटे नवाब का गीत,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: जो उनकी पहली फिल्म थी, घर आ जाए घिर आए बदरा सांवरिया।
0: रोंगटे खड़े हो गए।
1: जी हाँ, शास्त्रीय संगीत की छाप उसमें स्पष्ट दिखाई देती है। और फिर उसके बाद उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, सर्वाधिक प्रयोग धर्मी संगीतकार भी राहुल देव बर्मन रहे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। न केवल संगीत रचनाओं में जिस तरह के वाद्य इस्तेमाल किए जाते थे, वो कई बार ऐसे वाद्य होते थे जो लोक गीतों में हमें सुनाई देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: या कई बार नए तरह का वाद्य

0: बनाते थे, यानी कि बाल्टी में किसी यंत्र को डुबा करके और उसमें से आवाज निकालना, लोहे की किसी चीज को पानी में डुबा करके उससे आवाज निकालना, ऐसे कई प्रयोग उन्होंने किए।
1: बहुत इनोवेटिव जिसे कहा
0: जी,
1: जाता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: बहुत नए नए प्रयोग करने वाले आरडी बर्मन साहब के बारे में हम आपको क्या बताएं। हमें तो ऐसा लगता है जैसे राहुल देव बर्मन संगीत नहीं रचते थे, संगीत का एक अनुष्ठान करते थे, और उस अनुष्ठान का जो उद्यापन है वो हुआ था 1942 अ लव स्टोरी के साथ,
0: वाह वाह
1: जो उनकी आखिरी फिल्म थी। जयंत जी,
0: जी
1: एक ऐसे प्रयोगधर्मी संगीतकार राहुल देव बर्मन, जिनका जन्मदिन 27 जून को सभी संगीत प्रेमियों ने मनाया और अभी तक उसका असर हम सबके दिलो दिमाग पर है।
0: जी जी
1: श्रोता, आर डी बर्मन साहब के बारे में हम जब इतनी बातें कर रहे हैं तब आपका ध्यान जरूर इस बात पर आकृष्ट हुआ होगा कि हम किस कार्यक्रम को अब आपको सुनवाने जा रहे हैं, तो आप शायद बिल्कुल सही समझ रहे हैं।
0: जी
1: मुझे जयंत जी के चेहरे से भी लग रहा है कि वो समझ गए। तो श्रोताओं, हमने जो आज ये रिकॉर्डिंग्स आपके लिए चुनी है, ये एक लंबी श्रृंखला है विविध भारती की, और इसकी प्रोड्यूसर छाया गांगुली जी हैं, जो खुद एक बहुत अच्छी गायिका, बहुत अच्छी कलाकार। और छाया जी का तो ये उपकार है कि उन्होंने तीन महान कलाकारों को एक साथ विविध
0: जी,
1: भारती के
0: यही
1: मंच पर।
0: विशेषता इस श्रृंखला की
1: जी
0: है
1: हाँ,
0: कि आर डी बर्मन साहब के संगीत पर केंद्रित हैं, मगर उनसे बातें जो कर रहे हैं वो भी महान कलाकार है,
1: जी हाँ,
0: आशा जी और गुलजार साहब।
1: जी हाँ। और जब इन तीनों कलाकारों का एक कुंभ होता है तो ये कार्यक्रम बन के निकलता है, और वो है मेरी संगीत यात्रा, जो सीरीज विविध भारती की बहुत पॉपुलर सीरीज है। श्रोताओं, आप आज जो सुनेंगे ना उसमें हम तीन अंक उसके प्रसारित करेंगे, तो पहला जो अंक है उस बारे में आप बताइए।
0: जी मनीषा जी, पहला हिस्सा जो है उसमें आरडी साहब ने अपनी पहले फिल्म की यानी छोटे नवाब के संगीत की बात की है।
1: तो पहले उसी हिस्से को सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते
0: जी
1: हैं।
0: जी
2: मेरा पहला गाना गुलजार छोटे नवाब फिल्म का था, और उसमें पहला गाना जो है दीदी मतलब लता जी खुद गाई थी, और उस गाने के बारे में एक बहुत दिलचस्प कहानी है।
3: अच्छा,
2: ऐसा है कि पुराने चावल जैसा होता है, बहुत घमंडी होते हैं सब।
3: अच्छा।
2: तो मेरे पिताजी भी बहुत घमंडी थे, दोनों का कुछ अनबन हो गया था और दोनों कुछ बोलचाल बंद हो गया था।
3: अच्छा अच्छा, कट्टी हो गई थी।
2: कट्टी हो गई थी। और दीदी गा नहीं रही थी पिताजी के लिए, तो पिताजी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, किसी और से गवाएंगे। तो कुछ दिन तक गाना उनके बगैर ही हुआ। तो मेरा वो पीरियड में ऐसा हुआ कि मुझे वो पिक्चर मिली और मैंने दीदी के पास गया, जाके कहा कि दीदी ये मेरा पहला गाना है तो आपको गाने पड़ेगा। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं गाऊंगी, कौन सी डेट है बताओ। तो डेट फिक्स करके बताया। तो उन दिनों में क्या होता था कि रिहर्सल हुआ करता था।
3: अच्छा।
2: मतलब दो या तीन लता भाई जैसे आर्टिस्ट ही है, आशा बोलो कोई भी हो, रफी साहब बोलो, लेकिन आजकल दुर्भाग्य है कि आजकल उतना
3: रस्म नहीं रही।
2: रस्म नहीं है। तो वो आए हमारे घर पे रिहर्सल करने के लिए, और रिहर्सल में गाना सुन के बहुत आशीर्वाद दी। उन्होंने कहा कि पिताजी से नहीं मिलाओगे, तो मैंने बोला कि वो दरवाजे पे खड़े हैं दूसरे कमरे में, वो आने की सोच रहे हैं। तो उन्होंने आवाज दी, दादा अंदर आइए।
3: रूठे हुए थे,
2: रूठे हुए थे। पिताजी आए आके, बोला लता कितना डेट दे सकते हो तुम मुझे। वो ऐसे बात करते थे, बोला आपको जितना डेट चाहिए, एक महीना का चाहिए ले लीजिए। तो उसके बाद हमारा गाना तो हुआ ही, पहला गाना हुआ घर आजा घिरा। और उसके बाद से फिर पिताजी के साथ लता भाई के अच्छा हो गया।
3: अच्छा,
2: और गाने गाए बहुत सारे पिक्चर।
4: एक बात मैं आपसे पूछूं?
2: बिल्कुल,
4: सच बताने का।
2: हाँ बताइए।
4: जब आपने लता मंगेशकर को
2: जी
4: पहले रिहर्सल के लिए
2: ये कुछ
4: गाना शुरू किया,
2: घेराव करके मेरे तरफ आ रहे,
4: तब आप अंदर से कांप रहे थे?
2: बिल्कुल कांप रहे थे। श्रोताओं को मालूम होना चाहिए, पहली दफा उनको मिला मैं, मेरे ख्याल से 1950-51 में मिला, वो ठंडी हवाएं करके एक गाना था, उसके रिकॉर्डिंग में मिला।
3: अच्छा।
2: एंड शी वाज सो सिंपल, मतलब लगता ही नहीं था कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, क्या है नहीं है। लेकिन जब मेरा पहला गाना गाया तो मेरे बहुत मेरा भाग ही चमक।
3: क्या बोल कैसे उस गाने के,
2: घर आजा घिर आए।

0: ये तो शुरुआत हुई आरडी साहब की, और उसके बाद
1: अब उसके बाद मैं उस गीत की बात करना चाहूंगी जिसे हमारे जो श्रोता है वो दीवानों की तरह चाहते हैं, और उसमें आरडी बर्मन साहब ने ऐसा संगीत दिया है और ऐसा मधुर गीत है, आप समझ रहे हैं, जिसमें वो रेल लगातार चल रही है रेलगाड़ी, और उसके साथ जी हाँ फिल्म जी, किताब जी, का जी, वो एक जबरदस्त गीत है स्वयं आरडी बर्मन साहब की आवाज में। आइए वो गीत कैसे बना, उस गीत से जुड़ी यादें क्या थी, इसको सुनते हैं। आरडी बर्मन साहब के साथ गुलजार जी हैं और हैं आशा जी।
2: आप सबको तो गवाते हैं
3: जी,
2: जब आप खुद गाना गाते हैं तब मैंने देखा है कि आप क्या क्या करते हैं, कहते आज नहीं गाऊंगा मैं कल गाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ मैं परसों गाता हूँ, परसों आएंगे तो कहेंगे मैं नर्सों गाता हूँ, अच्छा छोड़ दे तू भी मत गा आज, कल करते हैं परसों करते हैं,
4: बिल्कुल इसी तरह की हरकत है आयशा जी, वो भी इसी तरह की एक फोक सी धुन है इनकी, मतलब गाने की रेंडरिंग पर बहुत कुछ मुनसर है
2: जी,
4: मतलब नॉर्मल गाना जिस सिचुएशन का, जिस तरह से आपने एक गाना है इसी को किसी और आवाज में गा लो और किसी और तरह से गा लो तो वो रेंडरिंग उसके बदल दीजिए तो गाने का कैरेक्टर बदल जाता है, ये बात मुझे पंचम ने समझाई थी और बताया था, और मैंने वो घंटी इसी के गले में बांध दी थी कि आप गा के बताओ वो तो पिक्चर में भी इन्होंने गाया, वो गाना किताब फिल्म में है धन्नो की आंखों में, वो नॉर्मली कोई सिंगर गा नहीं सकता, नॉर्मल सिंगर नहीं गा सकता,
2: ये ज़्यादा बेटर है।
4: उस गाने को कैरेक्टर मिला सिर्फ उस रेंडरिंग से।
2: उसमें एक गिटार का जो पीस है डारा डारा डारा डारा डारा
4: वो भी एक एक्सपेरिमेंट है इनका, इन्हीं से पूछे बताएंगे।
3: ये मैं अमेरिका में था और वहाँ पे एक गैजेट जैसा है उसको फ्लेंजिंग कहते हैं, फ्लेंजिंग।
4: अच्छा।
3: तो वो मैंने सुना और सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिस कैन चेंज अ कैरेक्टर ऑफ बिहेवियर ऑफ, जैसे गिटार में अगर वो

0: दी, ये तो अलग ही साउंड करेगा। तो हमने वो खरीद कर लिया और इधर आ गए। वो सुनने में थोड़ा बेसुरा जैसा लगता था, सब लोग हंसते थे क्या लेके आए, इट्स अ नॉइस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एनीथिंग सिंथेसाइज्ड साउंड जो अच्छी तरह अगर यूज किया जाए, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही करता हूँ, काफी म्यूजिक डायरेक्टर करते होंगे, लेकिन अच्छी तरह यूज किया जाए तो बहुत अच्छा सुनाई देता है। लेकिन लोग खराब तरीके से
1: भी, मेरा ख्याल है वही एक इंस्ट्रूमेंट,
2: वही
1: मेजर या मेन इंस्ट्रूमेंट वही, और तो कुछ भी नहीं।
2: उसी के ऊपर
0: कैसा गा रहे थे हम,
2: क्या
0: चलिए गाना सुन के

0: फिल्म किताब का जो गीत श्रोताओं ने इस कड़ी में सुना, मनीषा जी आरडी साहब की प्रयोग धर्मिता यहाँ देखने को मिलती है। और अब हम बात करेंगे उनके एक नॉन फिल्म एल्बम की। आशा भोसले, गुलजार साहब और आरडी बर्मन ने मिलकर के ये एल्बम बनाया था, दिल पड़ोसी है।
1: और दिल पड़ोसी है दरअसल हमारी भी दिल के बहुत पड़ोस में रहता है, बल्कि हम तो कहते हैं कि दिल में ही रहता है। इतना सुंदर एल्बम है, क्या बताएं, इसको तो जितनी बार सुना जाए उतनी
0: इस
1: बार।
0: एल्बम के दो वॉल्यूम है, जितने भी गाने हैं हर गाना अलग है, हटके है, उस गाने का रिदम पैटर्न देख लीजिए, अलग है
1: जी। तो आज कौन से वाले गीत का जिक्र है जिसकी कड़ी हम सुनवा रहे हैं?
0: जी जी, इसमें गुलजार साहब का लिखा हुआ वो गाना है जिसमें बांसुरी की बात है।
1: अच्छा।
0: बांसुरी को एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने देखा है। सातों बार बोले बंसी, एक ही बार बोले ना।
1: क्या बात है, ये तो बहुत ही सुंदर कड़ी है इस श्रृंखला की। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं।
2: दिल पड़ोसी में आप गाना?
3: हाँ, मैं यही कहने वाली थी।
2: कौन सा गाना?
3: सातों बार बोले बंसी,
2: इसके बारे में तो गुलजार बताए।
4: सातों बार बोले बंसी, एक ही बार बोले ना, तन की लागी सारी बोले, मन की लागी बोले,
3: बोले ना।, ना
4: ये गाने में खास बात ये है कि बांसुरी को टोटल परसोनिफाई करके देखिए आप।
2: कैसे?
4: जितनी फूंक तन पे लग,

0: जितनी उतनी बोलती है, अंदर की बात नहीं बताती है। सुर उसके साथ हैं, सातों बोलते हैं, जो चुप रहती है जिस बात पे वो नहीं बोलती। उसमें खूबसूरत बात सिर्फ यह है कि उसे पर्सोनिफाई करके देखिए किस तरह से वो उठ के कृष्ण के मुंह लगती है, मुंह लगी हुई है, मुंह चढ़ी हुई है और वो सारी बात कहती है। एक जो उसका अपनापन है, जो अपने पास रखती है, वो चुप है, जो नहीं बोलती, वो सात सुरों के अलावा है। उसके सारी इलिटरेशन जितनी है वो बांसुरी के साथ पर्सोनिफाई करके देखिए आप।
1: ये गाने में थोड़ा सा लयकारी भी किया था, सरगम भी किए थे, बड़ा अच्छा था मतलब।
2: और इसमें एक बहुत अच्छी थी कि बांसुरी साथ में बोल रही है और आवाज भी आ रही है, तो समझ नहीं आता कि बंसरी बोल रही है कि राधा बोल रही है।
0: जी हाँ, बस वही तो उसमें पर्सोनिफिकेशन है सारी की सारी, जैसे फूंक फूंक के बोलती है। अब वो फूंक से ही एक्चुअली बोलती है बांसुरी।

0: क्या बात है, प्रीत की पीड़ा जाने मुई छाती छेद पड़े।
1: क्या बात है,
0: उठ उठ के फिर मुंह लगती है कान्हा संग लड़े। बांसुरी की इस बात को सुन करके मनीषा जी
1: कुछ और सुनने का मन रहता है क्या?
0: जी जी जी, जी। लगता है इसी अनुभूति के साथ रह जाएं।
1: जी हाँ, तो अब हम यहीं रह जाते हैं श्रोताओ, आपके साथ इन्हीं स्मृतियों में हम भी खोए हुए हैं और आगे बात नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है। इसी तरह के मधुर कार्यक्रमों को लेकर एक बार फिर हम लौटेंगे। अभी इस वक्त तो दीजिए अपनी मित्र मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रीकर को इजाजत। नमस्कार।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।

0: ये विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश में निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाज निर्माण और मरम्मत को राष्ट्रीय मिशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र आने वाले समय में लाखों रोजगार सृजित कर सकता है। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन और निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। नौसेना के अनुसार इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
2: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है और ये दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
1: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमरीका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। श्रीलंका के डांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 27 ओवर में 2 विकेट पर 215 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: साहिल लुधियानवी के बोलों को सुर में ढाला चित्रगुप्त ने, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे वासना फिल्म का ये गीत।
1: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।
5: हर दिल जो प्यार करेगा वो

0: हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई शंकर जय किशन ने। और श्रोताओं, इस गीत के पहले आपने संगम फिल्म का गीत सुना था, उस गीत में भी तर्ज थी शंकर जय किशन की। इस वक्त आप सुन रहे थे शिकार फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी का गाया।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है

0: शायर और गीतकार शकील आजमी
1: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, फिल्म फर्ज का गीत आपने सुना।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

नागिन फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में, वर्मा मलिक के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। यही थी आज के कार्यक्रम यादों की महफिल की आखिरी पेशकश।

0: फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

संस्कृत भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai। विविध भारती की सुर लहरियों की खनक आ चुकी है श्रोताओं आपके आंगन में लेकर सुरीला सफर, जहां हम और आप मिलकर गीत संगीत का ये सफर तय करते हैं। तो आज भी थोड़े खट्टे मीठे अनुभवों के साथ गुजरेगा ये सफर, सुरीला सफर। हमारे फेसबुक के श्रोताओं ने पढ़ी ली है आज की इबारत टेक्स्ट और उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस भी भेजे हैं। तो हमारे रेडियो श्रोताओं के लिए एक बार फिर आज का ये टेक्स्ट या इबारत कह लें पढ़ देते हैं। राजस्थान की वो मखमली रात, रेत में पानी सी लहर, चांदनी ने चंदा से कहा, केसरिया बालम थाने नैना में रमा लूं, चल मेला देखूंगी, सोना चांदी मीनाकारी के जेवर सब खरीदूं, पहनी माथे की रखड़ी सात रंग की चुनर, तो देख बींद ने कहा खूब लगती हो, लगे होरी आई है, जहां जहां मैं जाती हूँ गुड़िया गुलाबी पत्थरों महलों की अटारी ऊंट की सवारी सब जैसे नैनों में बादल, सच इनके बिना जी न लगे, पीतल की गगरी नारी हाथ न लगाना पानी का मोल जानती भी है। बींद बोला अरे बींदनी अरे दिले नादान, ये आरजुओं का शहर है, जो आएगा वही समझ पाएगा। तो श्रोताओं ये थी आज की इबारत या कह लें टेक्स्ट। रेगिस्तान की बेशुमार खूबसूरत

मिट्टी को अपनी आगोश में समेटे प्रांत राजस्थान ने श्रोताओं जहां ऐतिहासिक धरोहरों को समेटा है, वहीं यहां लगते मेले, यहां की लोक संस्कृति, कला और सुंदर वन्य जीव राजस्थान के कुंदन हार की तरह हैं। तो आज राजस्थान की बातें, रेत की बातें। जी हाँ, जब हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो नमक का रेगिस्तान भी है। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

रेशमा और शेरा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, और ये किन अभिनेत्री पर फिल्माया गया ये आपको बताना है श्रोताओं। और बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए हैं आज की जो ये इबारत है उसके विषय में। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि राजस्थान की मिट्टी की सौंधी महक लोक संस्कृति की रंगत और प्रेम की मधुर चुवन को बेहद खूबसूरती से समेटे हुए है चांदनी, केसरिया बालम, रंग बिरंगी चुनर, मीनाकारी के गहने और रेगिस्तान की मखमली रात मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं मानो लोक रंग स्वयं शब्दों में उतर आया हो। बींद और बींदनी का सहज संवाद केवल प्रेम नहीं बल्कि उस जीवन दर्शन को भी व्यक्त करता है जहां पानी की हर बूंद, हर परंपरा और हर भावना अनमोल है। ये इबारत राजस्थान की गलियों, महलों और रेत के धोरों के बीच ले जाकर प्रेम, संस्कृति और स्मृतियों के रंगों से सराबोर कर देती है। जी हाँ, और इनके बारे में आपको लिखना भी है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश हमें रेगिस्तानी रेत के टीलों की ओर ले जाएगा और उसके मखमली स्पर्श को अनुभूत कराएगा। रेगिस्तान का सर्द आसमान, मखमली रेत और उस पर चांदनी की चादर ओढ़े थिरकते पानी की लहरें, ये किसी सम्मोहन से कम नहीं। चांदी से चमकती रेत के टीलों के बीच बनी पानी की लहरें जब उठती हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद कोई मखमली कविता लिखती हो। रेगिस्तान की रातें जितनी शांत होती हैं उतनी ही मखमली। रात के सन्नाटे में जब पूर्ण चंद्रमा की किरणें पानी की सतह पर पड़ती हैं तो पानी की हर एक लहर मोती से चमकने लगती है। ऐसा लगता है मानो रेतीले समंदर में सितारों की बारात उतर आई हो। क्या ही बात है श्रोताओं। जी हाँ, बिल्कुल सही कि रेत की जो सुंदरता है और रात जो राजस्थान की होती है, रेत की रातें जो होती हैं वो बड़ी खूबसूरत होती हैं। इस बारे में हमारे एक श्रोता भी लिखते हैं, और अगर ऐसा कोई अनुभव आपके पास है, आप राजस्थान गए हैं तो वहाँ के बारे में हमें ज़रूर लिख सकते हैं। और रात के ही बारे में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, रेगिस्तान में मखमली रात एक रहस्यमय मौन, साइलेंस ऑफ डिवाइन के रूप में है जहां सांसारिक कोलाहल शांत हो जाता है, जो प्रकृति के शांत, कोमल और निश्चल रूप को दर्शाता है। रेत पर पानी की लहर, हवा द्वारा बनाई गई लहरें, ईश्वर की इच्छा डिवाइन विंड के बहाव का एक रूप है जो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य से बहते रहने की प्रेरणा देता है। ये दोनों वाक्यांश एक संकेत देते हुए प्रतीत होते हैं कि मनुष्य का मन रेगिस्तान की मखमली रात की तरह शांत होना चाहिए और रेत पर पानी की लहरों को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। रेत कठोरता और लहर तरलता का मिलना जुलना द्वैत को मिटाकर अद्वैत की ओर ले जाता है।

बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिखा है। डोर फिल्म का ये गीत था करसन सरगतिया और मीर अली हुसैन की ये रचना थी, सलीम सुलेमान का संगीत था। श्रोताओं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज के गीतों को पहचानना है, शब्दों को पहचानना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में हमें राजस्थान के रेगिस्तान की सैर आज की इबारत करा रही है, तो गीत भी उसी के अनुसार होंगे। चांदनी ने चंदा से कहा, तू चंदा में चांदनी की सरिया बालम पिया तो से नैना लागे, बहुत सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं पीतल की मुरी गागरी, और भी कुछ गीत इन्होंने सुझाए हैं, बताए हैं, पहचाने हैं। एक और श्रोता ने दिले नादा ये गीत पहचाना है। एक और श्रोता है सोना ले जा रे चांदी ले जा रे, ये गीत सुरीले सफर में हो सकता है शामिल। एक श्रोता और लिखते हैं कि राजस्थान की खूबसूरती तब देखने को मिली जब मैं अपने परिवार के साथ जैसलमेर घूमने गया। सचमुच राजस्थान की खूबसूरती अपनी समृद्ध संस्कृति, रेगिस्तान और शाही आभूषण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान के थार जैसलमेर मखमली रेत का अनुभव होता है। चांदनी रात में जब पूर्णिमा की किरणें इन रेत के टीलों पर पड़ती हैं तो ये भी सोने चांदी की तरह चमक उठती हैं। केसरिया रंग राजस्थान के शौर्य, त्याग और संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ के पारंपरिक परिधानों जैसे साफा, लहरिया और बंधेज में इस रंग का प्रयोग होता है। राजस्थानी आभूषण अपनी बारीकी, नक्काशी और भारी डिजाइनों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की महिलाएं सिर से लेकर पैर तक चांदी और सोने के गहने पहनती हैं, जिनमें रखड़ी, माथा, गला, बाजूबंद और भारी पायल प्रमुख हैं। ऐसे चांदनी रातों और मखमली रेतों पर ऊँटों की सवारी करने का अलग कौतूहल है। तो क्या आपने ऊँटों की सवारी की है, तो हमें जरूर लिख भेजिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आइए चलिए मित्रों, चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में, और आज दो बूंद पानी और रेशमा और शेरा के गीत की धूम होगी। तो जी हाँ, देखते हैं कि आज कौन कौन से गीत होते हैं। वैसे गीत की जहाँ तक बात होती है तो कविताएं भी याद आती हैं। चेतक कविता क्या आपको याद है और ये किस पर लिखी गई थी, तो आप जरूर बताएं। और कौन कौन से किले आपने देखे हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसे कहते हैं, ये भी आपको बताना है।

आप सुन रहे थे वीर दुर्गादास फिल्म का ये गीत। आपको बताना है कि ये किस की रचना थी। वैसे ये तर्ज थी SN त्रिपाठी की, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थीं। और आपको राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य भी बताना है कि कौन सा है श्रोताओं, और क्या आपने दाल बाटी चूरमा और घेवर का स्वाद चखा है, तो ये भी आप बता सकते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो राजस्थानी रंग छा जाएगा। ऐतिहासिक किलों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा किले इस राज्य में मिलेंगे। शौर्य पराक्रम का जीता जागता उदाहरण है राजस्थान। ये राज्य तभी तो इसे कभी भी जीता नहीं जा सका, या फिर इस पे अलग तरीके के किले नहीं बनवाए जा सके। वैसे बहुत सारे किले हैं वैसे यहाँ पर श्रोताओं, और तमाम बहुत कुछ है इबारत पढ़ने से पता चलता है। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर की इबारत में मेरे रंगीलो राजस्थान की महिमा का खूब बखान किया गया है। तो आप सब पधारो मारे धोरा रोर देश राजस्थान में। राजस्थान की संस्कृति, रहन सहन, परिधान, खान पान और वहाँ की भाषा बहुत मीठी है। व्यंजन में चूरमा बाटी, गत्ते की सब्जी और कैर सेंगरी की भाजी का क्या कहना। मारो राजस्थान सबसे निरालो, जयपुर की चुनरी का क्या कहना, ऐसा है मारा राजस्थान। धोरा की धरती, अब तो प्रकृति भी यहाँ खूब मेघ बरसा रही है। और गीत को भी इन्होंने चुना है, तू चंदा मैं चांदनी पीतल की गागरी। एक और श्रोता लिखते हैं, कहते हैं जीवन में एक बार जरूर कश्मीर जाना चाहिए। बात तो ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में एक बार राजस्थान भी जाना चाहिए। मैंने भी सपरिवार एक बार राजस्थान के दर्शन किए हैं, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर।

खास तौर पर मुझे राजस्थान की रेत के दर्शन करने थे और कई वर्षों की इच्छा पूर्ति हुई। जैसलमेर में समुद्र में जहाज पर चलते समय जिस तरह चारों ओर पानी ही पानी दिखता है, वैसे ही यहाँ चारों ओर सिर्फ रेत दिखती है। एक नया अनुभव प्राप्त होता है, रेत पर जीप से घूमा जाता है, घूमते हुए इक्का दुक्का घर भी दिखते हैं। मैंने जीप रुकवाकर एक घर के अंदर जाकर उन लोगों के रहन सहन, भोजन इत्यादि के बारे में जाना। जी हाँ, और इन्होंने आगे भी बहुत लंबी चौड़ी इबारत लिखी है। तो एक और श्रोता लिखते हैं कि गीत संगीत सुनना, संगीत को महसूस करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। कभी कभी एक ही धुन किसी के लिए सिर्फ संगीत होती है और किसी दूसरे के लिए एक याद या भावना या एक कहानी की तरह होती है। आपको कलाकार पहचानने हैं श्रोताओं, और फिल्म

संध्या और प्रशांत पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे, फिल्म थी सेहरा। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल थे। और इसके पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था वीर दुर्गादास का, आपसे गीतकार पूछा था, जी हाँ आपने ठीक लिखा है, भरत व्यास का लिखा नगमा था, एस एन त्रिपाठी की तर्ज थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं एक महीना, श्रोता लिखती हैं कि एक महीना जोधपुर में मैं रही थी, तब जैसलमेर में घूमी थी। वहाँ का रहन सहन, खान पान, वहाँ की रंग बिरंगे बाजार ने बहुत मनमोहा था। बहुत तीखा खान पान है वहाँ के पकवान, घेवर, मावा, कचौड़ी, मिर्ची पकौड़ा, गट्टे की भाजी का मजा लिया था। जी हाँ, आपने रंग बिरंगे बाजार की बात की है श्रोताओं, तो राजस्थान में आप क्या बता सकते हैं मीना बाजार कहाँ लगता है, तो आप ज़रूर बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं, हम जब छोटे थे सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तब राजस्थान गए थे मामा जी की बारात में। वहाँ का तापमान, पानी का स्वाद, तीखे भोजन की विविधताएं, अनोखी वेशभूषा, रेगिस्तान की गर्म रेत और कुछ विशेष स्थानों की याद अब तक मन मस्तिष्क में अंकित है, जिसमें मुख्यतः चौमुंडा देवी मंदिर, पुष्कर नाथ, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर, जहाँ यहाँ कौन सा मेला लगता है ये अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताइए, क्योंकि आपने इस मंदिर की बात की है। मंदिर के दर्शन भी किए और देवी के दर्शन किए और चमकीले पत्थर अब तक सहेज कर रखे हैं, जी हाँ आपने लाए होंगे। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं, घूमर कलबीलिया नृत्य, भवाई नृत्य राजस्थान के लोकप्रिय नृत्य, और दाल बाटी चूरमा, के सांगरी की सब्जी, गट्टे की सब्जी और भी बहुत से लोकप्रिय व्यंजन हैं यहाँ के। जी हाँ, तो क्या आप श्रोताओं राजस्थान का कोई सुंदर सा पंछी बता सकते हैं? एक

और श्रोता लिखती हैं कि रेगिस्तान में मीलों तक फैले रेत के टीले जिसे धूर कहा जाता है के साथ साथ चट्टानी पथरीले मैदान भी शामिल हैं। थार में कई खारे पानी की झील भी है। सब आप ही बता दे रहे हैं श्रोताओं, तो फिर बताइए खारे पानी की कौन सी मशहूर झील है ये भी आप बता दीजिए, जिसमें जी हाँ इन्होंने लिखा है लेकिन मैं ये आगे नहीं पढ़ूंगी। एक और श्रोता लिखती है कि राजस्थान का सबसे प्रमुख और राज्य नृत्य घूमर है, इसे नृत्य का सिरमौर कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में कई अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जैसे कलबेलिया, तहताली, भवाई और गैर। राजस्थान का आधिकारिक राज्य नृत्य घूमर है, इसे राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर और राजस्थानी संस्कृति की आत्मा कहा जाता है। हालांकि राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति विविधता के लिए जाना जाता है, इसीलिए यहाँ कई अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य भी प्रचलित हैं।

गीत में श्रोताओं एक दुल्हनिया है जिनके सर पे घूंघट है, आप क्या उन्हें पहचानते हैं? इस कलाकार का नाम आपको बताना है।

किशोर कुमार की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म राजपूत से। राजेश खन्ना और जो दुल्हन थी वो नजर आती हैं हेमा मालिनी।

श्रोताओं, और इसका जवाब भी हमारे श्रोताओं ने खूब दिया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ये जून का महीना गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना, ऐसे में विविध भारती के सुरीले सफर जैसे प्रोग्राम मन को तसल्ली देता है। आज इबारत पढ़ते हुए हमारे राजस्थान के टूर की याद आई, रेगिस्तान राजस्थान का नाम सुनते ही गर्मी महसूस हुई, लेकिन हम दिसंबर महीने में गए थे इसलिए ठंडी उतनी ही थी जितनी गर्मी के दिनों में गर्म हवा होती है। पीतल की मुरी गागरी और मंगवा दे, और पीतल की मेरी मंगवा दे कहकर हमने वहाँ के लोकल ड्रेस में फ़ोटो खिंचवाए। जहाँ लोकल ड्रेस जहाँ की भी हम घूमने जाते हैं वहाँ की तो होती है, तो इसकी अगर कोई यादें आपके पास हों तो आप हमसे बांट सकते हैं। वैसे हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि चेतक कविता क्या आपने पढ़ी है, तो इस बारे में हमें ज़रूर लिखें और चेतक कौन था। एक और श्रोता लिखते हैं, बींद इबारत में एक शब्द है, बींद मतलब राजस्थानी में दूल्हा, जी हाँ, और बींदनी बोलते हैं दुल्हन को। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर में राजस्थानी छटा के बिखेरेंगी रंग, यहाँ की संस्कृति पहनावा खान पान बहुत ही शानदार है, महिलाएं आज भी हाथों में सफेद चूड़ियां पहनती हैं जो हड़प्पा सभ्यता से मिल खाती हैं, जब खुदाई हुई तो कई साक्ष्य मिले जो अब भी राजस्थान में मौजूद हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है राजस्थान की संस्कृति।

आप सुन रहे थे ये गीत मेरा गांव मेरा देश से, जहां छोटी छोटी छतरियां दिखाई गई हैं श्रोता, और आशा पारेख होती हैं, धर्मेंद्र होते हैं, लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ी एक छतरी है जो कहां स्थित है ये आपको बताना है। कुछ हमने सवाल आपसे पूछे थे सोने की मीनाकारी के और कुंदन या और भी जेवरों के, तो खास अगर बात की जाए सोने की मीनाकारी और कुंदन के जड़ाऊ जेवरों की, तो बीकानेर बड़ा ही प्रसिद्ध है यहाँ का और इन्हीं चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे लाख की चूड़ियों का भी कारोबार बहुत बड़ा होता है राजस्थान में, तो क्या इस शहर में आपने कुछ खरीदारी की है? ये लाख की चूड़ियाँ कहाँ मिलती हैं राजस्थान में, ये आपको बताना है। और झीलों की नगरी के बारे में हमने आपसे पूछा था, तो राजस्थान में उदयपुर कहा जाता है, लेक सिटी पैलेस, ऐतिहासिक इमारतें, जग मंदिर और तमाम चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। और छतरी के बारे में आपको बताना है, और कठपुतली जो होती है यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध होती है, तो कठपुतली की जब हम बात करते हैं तो सबसे प्रसिद्ध जो भारत की कठपुतलियों के नाम हैं वो आपको बताने हैं। और चेतक के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि क्षमा चाहूंगी, चेतक की वीरता कविता श्याम नारायण पांडे की है, मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान लिखा था, कोई बात नहीं, लेकिन चेतक के बारे में तो सभी जानते हैं और हमने भी सबने कविता पढ़ी है। चेतक महाराणा प्रताप के जो घोड़े थे, इस बारे में लिखा है हमारे एक श्रोता ने, और हल्दी घाटी का युद्ध तो सभी को याद होगा, सबने पढ़ा होगा इस बारे में, तो चेतक की वीरता का क्या कहना। एक श्रोता लिखते हैं कि हमने चेतक कविता पढ़ी है, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। और एक और श्रोता ने लिखा है कि महाराणा प्रताप सिंह जी का घोड़ा जिसका नाम चेतक है, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। इसके आगे इन्होंने नहीं लिखा, तो रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, इस तरह की ये कविता थी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। एक और श्रोता लिखती हैं कि सूरत मेरे फ्लैट के सामने तपती नदी बहती है, सदियों में खास करके वहां साइबेरियन पक्षी आते हैं, चार महीना बसेरा करते हैं, हमें ये नजारा देखने का मौका हर रोज मिलता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि राजस्थान का रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान बाड़मेर और जैसलमेर के बीच स्थित है, जो दुर्लभ जीवों जैसे चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी और गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर है जैसलमेर के सैम और खुरी के टीले डेरा डालने और ऊंट सफारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सफारी की कुछ यादें हो तो आप जरूर लिखिए हमें श्रोताओं। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक राणा प्रताप के घोड़े का नाम था। ये कलाकार आपको पहचानने हैं, और क्या ये इस गीत की शूटिंग के बारे में आप कुछ बता सकते हैं?

हेमा मालिनी और फिरोज खान पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे धर्मात्मा फिल्म से। वैसे इस गीत की शूटिंग के बारे में ऐसा बताया जाता है कि अफगानिस्तान के रेतीले इलाकों में शूट हुई ये पहली फिल्म मानी जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि जोधपुर कभी जाएं तो बिना रस के गुलाब जामुन जरूर खाएं, तो ये तो नई बात पता चली है। और पीतल की मोरी गागरी इस गीत के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर राजस्थान में हम जो है वो घूमने जा रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने कुछ फादर्स डे के बारे में लिखा है। जी हाँ, फादर्स डे की आप सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज फादर्स डे के बारे में भी लिखा है। एक और श्रोता लिखती है, चेतक कविता स्कूल टाइम में पढ़ी है, चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था, बहुत ही साहसी और फुर्तीला। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी और अगर बोलना शुरू करें शायद अभी तो आधी ही याद होगी इन्हें। और एक और श्रोता लिखते हैं कि रेगिस्तान की मखमली रात में चांदनी जब रेत पर उतरती है तो केसरिया रंग में रंगा राजस्थान अपनी पूरी खूबसूरती के साथ सामने आ जाता है। और मेले की रौनक, चुनर के रंग, महल, अटारियां सबके बारे में इन्होंने लिखा है। और हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि मीना बाजार कहाँ लगता है राजस्थान में। जी हाँ, जयपुर में लगता है। और दो कठपुतलियों के बारे में हमने आपसे पूछा था जो राजस्थान की तो नहीं मानी जाती हैं लेकिन राजस्थान कठपुतलियों के लिए बहुत ही मशहूर है। और इस रिवाज को, इस परंपरा को हम सबको बढ़ाए रखना है, बनाए रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भारतीय कलाकारों की जो कलाकारी है बड़ी ही कम अब देखने में आती है। और कठपुतलियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। वैसे जयपुर में लगता है मीना बाजार।

कैफी आजमी का लिखा यह गीत आप सुन रहे थे परवीन सुल्ताना मैन पुरुषोत्तम की आवाजों में दो बूंद पानी फिल्म से, जो सिमी ग्रेवाल और सिखियों पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर कई ऐतिहासिक छतरियां, स्मारकी गुंबद मौजूद हैं। हालांकि राजस्थान की कला संस्कृति में शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी सीकर जिले रामगढ़ में है माना जाता है। इसे सेठ रामगोपाल पोद्दार की छतरी के नाम से जाना जाता है। पंचकुला की छतरियां जो हैं वो बड़ी ही प्रसिद्ध हैं। श्रोताओं, आप इसके बारे में भी जरूर देखिए, क्योंकि बहुत बड़ी छतरी है और राजस्थान की सबसे बड़ी छतरियों में मानी जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक कविता मैंने पढ़ी है, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, बहुत शूरवीर बहादुर योद्धा थे वो। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, हल्दीघाटी युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप युद्ध में थे तो चेतक खुद गंभीर रूप से घायल था, तब उसने अपने स्वामी की जान बचाने के लिए बहुत गहरी खाई में छलांग लगाई थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि इन्होंने लिखा है पुष्कर मेले के बारे में। जी हाँ, इसके बारे में हमने आपसे पूछा भी था। पुष्कर का मेला लगता है और ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ, और ये मेला बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और जहाँ तक नमक के रेगिस्तान की बात हमने आपसे पूछी थी, कच्छ की रण जो गुजरात की तरफ है, वो नमक का रेगिस्तान बड़ा ही सुंदर है। खासकर अगर इस जगह को आप चांदनी रात में देखेंगे तो आपको बड़ा ही अलग अनुभव होगा। ग्रेट इंडियन डेजर्ट हमने आपसे पूछा था। जी हाँ, थार का रेगिस्तान जो है राजस्थान से शुरू होता है और बहुत गुजरात, पंजाब और आगे भी फैला हुआ है, तो ये बड़ी ही सुंदर बातें हैं। और गुलाबो और शिताबो ये दो कठपुतलियां हैं, आप इनके बारे में जानते हैं तो हमें लिखें कहां की ये कठपुतलियां हैं।

ताजमहल फिल्म का ये गीत आपने सुना, मधुमती और हेलन का नृत्य बड़ा ही खूबसूरत इस गीत में नजर आता है श्रोताओं। और माउंट आबू जो राजस्थान का एक हिल स्टेशन है, यहाँ एक बड़ा ही सुंदर मंदिर है, आप जानते ही होंगे दिलवाड़ा टेंपल। क्या आपने ये टेंपल मंदिर देखा है तो आप यहाँ की कलाकारी के बारे में हमें बता सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जो है वो तो कलाकारियों का शहर या प्रांत ही माना जाता है। और बहुत सारे श्रोताओं ने सांभर झील के बारे में लिखा है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जो मुख्य रूप से जयपुर और नागौर जिले की सीमा अजमेर के निकट पर स्थित है। और भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने यहाँ के सुंदर पंछियों के बारे में लिखा हुआ है श्रोताओं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में मीना बाजार मुख्य रूप से जयपुर में आमेर के किले के बाहर और वर्ल्ड ट्रेड पार्क जैसे बड़े मॉल्स में स्थायी बाजार के रूप में मौजूद है। इसके अलावा राज्य भर में लगने वाले त्योहारों मेलों के दौरान समय समय पर विशेष अस्थायी मीना बाजार भी लगाए जाते हैं। यहाँ एक और इमारत है श्रोताओं, इस इमारत के नाम पर विविध भारती का एक कार्यक्रम भी है, क्या आप बता सकते हैं?

रज़िया सुल्तान फिल्म का गीत आपने सुना, जानिसार अख्तर का लिखा खयाम की तर्ज थी। इस गीत की डिटेल आपने बिल्कुल ठीक लिखी है श्रोताओं। और जिस इमारत की बात हम कर रहे थे, इमारत है हवा महल, जिस हमारे विविध भारती का एक कार्यक्रम भी आता है और आपसे हम

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। योग दिवस का मुख्य आयोजन आज सुबह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वयं तारासन, अर्ध चक्रासन, भद्रासन, त्रिकोणासन सहित कई योग मुद्राओं का अभ्यास किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि योग आज दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है। प्रधानमंत्री ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य योग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित योग कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने लोगों से योग को अपनी जीवन शैली में शामिल करने की अपील की है। राष्ट्रपति ने कहा कि योग बढ़ती आयु में भी व्यक्ति के सक्रिय और आत्मनिर्भर बने रहने में सहायक होता है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में विश्व कल्याण के एक सशक्त माध्यम के रूप में योग पद्धति की पहचान और भी मजबूत हुई है। इधर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने लोकभवन में आयोजित योग शिविर में भाग लिया। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि योग शारीरिक स्फूर्ति, मानसिक संतुलन तथा स्वस्थ एवं गरिमापूर्ण जीवन का आधार बन सकता है। इधर राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न स्थानों पर योग दिवस के अवसर पर योग शिविर और योगाभ्यास का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित शिविर में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और रामनाथ ठाकुर, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने योगाभ्यास किया। वहीं विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से भी योग शिविर कार्यक्रम आयोजित किए गए। पटना उच्च न्यायालय में भी इस अवसर पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न शिक्षण संस्थानों में भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए आज देश भर में नीट यूजी पुनर्परीक्षा का आयोजन कर रहा है। ये परीक्षा स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा शुरू हो चुकी है। प्रदेश के 34 जिलों में 331 केंद्रों पर नीट यूजी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। पटना में कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा भवन के आसपास विशेष यातायात

व्यवस्था लागू की गई है। साथ ही कई मार्गों पर आज परीक्षा की समाप्ति तक वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू रहेगा। इधर परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग की ओर से विशेष बसों का परिचालन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों के लिए इन बसों में यात्रा निःशुल्क है। साथ ही रेलवे की ओर से 7 विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठक आज पटना स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की जा रही है। बैठक में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज सुबह सबसे पहले राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, इसके बाद राज्य परिषद की बैठक आयोजित की गई। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपराह्न 3:30 बजे से राष्ट्रीय परिषद की बैठक का दूसरा सत्र आयोजित होगा। बैठक में पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होने की संभावना है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। पूरे मुल्क में आज 12वां आलमी योम योगा मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है बढ़ती उम्र के असर को रोकने के लिए योगा। योम योगा का अहम इनाकाद आज सुबह मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रोग्राम में योग अभ्यास की क़यादत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने खुद तारासन, अर्ध चक्रासन, भद्रासन, त्रिकोणासन समेत कई योग हालतों का मश्क किया। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने मौजूद आवाम से खिताब करते हुए कहा कि योगा आज दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव त्यौहार बन गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने योगा को जिस्मानी और जहनी सुकून हासिल करने का बेहतरीन जरिया बताया। उन्होंने कहा कि हमारा हदफ योगा के जरिए जिस्म को सेहतमंद, तवानाई और मुतहरिक बनाए रखना है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में मुनक़दा योगा प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने लोगों से योगा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की अपील की। सदर जमहूरिया ने कहा कि बढ़ती हुई उम्र में भी इंसान के मुतहरिक और ख़ुद इन्हिसार बने रहने में मुआविन होता है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 12 सालों में आलमी फलाह के एक मुस्तहकम ज़राए की शक्ल में योगा सिस्टम की शनाख्त और भी मुस्तहकम हुई है। इधर गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन ने लोक भवन में मुनक़दा योगा कैंप में शिरकत की। गवर्नर ने रियासत के बाशिंदों को बैनुल अक़वामी योमी योगा की नेक ख्वाहिशात पेश की। उन्होंने कहा कि योगा जिस्मानी चुस्ती, जहनी तवाज़ुन और सेहतमंद और पुरवक़ार ज़िंदगी की बुनियाद बन सकता है। इधर राजधानी पटना समेत रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर योम योगा के मौके पर योगा कैंप और योगा एक्सरसाइज का इनाकाद किया गया। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मुनक़दा कैंप में शिरकत की। मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह और रामनाथ ठाकुर, नायब वज़ीर आला विजय कुमार चौधरी, वजीर सेहत निशांत कुमार समेत कसीर तादाद में मौजूद लोगों ने योगा किया। वहीं मुख्तलिफ समाजी इदारों की जानिब से भी योगा कैंप का इनाकाद किया गया। पटना हाई कोर्ट में भी इस मौके पर मुश्तरका योगा एक्सरसाइज प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी योगा प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA आज पूरे मुल्क में नीट UG री एग्ज़ाम का इनाकाद कर रहा है। ये इम्तहान ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिला के लिए मुनाकिद किया जा रहा है। ये इम्तहान भारत के 551 और बैरून मुल्क के 14 शहरों में मुनाकिद किया जा रहा है। इम्तहान में 22,79,000 से ज़ायद उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ताज़ा इत्तला के मुताबिक सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान सभी मराकज़ पर पुरअमन तरीके से इम्तहान शुरू हो चुका है। रियासत के 34 अजला में 331 मराकज़ पर नीट UG इम्तहान का इनाकाद किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने नकल से पाक इम्तहान को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए हैं। पटना में कुम्हरार वाक़े बापू परीक्षा भवन के आसपास खसूसी ट्रैफिक इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही कई रास्तों पर इम्तहान के खात्मे तक 1-way ट्रैफिक नाफिज रहेगा। इधर उम्मीदवारों की सहूलत के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से खसूसी बसें

0: चलाई जा रही हैं, साथ ही रेलवे की जानिब से 7 खसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जनता दल यूनाइटेड की कौमी कौंसिल और रियासती कौंसिल का इजलास आज पटना में पार्टी दफ्तर में मुनक्किद किया जा रहा है। इजलास में कौमी और रियासती सतह के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किए जाने की उम्मीद है। हमारे नामानिगार ने बताया कि आज सुबह से सबसे कबल कौमी कौंसिल का इजलास हुआ, इसके बाद रियासती कौंसिल का इजलास मुनक्किद किया गया। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे से कौमी कौंसिल का दूसरा सेशन मुनक्किद होगा। इजलास में पार्टी सदर और साबिक वज़ीर आला नीतीश कुमार के शामिल होने का इम्कान है। पार्टी के कौमी कारगुजार सदर संजय कुमार झा, नायब वज़ीर आला विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, पार्टी के रियासती सदर उमेश कुशवाहा समेत कई वज़रा इराकीन असम्बली और कानून साज कौंसिल के इराकीन इजलास में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एवं कंप्यूटर असिस्टेंट की कुल 5,543 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर साइंस में डिग्री डिप्लोमा हो या ओ लेवल सी लेवल का प्रमाण पत्र हो। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.allahabadhighcourt.in से प्राप्त किया जा सकता है।

कर्मचारी चयन आयोग SSC CGL 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस के कुल 4500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और 100 उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम

आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है, बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
3: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने

0: जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। आकाशवाणी समाचार मुंबई।
0: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS धुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।

0: और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एम बी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: एसएच बिहारी के बोलों को सुरों में ढला उपेन अय्यर ने आशा भोसले का गाया सावन की घटा फिल्म का गीत आपने सुना। इस गीत से पहले श्रोताओं हमने आपको सुनवाया सूरज फिल्म का नगमा, हसरत जयपुरी का लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज थी, मोहम्मद रफी की आवाज थी।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम, अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
5: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
4: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमें।

पराया धन फिल्म में आप सुन रहे थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी और गीतकार आनंद बख्शी।

0: तीन देवियां फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में, एस डी बर्मन की तर्ज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और इस गीत के पहले श्रोताओं परख फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था, लता मंगेशकर की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल थे, सलिल चौधरी का संगीत था। सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी

0: लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01:30 हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं मन चाहे गीत कार्यक्रम में। कहीं धूप खिली है श्रोताओं, कहीं बादलों के डेरे हैं। दोपहर के इस समय कहीं आराम और गपशप, तो कहीं कुछ कामकाज की मसरूफियत। तो चलिए आपके बीच विविध भारती के गीतों का ये अफसाना जरा हम भी छेड़ देते हैं। देखिए मन चाहे गीत कार्यक्रम का ये गीत कहीं आपकी पसंद का गीत तो नहीं? सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

चोर मचाए शोर, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। और इस गीत की पसंद भेजी हमारे पास रायगढ़, खालापुर रायगढ़ से श्री प्रमोद पाटिल, श्रीमती ज्योति पाटिल, योगेश कुलकर्णी, शर्मिला महात्रे इसी गीत को सुनना चाहते थे, अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव, भीष्म दास मानिकपुरी, ये फरमाइश थी छत्तीसगढ़ से, और तिलहारा महाराष्ट्र से उर्वी बेन, नायाब बेन, प्रीति बेन, मनाली निधि सेजल की ये फरमाइश थी।

ये गीत आप सुन रहे थे आन मिलो सजना फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल थे। इस गीत की पसंद भेजी राजस्थान से पूजा खटक, विमला देवी, शंभू दयाल खटक ने, और उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर की ये फरमाइश थी।

खिलौना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। श्रोता, इस गीत की पसंद की कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव, मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी। इस गीत को सुनना चाह भी कनेर से कैलाश सोनी, गोविंदा सोनी, उत्तम सोनी और कोटा से शिखा, सीमा, प्रीति, सपना, संध्या मानस और शालू ठाकुर की फरमाइश थी।

तुझे पुकारे तो मैं लब खोलूं, क्या जीना और क्या मर जाना है।

0: हम साथी है ये वादा है।
1: अपना जो कुछ है सब आधा आधा है,
0: जो ये सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है तो। अरे रानी माँ से मुझको भी मम

धर्मवीर फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी मुकेश की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। श्रोताओं, इस गीत को पसंद किया भाटापारा से, छत्तीसगढ़ भाटापारा से गनूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी कुमार।

मनीष राम छत्तीसगढ़ से, रोशनलाल देवांगन भिलाई छत्तीसगढ़ से, रोशनलाल देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता देवांगन डिम्बल देवांगन और शेरकोट जिला बिजनौर से, मोहम्मद वकार नसीन परवीन रोजी बिट्टू साजदा हिना कौसल सितारा और इस गीत की फरमाइश की जालंधर से रमाकांत शर्मा मीनाक्षी शर्मा रवि शर्मा और अक्षय शर्मा ने। विविध भारती का ये कार्यक्रम है मन चाहेगी।

लता मंगेशकर का गाया फिल्म आंखें का गीत आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत है श्रोताओं ये, और इस गीत को पसंद किया इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धामतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम और सावित्री साहू।

इस गीत को सुनना चाहा शीशगढ़ बदेली से इलियास इदरीसी, नईम इदरीसी, नदीम इदरीसी ने, और इस गीत के लिए शहदुल शहल से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान की फरमाइश आई। और इसी गीत को सुनना चाहते थे बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज, विकास सक्सेना और चंचला कश्यप। मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम श्रोताओं अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को और भेजते रहिए पत्र मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवा रहे हैं नाटक मृत्युहीन प्राण का दूसरा और अंतिम भाग। आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का ये हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवादक हैं दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार।
2: जुडू।
3: यस सर।
2: बेंजामिन कुछ बता रहा है? कुछ मुंह खोला उसने?
3: नहीं सर, कुछ नहीं बोलता।
2: व्हाट, 48 घंटे हो गए और अभी तक मुंह से बोल नहीं फूटे? दरअसल बात यह है जुडू कि तुम्हारे शरीर में काले लोगों का खून भी तो कुछ कुछ मौजूद है, तभी उनके मामलों में रहम की मात्रा जरा कुछ बढ़ सी जाती है।
3: क्या क्या कह रहे हैं आप सर?
2: मैं ये कह रहा हूं कि जरा सख्ती के साथ दवा का डोज तो अपने आप मुंह से बोल फूट पड़ेंगे।
3: मिस्टर थॉमसन, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, पर क्या करूं, कमबख्त के मुंह से एक बात तक नहीं निकल रही। बात के बदले कस के सिर्फ खून निकल रहा है।
2: खून के साथ साथ बातें भी निकालनी होगी। इट्स मस्ट, कमिश्नर साहब का हुक्म है। चलो एक बार मैं खुद ही कोशिश कर देखता हूं।
3: यस सर।

0: हेलो मिस्टर मोलाइज, अपने बारे में नए सिरे से कुछ सोचा आपने?
1: अपने बारे में बाला, मुझे सोचने की क्या जरूरत है? इसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों ने खुद ही ले रखी है।
0: फिलिस सिलेपी का खून आपने नहीं किया?
1: नहीं।
0: तो फिर किसने, किन लोगों ने किया? इसे तो आप जरूर जानते होंगे।
1: नहीं जानता।
2: हमारे पास ऐसी खबर है कि उस निरीह भले आदमी फिलिप्स को जान से मार डालने के लिए आप लोगों की एक गुप्त मीटिंग हुई थी।
1: एक काले आदमी के लिए अचानक आप लोगों को इतना दर्द क्यों होने लगा है?
0: ये देश की कानून व्यवस्था का प्रश्न है।
1: कानून व्यवस्था या आप लोगों के प्यारे जासूस की मौत हो गई है, इसलिए बहुत तकलीफ हो रही है आपको मिस्टर थॉमसन।
0: जासूस समझकर उसे बुलेट से छलनी बना डाला। वाह, बहुत खूब।
1: बुलेट चलाना तो आप लोगों का खानदानी पेशा है, मेरा हाथ कलम से सिर्फ कविताएं लिखता है।
0: कविताएं लिखता है? क्यों? यू ब्लैकी रास्कल, उस साथ को हम जॉन्सबर्ग पेजरी लूटते वक्त इसी हाथ में राइफल थी ना? क्यों थी ना?
1: नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं थी। अगर अगर किसी दिन रही तो समझिएगा, उसे ऐसा करने के लिए आप लोगों ने ही मजबूर किया है।
0: हम लोगों ने?
1: हाँ, आप लोगों ने। आप लोग बहुसंख्यक काले लोगों के पैरों में बेड़ियां डालकर सारे देश को लूट रहे हैं। मार खाते खाते दीवारों से लग गई है पीठ हमारी, लेकिन लेकिन जिंदा रहने की खातिर अगर कोई अपनी आवाज उठाता है तो क्या ये अन्याय है?
2: 100% अन्याय है।
0: जुडो, इस तरह काम नहीं चलेगा, इसके लिए खास इंतजाम करने की जरूरत है। देखते हैं कैसे मुंह नहीं खुलता।
2: यस सर।
0: बोलिए, कुछ तो बोलिए मिस्टर मोलाइज, नहीं तो जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा। आग की तरह लाल दो सलाखें आपके बदन के कुछ खास हिस्सों पर तबाह कर रखी जाएंगी। कुचला जाएगा उन हिस्सों को सलाखों से। अब आप समझ ही रहे होंगे कि वो नजारा क्या होगा।
1: आप लोग

0: आप लोग खुद को शिष्ट समझते हैं, शिष्टाचार का दम भरते हैं, लेकिन लेकिन जी, जंगल के पशु भी शर्माते हैं आप लोगों के व्यवहार से।
1: सर, मैं रेडी हूं।
2: ठीक, देन स्टार्ट।
1: कहिए, फिलिप्स का खून किसने किया? बताइए, कब खून किया, कहां किया?
0: नहीं मालूम, नहीं मालूम,
1: नहीं मालूम,
0: नहीं मालूम,
3: नहीं मालूम, नहीं मालूम।
2: बोलिए बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए ना, ये तो बेहोश हो गया। लगता है सहन शक्ति बहुत ही कम है। होश मिलाओ इसे, बाद में फिर कोशिश करेंगे।
1: ओके सर।

0: ना ना जिनी, तुम मुझे खाने के लिए जिद ना करो बेटी। कोई भी खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा।
1: जरा सा दूध तो पी लो मौसी।
0: ना ना, इस वक्त कुछ नहीं लूंगी बेटी।
1: तुम बैठो, मैं गर्म करके लाती हूँ।
0: जेल में बेंच को शायद खाने को भी नहीं देते होंगे। अब फिर कौन आ गया? क्या बात है, आप लोग फिर आ गए?
2: सॉरी मिसेस मोरेस, आपको थोड़ी सी तकलीफ देने आ गए।
0: आखिर आप लोग चाहते क्या हैं?
2: बस दो एक बातें पूछना चाहते हैं आपसे।
0: उसके पहले मेहरबानी करके बताएंगे कि किस जुर्म में मेरे बच्चे को जेल के सीखचों के अंदर बंद किया गया है?
2: फिलिप सिलेपी की हत्या के जुर्म में।
0: झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मेरे बच्चे ने हत्या नहीं की है। क्यों झूठ मूठ मेरे बेटे को खून के इल्जाम में फंसा रहे हो?
2: हम लोग तो कानून के गुलाम हैं मिसेस मोलेस।
0: आप लोगों के कानून तो हमारे जैसे काले लोगों की गर्दन दबोचने के लिए हैं।
2: ओह नो नो नो नो, ये आप लोगों की गलत धारणा है।
0: अच्छा साहब बहादुर, क्या आप लोग कोई ऐसी दवा नहीं दे सकते जिसे बदन पर लगाने से हमारे शरीर के रंग भी सफेद हो जाएं?
2: सुन रहे हो जुडू, मिसेस मोलेस क्या फरमा रही हैं?
3: हाँ सर, सुन रहा हूँ।
4: अच्छा मान लीजिए, अगर आप लोग सफेद चमड़ी के होते तो क्या करते मिसेस मोलेस?
0: तो हमारे लिए कांटे वाले तारों से घिरा बांडुस्तान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।
3: सर लगता है बेंजामिन ने अपनी माँ को भी तैयार कर पक्का कर दिया है।
2: अरे वो तो करेगा ही जुडू, नहीं तो खून खराबा करके आने के बाद हाथ धोने के लिए पानी कौन देगा?
0: आप लोगों को जो कुछ भी कहना है कह डालिए, और मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए, मुझे खुशी होगी।
2: ओह यस यस यस, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपका बेटा बेंजामिन किन लोगों के साथ मिलता जुलता था?
0: बहुत के साथ, उसके बहुत से दोस्त हैं।
2: हाँ, बहुत से दोस्तों को तो हम पहचानते हैं। खास दोस्तों में जैसे समझिए जेने रोयांगा, रॉबिन खाबड़कर, मिस्टर।
0: नहीं, ये सारे नाम मैंने पहले कभी नहीं सुने।
5: मौसी दूध ठंडा हो रहा है, ले आऊं?
0: नहीं, मैं ही आऊंगी थोड़ी देर बाद।
2: ये कौन बोले? किसी युवती की आवाज लगती है।
0: मेरे एक पड़ोसी दोस्त की लड़की है।
2: जरा उसे बुलाइए।
0: क्यों, उसकी क्या जरूरत है?
2: घर में आपके सिवा और तो किसी को देखा नहीं इसके पहले, इसीलिए अब जरा हमें ये भी देखने की जरूरत है कि इस घर में किस किस का आना जाना है।
5: ये लीजिए, मैं आ गई, देखिए।
2: क्या नाम है तुम्हारा?
5: जिनी पैराम्बा।
2: क्या करती हो?
5: कॉलेज में पढ़ती हूँ।
3: सर लगता है इसे कहीं देखा है।
5: कहीं सड़क बाजार या कॉलेज जाते समय देख लिया होगा।
3: ऐसे नहीं, कहीं और देखा है।
2: यस, याद आया, अभी कुछ दिनों पहले एक सुनसान पार्क में तुम्हारे साथ हमारी मतलब

0: हम दोनों के साथ तुम्हारी मुलाकात हुई थी ना?
1: हाँ वहाँ चुपके चुपके प्रेम करने या किसी से मिलने गई थी? क्यों, गई थी ना?
0: क्वाइट इंटरेस्टिंग अफेयर। अच्छा मिस पैराम्बा, तुम जरूर बेंजामिन को चाहती हो? अच्छा तो फिर उसकी कविताओं को भी जरूर चाहती होंगी?
2: जी हाँ चाहती हूँ, बहुत तेरे चाहते हैं।
0: पर क्या तुम ये जानती हो कि बेंजामिन जिस हाथ से कविताएं लिखता है उसी हाथ से आदमी का खून भी करता है?
2: जी नहीं, मुझे यकीन नहीं है इस बात पर।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे भी यकीन नहीं है, पर कुछ चारा भी तो नहीं है, इसीलिए मुझे जरूरत है तुम्हारी।
2: जी मेरी?
3: अब इसे बीच में क्यों घसीट रहे हैं अफसर साहब?
0: प्लीज मिसेस मुलायर। जिनी, तुम ये जरूर चाहोगे कि बेंजामिन बेगुनाह साबित होकर फिर तुम्हारे बीच वापस आ जाए?
2: आप कहना क्या चाहते हैं?
0: मैं ये कह रहा हूं, मतलब ये चाहता हूं सिर्फ थोड़ी सी मदद जो तुम्हारे बेंजामिन को तुम्हारे पास ही वापस ला देगी। आओ मेरे साथ आओ।
3: नहीं, वो क्यों जाएगी?
0: ओहो डरने की कोई बात नहीं है।
2: मैं कहां जाऊंगी?
1: मेरे साथ?
3: नहीं
1: सर, मैं ये कह रहा था।
0: ओ जिडू, फिर वही बात। आओ चलो जिनी, डरने की कोई बात नहीं है, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ बेंजामिन का रिश्ता किस ढंग का है। हाँ देखो ना, अब इस बात को उसकी माँ के सामने तो पूछा नहीं जा सकता ना।
3: नहीं वो नहीं जाएगी। जिनी तुम अंदर जाओ।
0: नहीं वो मेरे साथ ही जाएगी।
1: सर मैं कह रहा था कि
0: जिडू, समझती पकड़ के ले चलो इसे।
2: नहीं।
0: It's my order.
2: नहीं।

0: लगता है बाहर से मेरा तन, सुलग रहा अंदर से मेरा मन। हर अश्वेत माओं के घर घर में, धरती के कण कण में, अंबर में उमड़ पड़ा लाशों का एक जुलूस, काले ताबूतों का एक जुलूस, रंग भेद के कुत्सित लिए विचार मिले श्वेत गिद्धों को नए शिकार। माओ के कोमल अंशों को नोच, खून सनी है इनकी पैनी चोंच, इन सफेद गिद्धों के दल छाए मन की आग ज्वाला सी बन जाए, फैले चारों ओर आग की ज्वाल, अंगारे बन जाए जयमाल। लगातार 2 सालों से चल रहा है शारीरिक उत्पीड़न, और जारी है स्वीकारोक्ति वसूलने की असफल चेष्टाएं, लेकिन
1: क्या सोच रहे हैं मिस्टर मोलेस?
0: कौन? नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं।
1: जरूर कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं। हाँ,
0: ये भी क्या आप लोगों का ऑर्डर है? जो कुछ ना कुछ मुझे सोचना ही रहना होगा। नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं मैं। आप लोग जा सकते हैं।
1: किसी के बारे में सोचना क्या आपको अच्छा नहीं लगता मिस्टर मोलाइज? मान लीजिए चीनी के बारे में। कितने दिन हो गए चीनी से आपकी मुलाकात नहीं हुई?
0: चीनी?
1: जी हाँ।

0: जिनी, आपकी महबूबा,
1: जिसे लेकर ना जाने कितनी कविताएं आपकी कलम से अब तक निकल चुकी हैं।
2: तो अब आप लोग मेरे व्यक्तिगत जीवन की खोज लेने आए हैं। धन्यवाद
1: मिस्टर मोलाय। आज मैंने ये तय किया है कि आपको कोई जबरदस्त सरप्राइज दूं।
2: सरप्राइज मुझे?
1: हाँ। गार्ड, 4 नंबर सेल का दरवाजा खोल दो।

0: जिनी?
1: जिनी को यहां क्यों लाए हैं? क्यों लाए हैं जिनी को यहां?
2: तुम कैसे हो बेच?
1: जिनी, जिनी, मैं जिंदा हूं। जिनी, तुम कैसी हो? माँ कैसी है? अच्छे हैं ना सब?
2: हाँ, बेच, ये लोग मुझे पकड़ कर ले आए हैं।
1: इसे इसे यहां क्यों लाए हैं? कहिए कहिए, क्यों लाए हैं इसे यहां?
3: फिलिप सिलेपी का खून किसने किया?
1: नहीं मालूम।
3: आपने नहीं किया इसका मुझे यकीन है, लेकिन दल में कौन कौन थे ये तो आपको निश्चित रूप से मालूम है। बस उतना ही बता दीजिए।
2: बेंच, बेंच, मुझे नहीं मालूम ये लोग मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं। मुझे डर लग रहा है।
1: जी,
3: कल कोर्ट में फाइनल हियरिंग है, वहां कोर्ट के सामने कहने से भी चलेगा।
2: बेंच, ओ बेंच,
1: जी
2: बचाओ।
1: जी,
2: बेंच,
1: जी,
2: बेंच, मुझे तुम बचाओ।
1: मिस्टर थॉमसन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिनी क्या क्या कसूर है, उसे यहाँ क्यों लेकर आए, उसे क्यों लेकर आए, बताइए।
3: सिर्फ लेकर ही नहीं आए, अभी तो आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ होने वाला है। हाँ, बता डालिए, फिलिप्स की हत्या के समय वहां कौन कौन थे? कहिए, बोलिए।
1: मिस्टर थॉमसन, मेरे कमजोर पक्ष पर चोट कर आप लोग सोचते हैं कि मैं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप लोगों की जो मर्जी हो आप कर सकते हैं। मिस्टर थॉमसन, मिस्टर थॉमसन, जितना भी सताना हो मुझे सताइए, पर उसे छोड़ दीजिए।
3: सॉरी मिस्टर मोलेन, आपकी वजह से, आप ही की वजह से
1: मिस्टर थॉमसन,
3: आपकी फूल जैसी जिनी को कीड़ों ने काट खाया।
1: मिस्टर थॉमसन, मिस्टर थॉमसन, थॉमसन।

0: taking as well all other aspects into account, Benjamin Molloy has been proved guilty in the eye of law.
1: दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया सरकार द्वारा गठित सर्वोच्च अदालत ने अश्वेत तरुण कवि बेंजामिन मोलेस को जघन्य नरहत्या, राष्ट्रद्रोहिता एवं सरकार विरोधी षड्यंत्रों में लिप्त रहने के अपराध में प्राण दंड से दंडित किया है।

0: मिस्टर मोलेज, मुझे सख्त अफसोस है।
1: कौन? मिस्टर थॉमसन।
0: इस वक्त बीती बातें याद कर आपको पछतावा नहीं हो रहा मिस्टर मोलाइज?
1: नहीं, कोई पछतावा नहीं, वजह भी तो नहीं, बल्कि मुझे गर्व है।
0: अब भी वक्त है मिस्टर मोलाइज, अपनी राय बदलकर अगर आप सच्चाई बता दें तो।
1: धन्यवाद। आपको और कोई जरूरी बात न करनी हो तो आप जा सकते हैं।

0: दंडित कवि की मां ने प्रिटोरिया की बोखा सरकार से पुत्र की प्राण भिक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने उस आवेदन को ठुकरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत कवि बेंजामिन मोरेस को दी गई मौत की सजा को माफ कर देने के लिए विश्व के अनेक राष्ट्र नेताओं ने प्रिटोरिया सरकार से निवेदन किया है।
1: वो इंसान नहीं है जिनी, वो इंसान नहीं है। आवेदन निवेदन किसी का भी कोई मूल्य नहीं है उनके पास, कोई चीज उन्हें नहीं छूती।
2: ने बड़े झूठ को उन्होंने जबरदस्ती अपनी मनमानी जालसाजियों से सच साबित कर दिया। इस तरह का जुल्म नहीं चल सकता।
1: उनके लिए सच नाम की कोई चीज नहीं है बेटी, ना इंसाफी और झूठ। उनके कानून है, उनके औजार है।
2: ओ बेंच, तुम्हारी कविताएं कब सच होंगी बेंच?
1: कब कब?

मुझे गर्व है अपने ऊपर, मेरा जीवन गौरव मंडित, जितना जीवन मैंने भोगा मुझे गर्व है उस जीवन पर। मातृभूमि के मस्तक पर लो मैंने अपने क्रुद्ध रक्त से तिलक किया है, बंदी गृह की लौह सलाखा मेरे प्राणों को बंधन में रख सकने में कभी नहीं हो सकती सक्षम। निकल पड़ूंगा मुक्ति राह पर, मुझे मिला था मात्र एक जीवन जो मैंने सौंप दिया है स्वतंत्रता को।

18 अक्टूबर 1985 को सारे विश्व के जनमत को ठुकराकर जोहान्सबर्ग के केंद्रीय कारागार में स्वाधीनता संग्राम के सिपाही रंगभेद नीति का विरोध करने वाले कवि बेंजामिन मोलहेस के प्राण दंड के आदेश को क्रियान्वित किया गया है।

0: को सिर्फ एक बार देखने दो, सिर्फ एक बार देखने दो।
1: हमें अफसोस है मिसेस मुलायम, सब कुछ खत्म हो चुका है। बेंजामिन अब सिर्फ एक लाश पर है।
0: खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो फिर उसका निस्तेज ठंडा शरीर ही मुझे दे दो। मैं केवल एक बार देखूंगी उसे, सिर्फ एक बार देखूंगी।
1: सचमुच मैं बहुत दुखी, लाश देने का ऑर्डर नहीं
0: है। ऑर्डर नहीं है साहब, मैं उसकी माँ हूँ। माँ, वो मेरा खून है, उसे 28 सालों तक मैंने पाला पोसा है। मैं माँ होकर अपने मरे बेटे का मुंह तक नहीं देख सकती साहब।
1: Really? We are sorry.
0: बेंजी, अपनी कविता की कॉपियां भी सुन। ले जा बेंजी, ये सारी कॉपियां ले जा।
2: मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का। मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।

मृत्युहीन प्राण। अभी आप इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग सुन रहे थे। आलोक भट्टाचार्य के मूल बंगला नाटक का ये हिंदी अनुवाद था। हिंदी अनुवादक थे दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान, और उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं, जो एक और बहुत ही खास शख्सियत को याद करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं। कार्यक्रम का नाम ही उजाले उनकी यादों के है, तो आज का कार्यक्रम है उजाले सदाशिव अमरापुरकर की यादों के, और ये उजाले बांटने के लिए मौजूद हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। बहुत बहुत स्वागत रीमा जी।
2: धन्यवाद धन्यवाद।
1: पिताजी की यादों के उजाले बांटने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियोज में, विविध भारती के स्टूडियोज में आते हुए जो पहली फीलिंग है वो क्या है?
2: आकाशवाणी या विविध भारती के स्टूडियोज में मैं जब भी आती हूँ तो थोड़ा मैं अपने बचपन में चली जाती हूँ, बिकॉज हमारी पूरी फैमिली का आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती, इससे बहुत ही करीबी संबंध रहा है। तो मेरी माँ भी रेडियो आर्टिस्ट थी, अलग अलग ड्रामास, एड फिल्म्स में उन्होंने काम किया था ऑल इंडिया रेडियो के लिए। मैं खुद बचपन में मराठी दो शोज कर चुकी हूँ जिसमें मैं वॉइस आर्टिस्ट थी, और सबसे ज़रूरी बात कि 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है जो उन्होंने आकाशवाणी के साथ की है,
1: परभणी में।
2: तो वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था, और वहां पर वो लगभग 2 महीने टिके, तो ये टिके ही कहना सही होगा, बिकॉज उनकी वो पर्सनालिटी नहीं थी कि वो जॉब करे, क्योंकि शादी हो चुकी थी, 2 बच्चियां थी, तो इसलिए पिताजी को दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मैं कमा रहा हूँ, उन्होंने वो जॉब की थी।
1: ये सोचकर कितना मजेदार लगता है कि वो मराठी में बोलते होंगे आकाशवाणी का ये परभणी केंद्र है।
2: और उनकी आवाज तो वैसे भी उनकी स्ट्रेंथ थी, आज भी है, मतलब आज भी जब भी हम आवाज सुनते हैं तो फैमिली मेंबर्स की तो हमारी आंखें भर आती है। उस वक्त तो उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा थी उस आवाज की, तो उनके बहुत सारे फैंस हो गए थे, और फिर ऐसे हुआ कि एक पॉइंट पे मम्मी को ऐसे लगने लगा कि अरे अभी बहुत ही ज्यादा फैंस हो रहे हैं इनके, विशेषतः लड़कियां, तो ये अगर छोड़ रहे हैं जॉब तो ठीक ही बात है।
1: वाह वाह वाह। ये रेडियो में आना उनका कैसे हुआ था, इसकी कोई कहानी हो तो वो?
2: हाँ, तो उसमें बात ऐसी थी कि जैसा मैंने कहा कि पापा बिल्कुल ही पूरी तरह से वो थिएटर, रंगमंच, नाटक, इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, उनके दिमाग में 2400 घंटे वही चलता था, और माँ की और उनकी जो मुलाकात हुई थी वो भी नाटक के दौरान ही हुई थी। मतलब मजे वाली बात यह है कि वो बचपन से, जैसे हम लोग कहते हैं किंडरगार्टन से, वैसे बचपन से वो एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़े, लेकिन कॉलेज में, क्योंकि माँ बहुत होशियार स्कॉलर, उस जमाने में जो कंसेप्ट थी स्कॉलर की, वैसी स्कॉलर थी, तो इसलिए उसने साइंस लिया हुआ था और पापा ने आर्ट्स लिया था, तो कॉलेज में भी वो एक ही कॉलेज में थे। तो जब थिएटर करना शुरू किया तब उन्हें लगा नहीं नहीं नहीं, ये सुनंदा ने करना चाहिए हमारे साथ काम, तो इसलिए उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी, और फिर वो थिएटर में मम्मी जो घुस गई तो फिर साइंस वायंस सब पीछे रह गया, थिएटर ही चलता रहा।

0: लकीली पापा के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे अहमदनगर में, जो आज अहिल्यानगर कहा जाता है जिसे। तो उनका ऐसा कुछ नहीं था कि बाबा तू पहले नौकरी कर, पैसे कमा, फिर तेरी शादी करता हूँ। उन्हें पता चला कि ये सुनंदा और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इनकी शादी करा देना सबसे अच्छी बात। आई थिंक पापा 23-24 साल के थे और मम्मी 23 साल की थी। उन दोनों में 6 महीने का ही अंतर है उम्र में। तो तब उनकी शादी हुई, 73 में शादी हुई, और 74 में मेरी सबसे बड़ी बहन जो है उसका जन्म हुआ। मम्मी उस वक्त LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है, वहां पर जॉब करती थी। तो मम्मी ने पापा को ये सहूलियत दे रखी थी कि
1: अपने मन का जियो।
0: हाँ तुम जियो, मैं संभाल लूंगी, मैं कमा रही हूँ, अपने बच्चों को हमें कुछ कम नहीं पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, दादाजी और दादी और चाचा जी ये सब लोग थे, तो फैमिली में वैसे पैसे की उनका ये कहना नहीं था कि तुम घर में पैसे दो, पर उनका ये कहना था कि तुम खुद के लिए कुछ कमाओ। तो और मम्मी वो कर रही थी, तो इसलिए दादाजी का भी था कि चलो ठीक है, अभी अगर तुम्हारी बीवी कमा रही है तो तुम

0: पे जो करना है वो तुम करो। तो पहली बेटी हुई 74 में, 76 फरवरी में दूसरी बेटी हुई। तब फिर मम्मी को ऐसे लगने लगा, अरे अभी अपनी दो बच्चियां हो गई, अभी भी ये कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो रीजनल न्यूज़पेपर्स में उस समय एड आती थी। हाँ, तो फिर वो मम्मी ने वो एड देखी, और पापा का ऐसा था वो पूना मुंबई थिएटर के चक्कर में चक्कर काट रहे थे, अहमदनगर पूना मुंबई इस तरह से उनका चल रहा था। तो उन्होंने मम्मी ने वो एड देखी न्यूज़पेपर में, और मम्मी ने बिना पापा को बताए वहां पे अप्लाई कर दिया।
1: वेरी गुड।
0: हाँ, और फिर जब ऑडिशन थी तब मम्मी ने उन्हें बताया ऐसे ऐसी ऑडिशन है, आपको जाना है और करके आना है। वो समय ऐसा था कि कमाने वाली माँ थी और घर पे दिखाना बहुत जरूरी था कि भाई मेरी फैमिली बढ़ रही है, मैं भी कमा रहा हूँ उस तरह से। सो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो अब तुम कह रही हो तो मैं जाता हूँ और ऑडिशन देता हूँ। और ऑफकोर्स उनकी आवाज ऐसी थी कि सिलेक्ट होना ही होना था। तो वो सिलेक्ट हो गए और उन्होंने जॉब करी, दो महीना उन्होंने जॉब करी वहां पर। और डेढ़ महीने बाद उन्होंने मम्मी को खत लिखा कि मैं अगर ये करता रहा तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा जिंदगी में। तो फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया, पर उन्होंने वो जॉब इस तरह से करी थी तो आकाशवाणी ने उन्हें काफी हाथ दिया था उस वक्त, जब उन्हें वो जरूरत थी पुश की, एक जो साइकोलॉजिकल पुश हमें लगता है मानसिक रूप से कि हमें अभी मुझे कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूं मैं, उस वक्त जो एक अचीवमेंट की फीलिंग है वो आकाशवाणी ने दी हुई है। और मेरे ख्याल से हमें भी, विशेषतः मेरे बारे में मैं कहूंगी कि जब आप ऐसे घर में पैदा होते हो और बड़े होते हो कि जहां पर सुपर अचीवर्स है आपके आजू बाजू सारे, तब एक होता है कि मुझ में क्या है, शायद मुझ में कुछ नहीं है, ऐसी एक फीलिंग जो घर का सबसे छोटा सदस्य होता है उसमें आ सकती है, आने की आशंका होती है। तब मुझे आकाशवाणी ने हाथ दिया और मुझे ये समझ में आया उस वक्त कि नहीं, मेरे पास मेरी आवाज है और मैं बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, कंडक्ट कर सकती हूँ। आई थिंक आकाशवाणी हमारे परिवार के लिए वैसा एक जरिया रहा है कि जिन्होंने हमें, जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं था या जब हम एकदम लो जिसे फेज कहते हैं वैसे इसमें रहे हैं, उस वक्त हाथ दिया है, जिसे मराठी में हम उभारी कहते हैं, उभारी दी है,
1: उबारा है।
0: हाँ, तो आकाशवाणी से हमारा रिलेशनशिप, हमारी फैमिली का इस तरह से।
1: कितनी सुनहरी यादें आपने शेयर की सदाशिव जी के आकाशवाणी से जुड़ने की। यहाँ सुनंदा जी का जिक्र आता है और नाटकों का भी जिक्र आता है कि जहाँ वो उनके रास्ते एक साथ हुए।
0: राइट।
1: कोई पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ ये एहसास हुआ कि उन्हें अब सुनंदा जी के साथ जीवन बिताना है? वो कोई एक मोमेंट था जहाँ ये हुआ?
0: पापा उनके नाम ही की तरह सदाशिव भोला साम जिसे कहते हैं, वैसी पर्सनालिटी के थे, स्पेशली जब वो कॉलेज में थे तब। तो उनके दिमाग में एक ही पागलपन चढ़ा हुआ था, एक ही भूत सवार था, वो था नाटक। और उन्हें वही करना था। ठीक है, नाटक करते वक्त घंटों तक आप साथ में रिहर्सल्स करते हैं, सब करते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं, तो जो दोस्ती है वो दोस्ती से थोड़ी ज्यादा है, इतना उन्हें शायद समझ में आया होगा। पर उसके ऊपर कुछ करे, उसके ऊपर कुछ एक्ट करे, ये उनकी पर्सनालिटी नहीं थी।
1: पहला कदम उनकी तरफ से नहीं आना था।
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे याद है आज भी, मतलब ये हमारे घर में हमारे बहुत ही आर्ग्यूमेंट का विषय हुआ करता था जब पापा थे तब, कि पहले प्रपोज किसने किया। लेकिन जब अभी मम्मी ने किताब लिखी है उसमें उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि मम्मी ने ही उन्हें एक चिट्ठी लिख के कहा था कि ऐसा ऐसा मेरी फीलिंग्स है और क्या आपको भी यही लगता है, और उन्हें वो चिट्ठी दी थी उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा था कि देखो अपने दोस्तों के सामने मत खोलना ये चिट्ठी, घर जाके अकेले में खोलना, बिकॉज पापा ऐसे थे वो हमेशा दोस्तों से घिरे रहते थे। तो वो दोस्तों के सामने खोलेंगे, जोर से पढ़ेंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, इतना डर मम्मी को लग रहा था। तो इस तरह से तो वो पॉइंट था जब मम्मी, क्योंकि मम्मी के घर पे उनके पिताजी की मौत बहुत जल्दी हो चुकी थी जब वो 10-11 साल की थी, तो उस वजह से उनके घर पे वो और उनकी माँ इतने ही थे, उनकी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। तो अभी इसके लिए भी लड़का देखो ये करो, जब वो शुरू हुआ उनके घर पे, जब वो ग्रेजुएशन के आसपास थी, तब उन्होंने कहा अभी ये मेरा ये जो पगला आदमी है उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम में जो है वो प्यार है, उसे ये समझाना अभी जरूरी हो गया है। और फिर उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी, तब फिर उनका आगे जाके इस तरह से हुआ कि फिर मम्मी ने ही थोड़ा थोड़ा, बिकॉज उस वक्त मेरे दादाजी जो थे वो बहुत

0: कर्मठ स्वभाव के थे, तो किसी लड़की का घर पे आना, लड़कियों से दोस्ती, ये सब इम्पॉसिबल था उस समय और अहमदनगर जैसे छोटे से शहर में. पर लकीली मम्मी के पिताजी और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, तो जब मम्मी घर जाने लगी दादी से, फिर पापा की बुआ भी उन्हीं के साथ रहती थी, उनसे इस तरह से जब बातें होना शुरू हुई, तब उन्हें समझ में आया कि कुछ तो मामला है. और फिर उन्होंने वन फाइन डे मम्मी को बुलाया घर पे और कहा कि देखो, तुम्हें ये सब दिख रहा होगा कि इतना बड़ा घर है, ये है वो है, पर ये सब मैं धर्मादाय कर दूंगा, बेटों को कुछ नहीं दूंगा मैं. हाँ, तो अगर तुम ये सोचती हो कि इस वजह से है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला. तब मम्मी का इतना क्लियर था कि उसने कहा ठीक है, मैं जॉब कर रही हूं, मैं चला लूंगी घर, नो प्रॉब्लम. तो बहुत ही ज्यादा क्लियर इन दोनों के थॉट्स थे. और जैसा मैंने कहा कि पापा को ये शब्दों में पेश करना कि जो हमें हुआ है वो प्यार है, ये पॉसिबल नहीं था जो मम्मी कर पाई. लेकिन जिस वक्त वो कमिटमेंट हो गई, उस वक्त वो कंप्लीट कमिटमेंट हुई.
1: वाह वाह,
0: तो वो, हालांकि वो उन्होंने शब्दों में नहीं कहा होगा, पर वो उनके एंड तक, मतलब ये उन्हें प्यार हुआ जब वो 21 साल के थे, 64 के होने तक वो प्यार बिल्कुल वैसा ही रहा. और ये हम सब लोगों ने देखा हुआ है और उन दोनों ने वही सीख हमें भी दी है कि अगर कमिटमेंट कर रहे हो तो पूरी तरह से करो, फिर वो अपने काम की तरफ हो या इंसानों की तरफ हो.
1: क्या प्यारी
0: तो
1: बात है। यहां एक बहुत क्यूट बात सामने आई है और वो है एक प्रेम कहानी जो चिट्ठी के जरिए आगे बढ़ती
0: हाँ
1: है।
0: हाँ
1: हम जिस समय और समाज में हैं वहां ये यकीन करना अब जरा मुश्किल है कि
0: राइट
1: चिट्ठियों के जरिए भी प्यार का इजहार हो सकता है और वो चिट्ठी बचाकर जीवन भर रखी जा सकती है। मुझे लगता है ये जगह है गाने की और वो गाना बहुत ही मुफीद है जो चिट्ठी के जरिए प्यार के इजहार की बात करता है। फिल्म है संगम।

0: यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात जो पीछे छूट गई है उसका सिरा पकड़ के आगे बढ़ते हैं। मम्मी की एक किताब है पिताजी के नाम पर, और आपने कहा कि उसमें ये जिक्र आता है कि उन्होंने सबसे पहले इजहार किया, उस किताब का नाम बताइए और वो नाम क्यों रखा गया है, इसकी कहानी बताइए।
1: हाँ ओके, तो वो किताब अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है खुलभर दुधाची कहानी। खुलभर माने छोटी सी कटोरी में जितना दूध बैठता है उसको खुलभर कहते हैं, खुल
0: ओके
1: मतलब उतना सा। खुलभर दुधाची कहानी, सो उतने से दूध की ये कहानी है,
0: हाँ,
1: ये
0: सवाल
1: है।
0: आता है कि ये आखिर
1: हाँ
0: क्या है
1: क्या
0: ये?
1: है, राइट। श्रावण महीना जब होता था तो अहमदनगर में या आज भी छोटे गांव में होता होगा, हर मंगलवार को और शुक्रवार को उपवास होता है, पूजा होती है, कथा कथन होता है। तो उस वक्त जो फोक टेल्स जिसे हम कहते हैं वैसी कथाएं कही जाती थी। तो उस समय सुनी हुई ये कहानी है। ये कहानी है कि एक छोटा सा गांव है, राज्य है, और वहां पर अकाल पड़ा हुआ है, बारिश हुई ही नहीं है, ठीक है, सूखा पड़ा हुआ है। और वहां पर वो राजा हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, और इसलिए वो पंडितों को बुलाता है और कहता है अब मैं क्या करूं। वो पंडित उसे कहते हैं कि जो ये महादेव का मंदिर है आपके गांव में, तो उसका जो गर्भगृह है उसे पूरी तरह से दूध से आप भर दो, तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और फिर आपको बारिश हो जाएगी। तो राजा फरमान निकालते हैं कि हर एक के घर में कल जितना भी दूध होगा, जितना भी जिसके पास होगा वो सब लाके गर्भगृह में अर्पण कर दे। तो ये सब होता है तो फिर भी वो गर्भगृह भरता ही नहीं है, इतना दूध आता है, लंबी लंबी लाइनों में लोग आके दूध डालते हैं वहां, फिर भी नहीं होता है। और जो सिपाही होते हैं वो घर घर जाकर आपके पास और दूध है, और दूध है, और दूध है, ऐसा करते हैं। तब वो एक घर में जाते हैं, वहां पे एक बुढ़िया होती है। तो वो कहते हैं आप गए थे दूध डालने? बोले नहीं नहीं मैं अभी जा ही रही हूं। तो उसने एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में दूध लिया हुआ है, और उसने क्या किया है कि उसके घर पे जो उसके बच्चे बच्चियां पोते सब लोग हैं, उनका खाना पीना सब कुछ होने के बाद जितना दूध बचा वो लिया और वो गई और महादेव जी के ऊपर उसने चढ़ा दिया। और जिस क्षण उसने वो चढ़ाया वो गर्भगृह पूरा दूध से भर गया।
0: वाह,
1: तो कहानी का मतलब ये है कि आपके जो कर्तव्य है वो आप पूरा कीजिए, और फिर जो बचा कुचा है वो आप भगवान को दीजिए, भगवान को चलता है। ओके,
0: वाह वाह
1: सो
0: वाह,
1: बेसिकली आप अपनी जो पूरी जिंदगी है वो अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी जो जिम्मेदारियां है उनके प्रति आप अर्पण कीजिए, इस तरह की वो कहानी है। और थोड़ी बहुत मम्मी की जो कहानी है, जीवन की कथा अगर हम सोचे तो वो उसी तरह से गई है। वो भी एक गजब की अदाकारा है, बहुत अच्छा गाती है, लिखती है, बट जब उनकी शादी हुई और उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, ये जो मेरा सदाशिव है, ये जो मेरा महादेव है, इसे जो करना है, इसमें ज्यादा पोटेंशियल है, इसने ये करना चाहिए, तब उन्होंने अपना खुद का सब पीछे छोड़कर एक बहुत ही कर्मठ घर में जाकर बच्चियों को पाला और दा

0: दादा दादी मतलब उनके सास ससुर, बुआ पापा की बुआ थी जो सन्यासिन थी, उनका सब कुछ करते हुए, ये सब कर्तव्य करते करते करते फिर अल्टीमेटली जब उनकी बेटी की शादी हुई एट द एज ऑफ 53, फिर उन्होंने अपना लिखाई का काम और ये सब शुरू किया। और
1: वाह,
0: अभी ये है कि पिछले 20 सालों में उनकी लगभग 30 किताबें आ चुकी हैं। तो इसलिए वो हमें लगा कि ये जो कहानी है ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है उस बुक के लिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी की कहानी उस तरह से रही है। और ऑफ कोर्स भगवान, मतलब उन्होंने पापा को जिस तरह से प्यार दिया, जिस तरह से विश्वास दिया, वैसा ही पापा ने उन्हें रेसिप्रोकेट किया। पापा ने भी, पापा का भी

0: लगा कि ये जो कहानी है ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है उस बुक के लिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी की कहानी उस तरह से रही है। और ऑफ कोर्स भगवान, मतलब उन्होंने पापा को जिस तरह से प्यार दिया, जिस तरह से विश्वास दिया, वैसा ही पापा ने उन्हें रेसिप्रोकेट किया। पापा का भी उन पर ऐसा ही विश्वास था, जो अंधविश्वास हम कह सकते हैं थोड़ा सा था, पर वो था। और उस वजह से आई थिंक जो आज भी हमारा घर फूला फला है और इतना अच्छा है, वो उस विश्वास की वजह से है।
1: बहुत ही सुंदर घटना है ये, जो किताब के नाम की घटना है और जिस तरह से आपने उसको विस्तार दिया है, ये बहुत ही मार्मिक है। अब चूंकि अमूमन जो रवायती इंटरव्यूज होते हैं वो ये कि बचपन से शुरू करेंगे, लेकिन हम कहीं से शुरू हुए हैं तो वो बचपन की बातें हम आगे कहीं जाके करेंगे,
0: सही बात।
1: क्योंकि बातचीत के अंदर घटनाएं तो आगे निकल कर आएंगी।
0: राइट।
1: चूंकि बातें सुनंदा जी और सदाशिव जी के रिश्ते की चल रही हैं और कैसे उनकी डोर आपस में जुड़ती है चल रही, पहले उन नाटकों का जिक्र करते हैं जो उन्होंने उस दौरान साथ में किए थे, उनसे जुड़ी कुछ कहानियां हो तो वो बताएं।
0: राइट। उनसे जुड़ी तो काफी कहानियां हैं जो हम सुनते सुनते बचपन से आ रहे हैं।
1: जी
0: पर उन्होंने एक जो प्ले उन्होंने किया था वो था बंडू बेबी अणि बुरखा। तो उस वक्त इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स होती थी। ये जो प्ले था इसमें बंडू और बेबी, तो पति पत्नी का कैरेक्टर था, ये इन दोनों ने किया था। और उसी नाटक के दौरान आई थिंक दे रियलाइज्ड कि दे आर इन लव विथ ईच अदर। ये एक नाटक के बहुत सारे किस्से हैं। मतलब मम्मी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्कॉलर इसकी थी, तो जब भी उनकी एग्जाम आती थी तो वो अवेलेबल नहीं होती थी प्ले के लिए। प्ले तो करना था, अभी कंपटीशन है तो जाना तो पड़ेगा। तो उस वक्त मम्मी तो नहीं है, मम्मी ने कहा मैं तो नहीं, मेरी एग्जाम है अभी, मैं पढ़ाई करने वाली हूं, आपको जो करना है करो। तो उन्होंने किसी और को वहां पर कास्ट किया। और फिर मम्मी ने कहा अगर ये लड़की कास्टिंग है तो आप नहीं करोगे ये रोल। तो इसलिए फिर पापा का रोल भी किसी और ने वहां पर किया।
1: बहुत सही,
0: ठीक है।
1: बहुत ही सही।
0: तो और वो जो था वो उसका शो था संगमनेर नाम के एक छोटे से गांव में, अहमदनगर के पास ही है, वहां पर उसका शो था। और उस समय लाइट चली गई तो माइक नहीं थे, तो फिर आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा, मम्मी हालांकि नाटक में नहीं थी, पर क्योंकि वो यूथ फेस्टिवल जैसा माहौल था तो और किसी कंपटीशन में वो थी, तो इसलिए वो वहां गई हुई थी। तो फिर वहां पर और वो जो नई लड़की और लड़का था उनके आवाज पहुंच ही नहीं रहे थे ऑडियंस तक। तो फिर इन दोनों ने वो डायलॉग्स पीछे से जोर से वो बोले और उन लोगों ने लिपसिंग किए स्टेज के
1: वाह
0: ऊपर।
1: वाह, क्या प्रयोग।
0: इस तरह से वो हुआ। तो ये जो एक किस्सा है ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद कभी भी मम्मी ने पापा से ये नहीं कहा कि मैं नहीं हूं प्ले के लिए। जो भी डेट चाहिए जब भी चाहिए वो अवेलेबल होती थी इस
1: क्या
0: तरह
1: बात
0: से।
1: है, बहुत ही सुंदर। एक पूरा दौर था जब सदाशिव जी लगातार नाटक कर रहे थे
0: राइट।
1: और भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि नाटकों के लिए तो अलग अलग
0: हाँ
1: शहरों में गांव में जाना होता है।
0: सही।
1: उस दौर के कोई बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं जिन्होंने उन्हें एक मुकम्मल पहचान दी थी,
0: ऑफ कोर्स।
1: उनकी बात करते हैं।
0: उसमें मैं सबसे पहले पापा कलाकार तो थे, एक्टर तो थे ही, पर वो निर्देशन में भी बहुत रस रखते थे, वो
1: बिल्कुल
0: निर्देशक भी थे। राइट। सो अगर उनके नाटकों की बात कही जाए तो उन्होंने कुछ नाटक ऐसे किए थे, जैसे छू मंतर करके एक नाटक था, फिर बखर एका राजा जी, ये एक प्ले था, छिन्न करके एक नाटक था, कन्यादान एक नाटक था, फिर हैंड्स अप, ये जो पांच छह नाटक है, काही स्वप्ने विकायची, ये भी एक था। पर काही स्वप्ने विकायची थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल था और कंपटीशन वाला प्ले था। बाकी के ये जो सारे जो मैंने नाम लिए ये कमर्शियल नाटक थे। इसके अलावा भी बहुत सारा काम किया हुआ है, पर ये नाटक मैं स्पेशल इसलिए समझती हूँ बिकॉज ये हर एक नाटक ने कुछ इंडस्ट्री को भी दिया हुआ है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका अलग अलग जिक्र मैं चाहता हूं,
0: जिक्र,
1: जैसे छिन्न
0: यस।
1: का बहुत जिक्र
0: हाँ
1: मिलता है,
0: हाँ
1: हैंड्स अप का जिक्र मिलता है,
0: करेक्ट।
1: काही स्वप्ने विकाईची, अगर मैं
0: हाँ
1: सही प्रोनाउंस
0: हाँ
1: कर रहा हूं, उसका
0: हाँ
1: भी खूब जिक्र मिलता है कि
0: करेक्ट।
1: अलग अलग मानदंडों पर इन्होंने कुछ
0: किया है। सो
1: कामयाबी की
0: काही
1: है।
0: स्वप्ने विकाईची ये जो प्ले था ये बहुत पहले कुछ जो प्लेस पापा ने किए थे उसमें से था। तो उसमें वो एक रिटायर्ड टीचर का रोल करते थे जो 83 इयर्स ओल्ड होते हैं, और उस वक्त पापा की उम्र थी 23-24 ज्यादा। उस समय उन्होंने काफी सारे उस पे INT और ये जो सारी कॉम्पिटिशन होती थी उसमें काफी सारे अवार्ड्स जीते थे उस एक रोल के लिए। उन्हें लोग कास्टिंग के लिए बुलाते

0: थे कि आप आओ हमारे यहाँ पे प्ले में, और वो हर बार जाते थे तो लोगों को लगता था ये कौन आ गया, वो तो एक बुढ़ा आदमी है जो वो रोल कर रहा है, उम्र में ज्यादा है, आपने कैसे किया, आप तो नहीं हो सकते। ऐसे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उस समय पापा की आंखें चली गई, बिकॉज लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये वही इंसान है जिसने 83 साल के एक वृद्ध इंसान का रोल किया हुआ है, और वो इतना बखूबी निभाया उन्होंने कि लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि ये एक 24-25 साल का युवक है। तो वो एक प्ले इसलिए बहुत ज्यादा फेमस था क्योंकि पापा की जो एक्टिंग की रेंज थी वो एक प्ले में काफी सारी एक्सपोज हुई थी। इसके अलावा छिन्न जो प्ले है वो विजय तेंदुलकर साहब ने लिखा हुआ था, और उसकी खासियत ये है कि वो एक प्ले है जिसमें सबसे पहले और मेरे ख्याल से आखिरी बार, वही एक प्ले है जिसमें स्मिता पाटिल जी ने कमर्शियल थिएटर किया था और
1: और वो भी
0: पापा ने वो
1: पापा के
0: निर्देशित।
1: निर्देशन में।
0: तो इसलिए वो एक बहुत ही खास प्ले रहा है, और लोगों ने जो सराहा है उस प्ले को क्योंकि उसका विषय है और जो सब था, एक तो तेंदुलकर साहब की जो लिखाई है वो एक तो पाथ ब्रेकिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग होती है, और उसके ऊपर पापा का डायरेक्शन, ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट दोनों चीजें हुई थी। उसी की स्टाइल में दूसरा एक नाटक कहा जाए तो वो है कन्यादान। कन्यादान में डॉक्टर श्रीराम लागू, नीना कुलकर्णी, आशालता वाबगावकर, ये बहुत बड़े बड़े नाम थे उस समय,
1: बिल्कुल
0: और उनके साथ अगेन पापा ने निर्देशित भी किया था, उन्होंने एक्टिंग भी की थी उसमें। छिन्न और कन्यादान, इन्होंने पापा को एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर डायरेक्टर के तौर से एस्टेब्लिश किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। और उस समय थिएटर जिस तरह से देखा जाता था, लोग जिस तरह से देखते थे, वैसा मुझे नहीं लगता आज तक वो सुवर्ण काल फिर से आया है,
1: हम
0: ऐसा
1: उस
0: मुझे
1: दौर
0: नहीं
1: की बात
0: लगता।
1: कर रहे हैं जब टेलीविजन उस
0: हाँ,
1: तरह से नहीं आया
0: नहीं
1: था,
0: आया था।
1: और महाराष्ट्र में खास तौर पर थिएटर की सशक्त परंपरा थी
0: एकदम
1: और कामयाबी के झंडे गाड़ते थे प्लेज, और उनकी दास्तानें आज तक कही
0: करेक्ट
1: जाती हैं।
0: करेक्ट करेक्ट। तो ये प्ले था। उसके बाद पापा ने INT के लिए ही एक प्ले किया था, बखरे का राजा जी। तो बखरे का राजा जी ये जो प्ले था, इसमें नीना कुलकर्णी और दिलीप कुलकर्णी जो उनके हस्बैंड थे, वो भी एक बहुत उम्दा कलाकार थे, उन दोनों को लेकर ये प्ले बनाया गया था। पर उस समय वो प्ले चला नहीं, कमर्शियली इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, और INT को काफी लॉसेस झेलने पड़े थे बिकॉज इट वाज अ हिस्टोरिकल सेट, सब वैसे लगा था और ये सब हुआ था। तो उसके बाद पापा ने डिसाइड किया अब मैं जो करूंगा वो मैं कमर्शियली वायबल करूंगा, पैसे कमाने चाहिए लोगों, मतलब प्रोड्यूसर्स ने, राइट? तो इसलिए उन्होंने दो प्लेज किए उसके बाद डेफिनेटली, जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। एक प्ले तो था छू मंतर, जो उन्होंने डायरेक्ट किया था, और इस प्ले की मजे वाली बात यह है कि उस वक्त लक्ष्मीकांत बेरड़े को फर्स्ट टाइम कमर्शियल प्ले में पापा ने कास्ट किया था।
1: हो गजब।
0: इट वॉज इज लॉन्च। तो और वो प्ले बहुत चला बिकॉज इट वॉज अ आउट एंड आउट कॉमेडी, और बहुत मजा आया लोगों को, और एक लक्ष्मीकांत बेरड़े जैसा कलाकार आया, पापा थे लक्ष्मीकांत बेरड़े थे, तो इट वॉज पिक्ड अप लाइक हाउ। उसके बाद हैंड्स अप किया था पापा ने, जिसमें वो थे, भक्ति बर्वे थी, ऐसे 5-6 बहुत ही स्ट्रांग आर्टिस्ट उसमें थे, और पापा ने निर्देशित भी किया था वो प्ले, और दैट वॉज अ हिस्टोरिकल प्ले। मैं इसलिए
1: बिल्कुल
0: कहूंगी क्योंकि बहुत बारी ये बात आई भी है कि जब गोविंद निहलानी जी ने वो प्ले देखा, अगेन विजय तेंदुलकर जी ने उनसे कहा था कि तुम हैंड्स अप का प्ले देखो, बिकॉज उस समय निलानी जी अर्धसत्य का कास्टिंग कर रहे थे और पुलिस इंस्पेक्टर का हीरो है ये तो पता था बिकॉज तेंदुलकर साहब ने ही वो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि तुम ये प्ले देखो, इसमें ये लड़का है ये बहुत अच्छा इंस्पेक्टर निभाता है, तो तुम देखो। तो इसलिए गोविंद जी गए, उन्होंने वो देखा प्ले, और उन्होंने पापा को इंस्पेक्टर के रोल में ही थे वो देखा, लेकिन उन्होंने उनकी कास्टिंग रामा शेट्टी के लिए की।
1: वाह।
0: और फिर उसके बाद तो इट इज जैसे हम कहते हैं कि हिस्ट्री है। उसके बाद फिर पापा एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कलाकार का नाम उन्हें मिल गया और वो काफी सारी फिल्मों में ही बिजी हो गए। तो थिएटर वो करते रहे पर बहुत थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बाद में वो करते रहे।
1: बिल्कुल
0: तो इसलिए वो हैंड्स अप, ये एक जो प्ले है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड्स अप का ये एक मजेदार किस्सा है। उस वक्त क्या होता था, जैसे आपने कहा कि वो समय ऐसा था जब मराठी में नाटक की

0: परंपरा बहुत बहुत स्ट्रांग थी. तो दिन में दो दो तीन तीन शो लगते थे एक प्ले के. तो और उस वक्त जैसे अब है मेट्रो पकड़ लिया चले गए, उबर पकड़ ली चले गए, वैसा नहीं था. आर्टिस्ट को खुद ही जुगाड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था. पापा के पास उस वक्त एक टू व्हीलर थी. तो शिवाजी मंदिर में प्ले खत्म हुआ, वहां से उन्हें ठाणा पहुंचना था.
1: ओहो,
0: और ये मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ये सब इतना अच्छा नहीं था बंबई में.
1: हाँ जी.
0: तो पापा स्कूटर पे जाते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कपड़े नहीं बदले और वो वैसे ही निकल गए और एक भी सिग्नल पर वो नहीं रुके. और हर बार जब उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो बिकॉज वो उस कॉस्ट्यूम में थे उनको लगता था अरे ये तो कोई इंस्पेक्टर है, कुछ अर्जेंट काम होगा तो सॉरी सॉरी सर करके. तो ये कलाकार इस तरह से होते हैं, औलिया जिसे हम कहते हैं, कि वो उन्हें सिर्फ वही दिखता है कि मेरा कर्टन और आधे घंटे में खुलने वाला है, मुझे वहां पहुंचना है बस. और
1: क्या प्यारी बात है. वाह, यहां भी गाने की जगह बन रही है और मुझे लगता है कि ये करते हैं कि मम्मी की पसंद का कोई गाना लगाते हैं यहाँ पर.
0: मम्मी की पसंद का ये जो गाना है मेरे महबूब में क्या नहीं.
1: वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात क्या बात. सुनते हैं ये गाना.

0: बहुत लंबी एक दिलचस्प बात हुई नाटकों को लेकर, और तेंदुलकर साहब का नाम वहां बार बार आता है। बहुत करीबी रिश्ता सदाशिव जी का तेंदुलकर जी से रहा है, उससे जुड़ी कुछ घटनाएं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं आपसे सुनना चाहता हूं।
1: ओके तेंदुलकर जी एक हम कह सकते हैं विद्यापीठ थे।
0: बिल्कुल
1: किसी भी घटना की तरफ देखने का उनका जो दृष्टिकोण होता था वो बहुत अलग होता था। रोज की घटनाओं की तरफ भी वो जिस तरह से देखते थे और बात करते थे ये बहुत अलग था। तो उनकी और पापा की जो पहचान थी वो प्ले की वजह

0: हुई थी, पर सुहास अवचट करके बहुत बड़े आर्टिस्ट है, पेंटर है, उन्होंने उनको मिलाया था। एक ये अहमदनगर से आया हुआ लड़का है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये जब तेंदुलकर साहब को समझ में आया तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया। और सपोर्ट किया मतलब मैं इस तरह से कहती हूँ कि देर वर डेज, ऐसे दिन थे जब दो दो तीन तीन दिन तक पापा उनके घर पर ही रहते थे।
1: गजब।
0: हाँ, और उस वक्त तेंदुलकर साहब जो काम कर रहे थे, इतना बड़ा काम कर रहे थे, तो वो प्रोसेस का एक भाग होना एक युवा के लिए जो अहमदनगर जैसे छोटे से गांव से आया है, ये बहुत बड़ी बात थी। तो पापा हमेशा कहते हैं कि मैं तो उनके सामने जाता था तो जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है जो इंक ब्लॉट करता है, वैसे मैं, मराठी में हम उसे टिप कागद कहते हैं, तो वैसे मैं टिप कागद हो जाता था, जो भी मिले वो एब्जॉर्ब करो,
1: वाह वाह,
0: बस उतना ही। तो ये स्थान तेंदुलकर साहब का पापा की जिंदगी में था। दूसरा, जब 82 में मम्मी को बॉम्बे में ट्रांसफर मिली, तब कैसे तैसे करके पापा ने एक किराए का घर लिया था, क्योंकि हम तीनों बच्चियां, मेरी दादी और मम्मी और वो, ऐसे हम सब लोग रहने वाले थे,
1: किस
0: तो
1: इलाके में?
0: अंधेरी में ही लिया था उन्होंने बिकॉज उस वक्त बैंड्रा बहुत महंगा था, तो इसलिए उन्होंने अंधेरी में लिया था। तो एक किराए पे छोटा सा घर लिया था, और 2 साल बाद वो घर मालक ने कहा कि भाई अभी नहीं, अभी आप छोड़ दो, मुझे ये घर बेचना है। तो रातों रात एक हफ्ते के अंदर बंबई जैसे शहर में एक घर ढूंढ पाना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो पापा गए तेंदुलकर साहब के पास, बिकॉज जैसे मैंने कहा, ही वॉज अ गाइड, ही वॉज अ फ्रेंड, ही वॉज अ फिलोसोफर। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ है, नो प्रॉब्लम। उन्होंने सीएम साहब के लिए एक लेटर लिखा कि ये ऐसा ऐसा कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार है, और इसे बंबई में रहने के लिए घर नहीं है, तो आप इसकी कुछ मदद कर दीजिए। तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ खत लेकर पापा पहुंच गए। उस समय चव्हाण साहब सीएम थे, उन्होंने वो लेटर देखा और 1 मिनट के अंदर उन्हें लेटर दिया। उस समय ऐसा था कि 2% कोटा हुआ करता था
1: आर्टिस्ट
0: कलाकारों
1: का।
0: के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए। तो उसमें से जोगेश्वरी में जो नई एक कॉलोनी बन रही थी वैशाली नगर, वहां पर हमें एक 1 BHK का फ्लैट म्हाड़ा का मिला। तो वो लेटर तेंदुलकर साहब ने दिया, और इट वाज अमेजिंग। जैसा पापा हमेशा कहते थे कि आपकी जिंदगी के हर मुकाम पर आपको ऐसे इंसान मिलते हैं जो या तो आपको कुछ नया दिखाते हैं या आपको आगे पुश करते हैं। तो मेरे ख्याल से, और पापा से जो बातें होती थी उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि तेंदुलकर साहब ऐसे थे जो पापा के लिए ना ही, मतलब एक नया तरीका दुनिया को देखने का तो था ही जो उन्होंने सिखाया उन्हें, पर उन्होंने उन्हें बहुत बड़ा पुश भी दिया। तो बंबई में घर अपना खुद का लेना हो या उन्हें पहली फिल्म मिलनी हो, पहली फिल्म हालांकि पापा की 22 जून 1897 थी,
1: हाँ, उसकी बात आगे
0: उसकी
1: करेंगे।
0: आगे करेंगे, पर बड़ी फिल्म जिसमें हालांकि 3.5 सीन थे पर वो पूरी फिल्म पे छा गए थे,
1: बिल्कुल,
0: रामा शेट्टी छा गया था कैरेक्टर, तो वो फिल्म हो। तो आई थिंक तेंदुलकर साहब का अनन्य साधारण महत्व हमारी पूरी फैमिली की लाइफ में है।
1: बिल्कुल। एक घटना है जिसमें उन्होंने पूछा था तेंदुलकर से कि आपने अर्धसत्य में मुझे रोल क्यों दिलवाया, उसका जिक्र करें।
0: उसका ये तो एक्चुअली तेंदुलकर साहब ही बेस्ट बता पाएंगे, पर उन्होंने जब पूछा तब मेरे ख्याल से जो मुझे याद है कि तेंदुलकर साहब ने कहा था कि देखो कलाकार कलाकार होता है, क्योंकि उस समय भी और आज भी हमारी इंडस्ट्री में काफी कैंप्स बने हुए हैं, राइट?
1: बिल्कुल।
0: सो पूना से आने वाले लोगों का एक कैंप है, बॉम्बे से लोगों का एक कैंप है, अभी तो बॉलीवुड में भी यूपी से आने वाले लोगों का एक कैंप है, इस तरह से। और वो कालातीत है, वो चलता ही रहता है, हर जगह वो होता है। तो उन्होंने कहा था कि कलाकार जो होता है ना, उसकी जात और उसका ये सिर्फ एक होता है धर्म, वो है कला। और तुम जिस तरह से खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हो, वैसे मुझे लगता है तुम ये रोल ठीक से कर पाओगे। हालांकि उस वक्त बात ये हुई थी कि पापा को लग रहा था कि हीरो का रोल उन्हें मिलेगा, जो कि ओमपुरी जी को मिला था, क्योंकि इंस्पेक्टर, हैंड्स अप में उन्होंने इंस्पेक्टर किया था, और ये रामा शेट्टी का रोल इन्हें ऑफर किया गया था। तो उन्होंने तेंदुलकर साहब से पूछा था, पर मुझे तो लगा था मैं इंस्पेक्टर का रोल करूंगा। तो उन्होंने कहा था तुम बस जो तुम्हें काम दिया है वो ठीक से करो, तुम विलन हो या हीरो हो दैट डज नॉट मैटर,

0: ये फिल्म के आखिर में तुम याद रहने वाले हो लोगों को, ये भूलना मत। तो वो पापा ने सुनी उनकी बात और ही इज वेयर ही रीच्ड।
1: बिल्कुल बिल्कुल, एक कलाकार की ताकत ये है कि कितना छोटा रोल क्यों ना हो, अपनी मौजूदगी, अपनी आमद को कैसे साबित किया जा सकता
0: सही
1: है।
0: बात
1: उसकी मिसाल है अर्धसत्य। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसे बहुत कम मिसालें मिलती हैं जहां कुछ दृश्यों में अभिनेता ने अपनी वो छाप छोड़ी के इतिहास रच दिया।
0: राइट
1: लेकिन ये उनकी पहली फिल्म नहीं थी,
0: नहीं थी
1: तो
0: तो
1: पहली फिल्म जो नचिकेत और जयू वाली थी, वो कैसे मिली उसका जिक्र कीजिए।
0: वो कैसे मिली इसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगी,
1: जी
0: लेकिन पूना में उस वक्त पापा रहते थे ज्यादा करके और वहां पर वो प्ले वगैरह कर रहे थे, तो उन्होंने कास्टिंग में उन्हें तिलक का रोल दिया गया था और पापा उस वक्त एकदम पतले दुबले पतले से ऐसे थे, तो जयू और नचिकेत पटवर्धन उनके बहुत अच्छे दोस्त थे उस वक्त, तो आप करोगे? उन्होंने कहा हाँ मैं करूंगा, नो प्रॉब्लम, चलो। मतलब पापा कहते थे कि अभी दुकान ही खोलकर बैठे हैं तो जो आएगा वो करना तो पड़ेगा, इस तरह
1: यस
0: से उन्होंने वो किया था। तो लेकिन उन्होंने वो रोल किया उस वक्त, जयू और नचिकेत पटवर्धन ये अभी तो बहुत ही सीनियर और रिस्पेक्टेड ये है, पर वो भी काफी यंग थे उस वक्त। और फिल्म में मुझे याद है पापा ने बाद में जब राज से स्वराज तक में लोकमान्य तिलक का रोल किया, तब उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर मेहनत की थी, क्योंकि उन्हें समझ में आया था कि ये जो फिल्म हमने की है जयू नचिकेत के साथ, इसमें हालांकि मैं तिलक लग रहा हूँ फीचर्स के तौर पर, लेकिन जो उसका क्रिटिक आया था वो ऐसा आया था कि मैं मराठी में ये वाक्य कहती हूँ, यजतला लोकमान्य टिळक हा रामोश्या सारखा दिसतो। रामोशी मतलब जो क्लीनर्स होते हैं ना ऑफिसेज में या घर में, उन्हें रामोशी कहा जाता था एक जमाने में, अब तो नहीं कहते कोई, तो इस तरह से वो दिखता है। तो इसलिए उसके बाद जब पापा ने राज से स्वराज तक की, जब उन्हें फिर से एक बार तिलक करने का मौका मिला, लोकमान्य तिलक का किरदार निभाने का मौका मिला, तब पापा ने बाकायदा 6-8 महीने, उस समय ये नहीं होता था लेकिन जिम जाकर, बिकॉज लोकमान्य तिलक की जो बॉडी थी ही वॉज वेरी वेल बिल्ट, तो इस तरह से दिखने के लिए पापा ने वो सारे एफर्ट्स लेकर वो काम किया हुआ था। ये फिल्म के बारे में जब भी पापा से बात होती थी तो वो कहते थे मैं तो थ्रिल था कि मुझे फिल्म में लिया है, हाँ, बिकॉज उनकी उम्र भी काफी कम थी उस वक्त। और क्या करना चाहिए जब आप कोई इस तरह का किरदार जो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी इंसान का किरदार जब आप निभा रहे हो, तब क्या करना चाहिए इसके लिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीजें उन्हें उस फिल्म से समझ में आई। आज भी जब वो दूरदर्शन पे वो फिल्म लगती है तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच।
1: बिल्कुल, राज से स्वराज का जो जिक्र आया है, मैंने उनके इंटरव्यूज में देखा और पढ़ा है कि बहुत ही प्रिय रहा है ये रोल उनके लिए। और जब भी कभी उनसे ये पूछा गया कि आपके फेवरेट रोल्स कौन से रहे, तो उन्होंने बड़ी फिल्मों और वो तमाम मशहूर रोल्स को छोड़ के इसका जिक्र किया है, वो क्यों है?
0: क्योंकि जैसा मैंने कहा कि राज से स्वराज तक में जो लोकमान्य तिलक की भूमिका निभाना है, ये एक उनके लिए एक लर्निंग कर्व रहा है। 22 जून 1897 ये फिल्म में जयू नचिकेत पटवर्धन उन्हें डायरेक्ट किया था लोकमान्य तिलक की भूमिका में, और यहाँ पर अमाल अलाना जी ने उन्हें डायरेक्ट किया था राज से स्वराज तक में। अमाल अलाना अगेन एक बहुत बड़ा नाम है,
1: बिल्कुल
0: अलकाजी सर जिन्होंने एनएसडी जैसी संस्था को रूप लाया, उनकी बेटी अमाल अलाना, उन्होंने ये दिग्दर्शित किया हुआ था। और उस समय ना पापा और 10-15 साल आगे आ चुके थे करियर में एज एन एक्टर ऑल्सो, ही वॉज अ स्टार एट दैट टाइम जब राज से स्वराज तक हुई थी। तो जब उन्हें फिर से चांस मिला तो उन्होंने सोचा कि अब आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, अभी
1: जो
0: मैं
1: कसर रह गई
0: जो
1: है।
0: कसर रह गई है वो पूरी करनी है, अभी मैं रामोशी नहीं दिखूंगा। मुझे याद है उन्होंने वो विग से लेके, बिकॉज उनकी कंटिन्यूटी काफी सारी फिल्म्स की होती थी, अब जैसे होता है कि कलाकार एक समय पे एक ही फिल्म करते हैं तो इसलिए वो पूरी तरह से वैसे ड्रेस्डअप होते हैं, वैसे नहीं हुआ करता था उस वक्त। 2 दिन इस फिल्म का शूटिंग हुआ, फिर 2 दिन उस फिल्म का हुआ, इस तरह से चलता था। तो किसी भी रोल के लिए पूरी तरह से बाल निकालना या ये पॉसिबल नहीं था। पर मुझे याद है कि जब उन्हें ब्रेक था 1 महीने का, तब पापा ने जो कोर्ट सीन्स थे स्पेशली उसके लिए ये निकाले थे, बिकॉज अमाल जी ने उन्हें कहा था कि देखो कोर्ट सीन में जब लाइटिंग होती है तो विग बहुत बुरा दिखता है।
1: हाँ
0: हाँ एग्जैक्टली, तो

0: उस समय बाल निकालकर और बाकी की फिल्मों में अगर आप देखोगे उस समय में जो शूटिंग हुए थे उसमें पापा ने विग्स पहने हुए हैं।
1: ओके
0: हाँ,
1: क्योंकि
0: तो
1: कोई रास्ता नहीं था।
0: एग्जैक्टली, पर उस समय कलाकार ऐसा नहीं करते थे, वो मैं बताना चाहती हूँ। तो ही वॉज वेरी वेरी इन्वॉल्व इन द स्क्रिप्ट, और उस समय तक पापा का जो रीडिंग था, पापा ही वॉज अ वोरेशियस रीडर, मतलब रोज वो 2-3 घंटा तो पढ़ना तो बनता ही है, किताबें पढ़ना उनका एक जरिया था। तो तब तक उन्होंने जो इतिहास के बारे में पढ़ा था, आई थिंक उसकी वजह से भी उन्हें वो करते वक्त, वो एक्टिंग करते वक्त बहुत मजा आया था, इसीलिए शायद वो उनका फेवरेट ये है कि मैं अभी प्रूव करूंगा। और वैसा लोकमान्य तिलक बाद में, हालांकि बहुत लोगों ने कोशिश की, पर जैसा राष्ट्रीय स्वराज तक में है वैसा लोकमान्य तिलक आज तक हो नहीं पाया है, वैसा लिखा भी नहीं गया है उस तरह से। तो आई थिंक इसलिए वो उनका बहुत फेवरेट कैरेक्टर रहा है।
1: दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज को आज भी लोग खोज खोज कर देखते हैं।
0: हाँ?
1: और दूरदर्शन के आर्काइव्स पर ये अभी भी देखा जा सकता है, खोज
0: करेक्ट।
1: कर अगर आप देखें
0: हाँ,
1: तो वेव्स पर शायद ये अभी
0: वेव्स
1: भी
0: पर
1: उपलब्ध
0: है।
1: है। तो
0: वेव्स पर ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है जो श्याम बाबू ने डायरेक्ट की थी।
1: उसका जिक्र करने से पहले यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: प्लीज।
1: उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो
0: राइट।
1: बताइए कि कौन सा गाना यहाँ आना
0: यहाँ पर
1: चाहिए।
0: तो मुझे ऐसे लगता है कि एक गाना है जो बिल्कुल पापा की जो सोच थी उनके समाज के प्रति, उनके देश के प्रति, वो बहुत ही सुंदर तरीके से जिस गाने में आई है वो था राजी फिल्म का, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू।
1: क्या बात है,
0: वो
1: गुलजार
0: सुनते
1: साहब
0: हैं।
1: के बोल,
0: ऑफ कोर्स
1: सुनते हैं ये गाना।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। बातचीत की श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास

0: था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
0: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। श्री वैष्णव आज जयपुर से खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने स्टोरिया फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड और बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड पर खाद्य उत्पादों के संबंध में 100% शब्द के इस्तेमाल से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने दोनों कंपनियों को अपने उत्पाद पैकेजिंग, वेबसाइटों और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस तरह के दावों को तुरंत हटाने का निर्देश भी दिया है। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। दांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ए ने 32 ओवर में 6 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। उधर मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक अपने दोनों मुकाबले जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

थोड़ी ही देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदन, और 5:30 पर सुनिएगा हमारा साप्ताहिक प्रसारण विज्ञान एवं पर्यावरण। आज के इस कार्यक्रम में आप मुख्य रूप से सुनेंगे पद्मश्री भरत सिंह भारती से अर्चना की बातचीत, संगीत मानसिक संतुष्टि के लिए है जरूरी, संदर्भ है विश्व संगीत दिवस।

संध्या 6 बजे आप भोजपुरी लोक गीत का आनंद लीजिएगा और 6:05 पर सुनिएगा पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन।

हमारे ग्रामीण श्रोता अपना प्रसारण सुनेंगे गांव घर 6:10 पर। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है प्रसून कुमार मिश्रा की वार्ता रोहतास कैमूर के दर्शनीय स्थल। अलावा इसके संक्रांति के उत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और जीवन में योग का महत्व की भी चर्चा की जाएगी। हमारे केंद्र से आप भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत सुनते हैं 6:40 पर, और संध्या 7 हम आपके लिए लिख रहेंगे प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास आप सुनते हैं 7:15 पर और 7:30 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। हम इसे रिले करते हैं। ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ई मन पसंद आप सुनते हैं 7:50 पर और 8:45 पर। दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या सुनिएगा। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा आप सुनेंगे 9:00 और गीत और गजलों की महफिल सजेगी 9:15 पर। 10:00 रस रंग के तहत हिंदी एल्बम सॉन्ग्स और 10:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। सभा का समापन होगा दिल्ली से प्रसारित समाचारों के बाद 11:10 पर। तो श्रोताओं, यह थी जानकारी हमारे केंद्र से आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की आपके लिए। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 MHz पर। वंदन, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में सबसे पहले अनुराधा पौडवाल की गाई गंगा जी की आरती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: इस संदेश के पहले आपने अनुराधा पौडवाल के स्वर में गंगा जी की आरती सुनी। अब आइए सुनते हैं एक भक्ति रचना वैभव रावल से।

काला बजरंग। अविनाश कर्ण की गई इसी रचना के साथ ही भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक प्रसारण विज्ञान एवं पर्यावरण। इस कार्यक्रम में आप मुख्य रूप से सुनेंगे पारंपरिक लोक गीतों को आदर्श रूप में रखने वाले लोक गीतों के शिखर पुरुष पद्मश्री भरत सिंह भारती से की गई आकाशवाणी सासाराम की बातचीत। संदर्भ है विश्व संगीत दिवस।

विज्ञान एवं पर्यावरण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अर्चना का नमस्कार और आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत भी। श्रोताओं, आज 21 जून है और आज का यह दिन कई मायनों में ही बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम तो आज का यह दिन वैज्ञानिक और खगोलीय दृष्टिकोण से आज का सबसे बड़ा दिन होता है। खगोल विज्ञान के अनुसार आज के दिन सूर्य पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव की ओर अपने अधिकतम झुकाव पर होता है, जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिससे आज का दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। सूर्य के पृथ्वी की ओर इस अधिकतम झुकाव को ग्रीष्म अयनांत भी कहते हैं। इसके साथ ही उत्तरी गोलार्ध में खगोलीय ग्रीष्म ऋतु की आधिकारिक शुरुआत होती है, यानी हमारे देश में इस दिन के बाद से ही मानसूनी हवाएं सक्रिय होने लगती है, जिससे वर्षा का मौसम बनना शुरू हो जाता है। श्रोताओं, आज के इस खास दिन के हिस्से में और भी बहुत

कुछ है, जैसे विश्व संगीत दिवस, विश्व पितृ दिवस, विश्व जल दिवस और इनसे भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसकी आज पूरी दुनिया में धूम मची है। आज के इस कार्यक्रम में हम इन बिंदुओं की विशद चर्चा करेंगे और साथ ही सुनिएगा इनसे संबंधित भेंट वार्ताएं। लेकिन सबसे पहले इस अंक के वैज्ञानिकों की चर्चा कर लेते हैं। इस अंक के वैज्ञानिक हैं विल्हेम लाइबनिज और उर्सुला केलर। 21 जून 1646 को जन्मे गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज एक जर्मन गणितज्ञ, दार्शनिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक के रूप में जाने जाते हैं। आइजैक न्यूटन के साथ साथ इन्हें भी बाइनरी अंक गणित और सांख्यिकी जैसे गणित की अन्य शाखाओं के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। लाइबनिज ने भौतिकी और प्रौद्योगिकी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन धारणाओं का भी पूर्वानुमान लगाया जो बाद में चिकित्सा, प्रायिकता, जीव विज्ञान, भूविज्ञान, मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान में सामने आई। 14 नवंबर 1716 को लाइबनिज का निधन हो गया। श्रोताओं, इस अंक के दूसरे वैज्ञानिक है उर्सुला केलर। 21 जून 1959 को जन्मी उर्सुला केलर एक स्विस भौतिक विज्ञानी रही हैं। उन्हें खास तौर पर मॉड लॉकिंग अल्ट्रा फास्ट सॉलिड स्टेट लेजर सिस्टम में उपयोग की जाने वाली सेमीकंडक्टर सैचुरेबल एब्जॉर्बर मिरर तकनीक के आविष्कार के लिए जाना जाता है। लेजर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उर्सुला केलर शानदार काम कर रही हैं। तो श्रोताओं, यह थी इस अंक से जुड़ी वैज्ञानिकों की संक्षिप्त चर्चा और अब एक नज़र विज्ञान से संबंधित नवीनतम खबरों पर। श्रोताओं, खबर है कि वैज्ञानिकों ने एक नई उत्प्रेरक डिजाइन विकसित की है जो कार्बन डाइऑक्साइड को मिथेनॉल जैसे महत्वपूर्ण ईंधन में बदलने की क्षमता को 3 गुना तक बढ़ा देता है। वहीं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO से आ रही खबरों में बताया गया है कि DRDO लगातार रक्षा क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। हाल ही में DRDO ने स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और भारत को मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता वाले चुनिंदा देशों के विशिष्ट समूह में शामिल किया गया है। परीक्षणों की इन श्रृंखला के दौरान DRDO ने नौसेना के लिए मध्यम दूरी की नेवल एंटी शिप मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण भी सफलतापूर्वक किया गया। इतना ही नहीं, DRDO ने हाल ही में स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का भी सफल परीक्षण किया। 350 किलोमीटर की रेंज वाली यह मिसाइल दुनिया के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह करने में सक्षम है। तो श्रोताओं, यह थी विज्ञान से संबंधित नवीनतम खबरें और अब बातें आज मनाए जा रहे हैं विश्व जल विज्ञान दिवस की, जिसका उद्देश्य जल विज्ञानियों के कार्यों और समुद्री तटीय विकास पर्यावरण संरक्षण में जल विज्ञान के महत्व को रेखांकित करना। इसे अंतर्राष्ट्रीय जल वैज्ञानिक संगठन IHO द्वारा स्थापित और लागू किया गया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना सहित दुनिया भर के संगठन जागरूकता कार्यक्रम और तकनीकी प्रदर्शन आयोजित करते हैं। मुख्य रूप से इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समुद्री मानचित्रण और जल के वैज्ञानिक सर्वेक्षण में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। श्रोताओं, अब बातें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की कर लेते हैं। इस वर्ष के इस दिवस का थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, यानी योग फॉर एजिंग। यह थीम बढ़ती उम्र के लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय, स्वतंत्र और मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने में योग की भूमिका पर केंद्रित है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस खास

0: मौके पर कोलकाता में मुख्य आयोजन के साथ साथ संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश भर के 100 प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्थलों पर विशेष योगा सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। 13 जून से 20 जून तक गंगोत्री से गंगा सागर गंगा तट योग यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो योग को पर्यावरण संरक्षण के लिए जोड़ती है। इस अवसर पर साथ ही साथ आयुष मंत्रालय द्वारा 12 विशेष डाक टिकट जारी किए गए हैं तथा लद्दाख में सियाचिन बेस कैंप और पैगोंग झील जैसी ऊंचाई वाली जगहों पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। लेकिन श्रोताओं, योग दिवस की सार्थकता इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करने में है। इसके लिए हम और आप आयुष मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल या ऐप माई भारत के माध्यम से योग सीखने में मदद प्राप्त कर सकते हैं। अतः स्वस्थ और निरोगी काया के लिए हम रोज सुबह केवल 20 से 30 मिनट का समय निकालें और अनुलोम विलोम तथा भ्रामरी जैसे प्राणायाम करें। साथ ही तड़ासन एवं वृक्षासन जैसे सुलभ आसन भी सीखें। मन और तन तंदुरुस्त बना रहेगा। श्रोताओं, विश्व पितृ दिवस हर साल जून महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। आज हम विश्व पितृ दिवस भी मना रहे हैं। श्रोताओं, कहते हैं पिता का साया सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कवच है। पिता बच्चों के जीवन में मजबूत नींव रखकर उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि अपने उत्तम चरित्र और नैतिक बल से वे राष्ट्र को समृद्धशाली और वैभवशाली बना सके। कहते हैं पिता अमूमन अपनी भावनाएं और आंसू जाहिर नहीं करते, लेकिन उनका साया ही जीवन का सबसे बड़ा संबल है। अतः पितृ देवो भव, पिता देवता सदृश हो हमारे लिए। श्रोताओं, अब चलते चलते बात आज ही मनाए जा रहे हैं विश्व संगीत दिवस की। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों को संगीत के माध्यम से जोड़ना, शांति और भाईचारे को बढ़ावा देना और सभी को मुफ्त संगीत का आनंद देने के लिए प्रेरित करना। यह दिवस अपने देश के साथ साथ दुनिया के लगभग 120 से अधिक देशों में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 1982 में फ्रांस में हुई थी और धीरे धीरे संगीत के महत्व को देखते हुए इसे मनाने का चलन दुनिया भर में फैलता चला गया। इस दिवस को और भी खास बनाने के लिए श्रोताओं आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रख्यात लोकगीत गायक पद्मश्री भरत सिंह भारती। भरत सिंह भारती जी, सबसे पहले आपको पद्म पुरस्कार प्राप्त करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: चलिए अब शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। पद्मश्री भरत सिंह भारती जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि गायन की शुरुआती दिनों से पद्मश्री पाने तक की यात्रा कैसी रही, हमारे श्रोताओं के साथ अपने अनुभव साझा करें।
1: सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं को, आपको भी नमन वंदन अभिनंदन करते हुए मैं प्रश्न पर आ रहा हूँ। संगीत एक ऐसी विधा है जिस विधा को संसार का ऐसा भी कोई प्राणी नहीं है जो जिसे पसंद न हो। हर लोग इसे पसंद करते हैं, इसकी मीठी सुर, मीठी भावना, हर तरह की जो मिठास है, किसको पसंद नहीं है। सभी चाहते हैं कि वो सुर भैरी बराबर कान में आवे और वो सुमधुर ध्वनि सुनते रहें, आनंद की लहर में डूबते रहें। शुरू से ही मैं इसी धुनों पर, इसी सुर की लहरियों पर मैं भी संगीत से अपना पूरा लगाव बना दिया। संगीत का शुरुआत मैंने गांव के ही संगीत के कीर्तन मंडली से लिया
0: जी।
1: उस समय संगीत का ऐसा दौर था जो कहीं स्वच्छ संगीत

0: और विकसित संगीत या और भी शास्त्रीय संगीत, इस तरह का बहुत कम माहौल मिलता था। लेकिन गांव में वही कीर्तन मंडली जो थी, तो अपनी रागों में अलाप कर और अपनी आनंद में डूब कर संगीत में सराबोर होती थी। हमें भी अच्छा लगा और उसी क्रम में जहाँ जहाँ कीर्तन मंडली का अपना कार्यक्रम होता,
1: जी
0: अलग से मैं सुन करके जो ही कान मन की आवाज़ पड़ती, चाहे मैं जिस दशा में रहा हूँ और जैसे हूँ, लेकिन कान में ये आवाज़ पड़ते हुए मैं वहाँ पहुँच जाता था। ऐसी जुनून हो गई मुझे,
1: जी
0: तो अच्छा लगा। और उसी क्रम में धीरे धीरे मैं रुझान में आ गया उसका, और संगीत की इच्छा हुई। जब संगीत कुछ हम भी उसका विद्यार्थी बने, सुने, सीखें और आत्मसात करें।
1: जी भारती जी,
0: जी
1: विश्व संगीत दिवस है,
0: जी
1: तो अब हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे
0: जी
1: कि संगीत का हमारे जीवन में कितना महत्व है।
0: संगीत से हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि
1: जी
0: दो ही ऐसी विधा है जो अगर जीवन में न रहे तो वह जीवन शुष्क हो जाता है, निरस हो जाता है, कुछ सरसता नहीं रहती है और जीवन का आनंद मिट जाता है। वो है, पहला तो है साहित्य और दूसरा है संगीत। साहित्य, जब साहित्य से जुड़ाव अगर हमारा रहता है, तो हर तरह से जीवन को आगे विकास की ओर उन्मुख होते हैं और हमारा भाषा सुदृढ़ रहता है। हम अपनी भाषा में हर जगह अपनी बात कर सकते हैं और करते हैं, ये उसकी प्रक्रिया है। ये संगीत अकेले नहीं है, अपने में तीन विधाओं को समाहित किए हुए है, गीत, वाद्य और नृत्य, तीनों मिलाकर तब वो संगीत की संज्ञा उसे मिलती है।
1: जी
0: तो कहा भी गया है कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम संगीतम प्रमुच्यते। ये तीनों विधाओं को मिलाकर के संगीत पूर्णता की ओर आती है, और पूर्णता है उसका। जब तीनों विधा आ जाती है तो संगीत का पूरा आनंद मिलता है और जोर आनंद से लबालब भर जाता है। नृत्य की ऐसी विधा है कि किसे नहीं अच्छा लगता है, कौन नहीं नृत्य का धुन में नाचने लगता है। नृत्य जब देखता है तो मन उसका आनंद से भर जाता है और खिलखिलाता है, वो भी नाचने लगता है। गीत है, गीत की लहर जब सुनता है तो उसको भी जुनून शरार हो जाती है, किसी किसी तरह से हम भी इसी तरह से गाएं और संगीत का आनंद लें। वाद्य है, वो भी इतना लुभावना है, इतना देखने में सुनने में इतना कान को अच्छा लगता है, चाहता है कान के बराबर अच्छी अगर कहीं तबला बज रही है, अच्छा कहीं बांसुरी बज रहा है या और संगीत में सितार बज रहा है, और भी वाद्य यंत्र हैं जो अच्छे ढंग से जब बजते हैं तो सचमुच हृदय वो जीत लेता है और उसी में हम रमने लगते हैं, एकदम लय हो जाते हैं।
1: जी
0: तो ये संगीत की विधा हुई, और सब कोई चाहे वो कोई भी दिवस हो।
1: जी भरत सिंह भारती जी,
0: जी
1: आपने लोकगीत गायन में अपनी विशिष्ट जगह बनाई है।
0: जी
1: बदलते वक्त के साथ कितना बदल गया है लोकगीत गायन का स्वरूप।
0: पहले का जो संगीत था, जो जिसका कोई लिखित गीत नहीं था, जो कुछ भी पहले हम गीत गाते थे, सुनते थे और गाते थे, लेखन क्रिया नहीं थी, तो उसमें कभी कभी गीत भूल जाते थे लोग, तो गंदी चीजों भी मिल जाती थी, तो बिखराव भी हो जाता था संगीत का। और आज का जो संगीत है, हमारा समाज बहुत स्वतंत्रता के बाद से समाज बहुत विकास की ओर उन्मुख हुआ है, शिक्षा की पराकाष्ठा तक तो पहुंच रहा है लोग, अब साक्षर कहानी के लायक हो गए हैं लोग, और शिक्षा

0: जो बराबर सबका ध्यान रहता है, हर गार्जियन चाहता है कि हमारा लड़का शिक्षा में अग्रसर हो, अच्छा करे। ऐसी हालत में हमारा संगीत भी पीछे नहीं है। जब हमारा शिक्षा का स्तर बढ़ा है तो संगीत का भी दशा दिशा बदल गई है।
1: जी श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं पद्मश्री भरत सिंह भारती से अर्चना की बातचीत। भरत जी, लोक
0: जी
1: संगीत के गायकों के लिए शास्त्रीय संगीत कितना जरूरी है?
0: एक ऐसी संगीत ऐसी विधा है जो आप पहले ही सुन चुकी हैं कि ये तीन भागों में बटा है, ये भी तीन भाग, और गायन भी तीन भागों में बटा है। शास्त्रीय
1: जी
0: संगीत है, सुगम संगीत है, लोक संगीत है।
1: जी
0: तो लोक संगीत तो हमारी हृदय की भावना प्रस्फुटित होती है, वही लोकगीत रूप में उतर जाती है लोगों के समक्ष। और शास्त्रीय संगीत जो हमारी परंपरा से आ रही है, परंपरा संगीत की वो पद्धति है जो हमारे ऋषि मुनियों ने, संगीतज्ञों ने बचा करके रखा है, और उसको शिष्य बना करके और उसको वितरित करते हैं।
1: जी
0: तो बहुत विद्यालय भी खुल चुके हैं, महाविद्यालय भी बन चुके हैं, संगीत शिक्षा का बहुत बड़ा स्रोत उभर आया है और अच्छे तरह से ढंग सीख रहे हैं। लेकिन उस वक्त, जिस वक्त सिर्फ शिष्य परंपरा ही थी, गुरु और शिष्य एकजुट मिल करके जो कहते थे, स्वर सिखाते थे, उस स्वर अपने कंठ में उतार देता था शिष्य, और उस तरह से संगीत की मतलब उसके पास वो निधि खजाना आ जाता था। तो उस तरह से जब हमारा संगीत बचा करके रखा गया था और आज वो परिष्कृत हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है।
1: जी इसी बात पे भारती जी, एक छोटा सा देशभक्ति गीत सुना दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए।
0: जी, जहां लहरे तिरंगा आसमान, हमारे जैसा हुए हिंदुस्तान।
1: वाह
0: मैंने ही लिखा है,
1: जी,
0: स्वरबद्ध भी किया है, और बहुत सारे मंचों से इसकी प्रस्तुति भी हो चुकी है। जहां लहरे तिरंगा आसमान, जहां लहरे तिरंगा आसमान, हमारे देश सवाई हुए हिंदुस्तान, हमर देश सवाई हुए हिंदुस्तान। जहाँ लहरे तिरंगा आसमान, हमर देश सवाई हुए हिंदुस्तान।
1: वाह क्या बात है।
0: जहाँ गीता रामायण की, जहाँ गीता रामायण के आरती आरती सजल, जहाँ पुरखा पुरनियन के मुँह, जहाँ पुरखा पुरनियन के मुँह मुक्ति मिलल। इसका और एक कड़ी है, जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रहे आपस में मिलजुल के भाई भाई, मिल रहे आपस में मिलजुल के भाई भाई। जहाँ कुंवर के लहरे निशान, जहाँ कुंवर के फहरे निशान, हमारे देश सवाई हुए हिंदुस्तान, हमारे सवाई हुए हिंदुस्तान। जहाँ लहरे तिरंगा आसमान, हमारे देश सवाई हुए हिंदुस्तान।
1: वाह क्या बात है भरत सिंह भारती जी। अब अंत में विश्व संगीत दिवस के अवसर पर
0: जी
1: नवोदित कलाकारों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
0: नवोदित कलाकारों को मैं यही सलाह दूंगा कि जो इस विधा में अपने को जो समर्पण कर रहे हैं, अपने को ला रहे हैं, दूरी इससे नजदीक बना रहे हैं, उन्हें चाहिए कि कम से कम परिश्रम करें। जहाँ साधना है वहीं संगीत है।
1: जी।
0: अगर साधना नहीं है तो सिर्फ सुन करके और देख कर

0: नहीं हो सकता है,
1: जी
0: साधना करने की जरूरत है। और साधक जब बन जाएगा तो साधना से उसकी संगीत संवरेगी और रोज कुछ न कुछ उसका दिनानुदिन विकास होते रहेगा। एक दिन अच्छा संगीतज्ञ बन जाएगा वो, जो बहुत बड़ा वो नाम करेगा।
1: जी
0: और इसमें धैर्य रखने की जरूरत है।
1: जी
0: सिर्फ संगीत दूसरे को देख करके और कर ले कि हम अब कर रहे करेंगे, इसे नहीं होगा। उसमें साधन का पूरी तन्मयता से उसके उस पर उसका ध्यान होना चाहिए और लगन होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, तब जाकर वो संगीतज्ञ बनेगा और नाम करेगा वो।
1: जी पद्मश्री भरत सिंह भारती जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए अपना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।

श्रोताओं, हमारे देश में संगीत की समृद्ध परंपरा रही है। संगीत के घराने आज भी फल फूल रहे हैं, बंगाल हो या काशी, तमिलनाडु हो या उड़ीसा। संगीत की सुरलहरियाँ भारतीय फिजा को हमेशा से ही सुहासित करती रही हैं।

0: श्रोताओं, आज का हमारा यह अंक कैसा लगा अवश्य लिख भेजिएगा। हमारा पता है, कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। तो अब इसी के साथ अर्चना लेती है विदा। नमस्कार। स्वर संकलन अर्चना कुमारी, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
1: विज्ञान एवं पर्यावरण, अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक प्रसारण।
2: बोल बोल के थक गया।
3: क्या हुआ?
2: नया किडबैग चाहिए।
3: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
2: चले
3: ले, आ गया नया किडबैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।

0: न्याय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: और अब इसी के साथ ही विज्ञान एवं पर्यावरण कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। लीजिए सुनिए लोकगीत।

अभी आप आशा भिवाकर की आवाज में यह लोकगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आज के 6:10 पर प्रसारित गांव घर कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रसून कुमार मिश्रा की वार्ता रोहतास कैमूर के दर्शनीय स्थल। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी समाचार बुलेटिन की, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

प्रणाम, ये आकाशवाणी के पटना केंद्र है। अब रउआ अनिकेत कुमार पाठक से भोजपुरी में समाचार सुनी। देश भर में आजू 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनावल गई। इस साल के थीम बा बढ़ती उम्र के असर के रोके खातिर योग। योग दिवस के मुख्य आयोजन आजू भोरे पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता के रेड रोड पर कैल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के अगुवाई कैले। इस मौका पर प्रधानमंत्री तड़ासन, अर्धचक्रासन, भद्रासन, त्रिकोणासन समेत कई गो योग मुद्रा के अभ्यास कैलन। पीएम मोदी हुआ जुटल लोगन के संबोधित करत कहलन कि योग आज दुनिया के सबसे बड़ सामुदायिक उत्सव बन गई बा। प्रधानमंत्री योग के शारीरिक और मानसिक शांति पावे के एगो बेहतरीन साधन बतौलन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल भइलिन। उ लोगन से योग के आपन दिनचर्या में शामिल करे के अपील कैलिन। राष्ट्रपति कहलिन कि योग बढ़ती उम्र में भी इंसान के फुर्तीला और आत्मनिर्भर बनावे में मदद करेला। उ कहलिन कि पिछला 12 साल में दुनिया के भलाई खातिर योग पत्ति में एगो मजबूत माध्यम के रूप में उभरल बा। ओहिजा राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन लोक भवन में आयोजित योग शिविर में हिस्सा लेले और प्रदेश के लोगन के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बधाई दिलन। राजधानी पटना समेत बिहार के अलग अलग जगहन पर योग दिवस के मौका पर योग

0: शिविर और योगाभ्यास के आयोजन कैल गेल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित शिविर में हिस्सा लेलन। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और रामनाथ ठाकुर, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार समेत भारी संख्या में गणमान्य लोग योगाभ्यास कैलन। पटना हाईकोर्ट और कई गो स्कूल कॉलेज में भी सामूहिक योगाभ्यास भइल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी घोषणा कैले बाड़े कि अगला साल से बिहार के स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में योग के शामिल कैल जाए। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में उकहलन कि योग के हर घर तक पहुंचावे खातिर ई कदम उठावल जा रहल बा। एकरा से पहले स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार मुख्यमंत्री से योग के आधा घंटा खातिर वैकल्पिक तौर पर सिलेबस में शामिल करे के निहोरा कैलन। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा आजू देश भर के नीट UG के दोबारा परीक्षा करवावल गई। ई परीक्षा मेडिकल कोर्स में एडमिशन खातिर देश के 551 और विदेश के 14 शहर में भइल रहे। परीक्षा में 22,79,000 से बेसी छात्र शामिल भइलन। एने प्रदेश के 34 जिला में 331 सेंटर पर नीट परीक्षा भइल। कदाचार रोके खातिर सरकार पुख्ता इंतजाम कैले रहे। पटना के बापू परीक्षा भवन के तरफ से विशेष ट्रैफिक व्यवस्था और वन वे लागू कैल गेल रहे। छात्रन के आवे जाए में दिक्कत ना होखे ए खातिर परिवहन विभाग विशेष बस और रेल 7 गो स्पेशल ट्रेन चलावले रहे। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के बैठक आजू पटना में पार्टी दफ्तर में भइल। ए बैठक में राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दा पर चर्चा भइल। बैठक में पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी समेत कई गो मंत्री और विधायक लोग शामिल भइले। समस्तीपुर के रहे वाला युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज और शतक बनावे के विश्व रिकॉर्ड रच देले बाड़े। वैभव दाम्बुला में खेलल जा रहल त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में आज श्रीलंका ए के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाजी करत मात्र 11 गेंद में और शतक जड़ देले। एह पारी में उ 5 गो चौका और 5 गो छक्का मारले। वैभव कुल 29 गेंद में 94 रन के ताबड़तोड़ पारी खेलले। इहां भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर वैभव के तारीफ करत कहलन कि भारत के अगला स्टार मिल गइल बा। उ कहलन कि आवे वाला दिन में इ खिलाड़ी और कई गो बड़ रिकॉर्ड तोड़ी। प्रदेश के दक्षिण पश्चिम मानसून खातिर बढ़िया माहौल बन गइल बा। मौसम विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक मानसून के एगो टर्फ रेखा राज्य के जमुई और मुजफ्फरपुर के होके गुजर रहल बिया, जेकरा असर से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सा में तेज हवा के साथे पानी बरसे के संभावना बा। एह बीच राज्य के दक्षिण पश्चिम इलाका में कई जगहन पर आंधी पानी आ सकेला। एने प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में गर्मी के प्रकोप जारी बा। बढ़ते गर्मी के देख भोजपुर जिला प्रशासन कक्षा 8 तक के सब स्कूलन में 24 जून तक पढ़ाई लिखाई के काम पर रोक लगा देले बा। जिला अधिकारी तनय सुल्तानिया अपन आदेश में कहले बाड़े कि एह बीच कक्षा 9 से 12वीं तक के पढ़ाई भोरे सिर्फ 11 बजे तक ही कैल जाए। एकरे साथे आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के अंक एहिजा समाप्त भइल।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का प्रसारण गांव घर।

गांव घर कार्यक्रम सुनने वाला सब श्रोता भाई बहन के सुमन भाई के ओर से प्रणाम। श्रोता भाई बहन, आज विश्व योग दिवस है। दुनिया भर के लोग समूह में घर पर योग करके संदेश दिला हवन कि अगर स्वस्थ जीवन जीवे

के बा, लंबा जीवन रखे के बा, सुखी जीवन रखे के बा, तो योग के कोई विकल्प नहीं है। योग ऐसा साधना है

0: धरती कहे पुकार के फिल्म के इसी गीत के साथ ही भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल।
1: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रद्धा आईवीएफ भिकना पहाड़ी पटना 4।
2: नमस्कार, मैं हूं राजेश और ममता का आंचल ये कार्यक्रम लेकर एक बार फिर से रविवार का दिन है आ गया। पहले ये कार्यक्रम आप शनिवार को सुना करते थे, लेकिन अब रविवार के दिन हमारा ये कार्यक्रम जिस वक्त आप सुन रहे हैं अपने आकाशवाणी केंद्र से उसी समय प्रसारित होगा। हम लगातार वैसे दंपतियों के लिए बात करते हैं ममता के आंचल में, जिसको शादी के 2-3-4 साल हो गए लेकिन अभी भी बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं होने का बहुत बड़ा कारण नहीं हो सकता, एक छोटी सी बीमारी हो सकती है, और इसके लिए हम डॉक्टर श्रद्धा चखियार विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, इनके साथ बातचीत करते हैं और समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। हालांकि आईवीएफ पद्धति से बच्चा प्राप्त किया जा सकता है और अब कोई ये नई विधि भी नहीं है, आजमाया जा चुका है और इसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। हाँ, एक बार मुझे याद आ रहा है डॉक्टर श्रद्धा ने कहा था कि 10 में से 6-7 लोग सफल हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम डॉक्टर श्रद्धा को बुलाएं, उससे पहले आपको बताएं कि श्रद्धा आईवीएफ एंड मेटर्निटी की तरफ से जो पटना के भिकना पहाड़ी मोड़ पे है ये कार्यक्रम लेकर आते हैं, और डॉक्टर श्रद्धा का नंबर है 9162562266। धीरे धीरे 9162562266 धीरे धीरे ये जो नंबर बताया हमने ना बुजुर्गों के लिए कि आराम से सुनिए और अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए कि अगर बच्चा नहीं है तो कोई परेशान ना हो, कम से कम ताना तो नहीं मारिए और डॉक्टर से मिलवाने की कोशिश कीजिए। बहरहाल डॉक्टर श्रद्धा बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में।
3: नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं।
2: नमस्कार हो गया, जो बातें हुई आपने सुनी है। सबसे पहले एक चीज बताइए डॉक्टर श्रद्धा कि प्रेगनेंसी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, एक स्पर्म या यूट्रस?
3: राजेश जी, एक जरूरी है,
2: हाँ,
3: स्पर्म भी जरूरी है,
2: हाँ,
3: यूट्रस भी जरूरी है।
2: अच्छा, तीनों चीज जरूरी,
3: लेकिन
2: हाँ,
3: नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए एक और चीज है जो बहुत जरूरी है।
2: वो क्या?
3: और बहुत नाजुक है,
2: हाँ,
3: वो है फेलोपियन ट्यूब।
2: अच्छा,
3: इसे हम लोग बच्चेदानी की नली भी कहते हैं। सोचिए, हर महीना औरत के अंडाशय से एक अंडा फूटता है
2: जी,
3: जिसको बच्चेदानी तक जाना होता है।
2: हाँ,
3: तो वो अंडा जो है वो अपने से चलकर नहीं जाता है।
2: हाँ,
3: बच्चेदानी का जो नली होता है
2: जी,
3: उसमें एक उंगली नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको फिम्ब्रिया कहते हैं।
2: उंगली नुमा?
3: हाँ,
2: हाँ,
3: ये बहुत ही प्यार से अंडे को पकड़ता है, उसी तरह से जिस तरह से माँ अपने बच्चे को गोद में ले उठाती है।
2: अरे वाह।
3: और ये जो फिम्ब्रिया है,
2: हाँ,
3: ये उस नली में डालता है अंडे को, और तभी अंडा और स्पर्म,
2: हाँ,
3: उस नली में मिलता है, दोनों मिल करके भ्रूण बनता है और भ्रूण बन करके बच्चेदानी में आता है।
2: जी जी।
3: यानी कि एक चीज जिसके बारे में हम लोग अक्सर नहीं बात करते हैं,
2: हाँ हाँ,
3: वो है ट्यूब या बच्चेदानी की नली, और ये नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि फेलोपियन ट्यूब को एक हम लोग साइलेंट ब्रिज भी कह सकते हैं, जो बच्चेदानी को अंडे से और स्पर्म से जोड़ती है।
2: जी, बहुत बड़ी बात आपने चौथी चीज बताई है, और हमारे सामने एक सवाल आ रहा है और हम पूछ ही लेते हैं, लेकिन जवाब चाहेंगे दो बातें हम कर लें, लोगों को एक बार फिर से नंबर बता दें उसके बाद कि आफ्टर ऑल डॉक्टर श्रद्धा ट्यूब ब्लॉक क्यों होती है?
3: बहुत जरूरी सवाल है ये जानना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका नली ब्लॉक होता है और उनको बच्चा नहीं ठहर पाता है।
2: एक मिनट, हम एक बार नंबर बता दें आपका।
3: बिल्कुल,
2: आज बहुत इम्पोर्टेंट बातें हो रही हैं, ध्यान से सुनने की जरूरत है, और कहीं भी ऐसा लगे तो तुरंत डॉक्टर श्रद्धा से, न राजेश है न कोई और, आप होंगे और डॉक्टर श्रद्धा होंगी, बात कर लीजिएगा। नंबर है 9162

0: 5622669162562266। बड़े बुजुर्गों, आप भी ध्यान से सुनिए कि आफ्टर ऑल ट्यूब ब्लॉक क्यों होती है, बताइए।
1: बच्चेदानी का नली का ब्लॉक होने का बहुत सारा कारण होता है, और सबसे कॉमन कारण जो होता है वो होता है पुराना इन्फेक्शन।
0: जी,
1: कभी औरत को कोई इन्फेक्शन हो गया हो, खासकर एसटीआईज जो होता है, वो क्या होता करता है कि जो नली होती है उसमें जाके जम जाता है और धीरे धीरे ट्यूब को ब्लॉक कर देता है।
0: जी।
1: औरत को पता भी नहीं चलता है, उसका मासिक ठीक हो रहा होता है, उसको कुछ दर्द वगैरह भी नहीं होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इन्फेक्शन जो है वो नली को ब्लॉक कर देता है। और भी कारण है ट्यूब ब्लॉक होने का, जब जैसे बच्चेदानी का जो अंदर का परत होता है वो भी नली को ब्लॉक कर देता है। कभी कभी पहले से कोई सर्जरी हुआ हो, या कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो कि जानलेवा होता है, वो ट्यूब में अगर जाके फंस जाता है तो ट्यूब काटना पड़ता है, वो ऑपरेशन होता है, वो सब भी कारण है जिससे नली ब्लॉक हो जाता है। कभी कभी हाइड्रोसेल्फिंग्स जो कि इन्फेक्शन के कारण होता है, या कोई सर्जरी बार बार किसी को बच्चेदानी का ये सिजेरियन हो रहा है, ये सारे भी कारण है जिसके कारण नली ब्लॉकेज हो जाता है। तो बहुत जरूरी है जानना वैसे दंपति के लिए जो बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं और बच्चा नहीं ठहर पा रहा है। खासकर मैं वैसे दंपति को बताना चाहती हूँ जो पिछले एक साल से कोशिश कर रहे हैं और बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, तो उन वो इसका मतलब है कि वो निसंतानता से जूझ रहे हैं। जरूरी है कि एक डॉक्टर से मिले और अपना जांच कराएं, ताकि पता चले बीमारी कहाँ है और क्या इलाज कराएं ताकि बच्चा ठहर जाए।
0: बिल्कुल सही कहा, ये पता चलना बहुत जरूरी है डॉक्टर श्रद्धा कि बीमारी आफ्टर ऑल है क्या। लिसनर, सुनने वालों, आपके लिए कितनी गहन बातें हो रही है, और इसका सिर्फ एक मकसद है कि आपके घर में, आपके गोद में बच्चा आए, और बच्चा ना होना बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जरूरत है कि कारण को खोजा जाए, सही डॉक्टर के पास जाया जाए और उनकी सलाह ली जाए। ये बातें जो डॉक्टर श्रद्धा भी बता रही है ना, बहुत मायने की है। अगर आपको इस पर कुछ बातें पूछनी हो डॉक्टर श्रद्धा से, तो नंबर है डॉक्टर श्रद्धा का 9162562266 9162562266, ये नंबर है। कहीं से संकोच नहीं कीजिए। महिलाएं, अब तो आपके हाथ में भी फोन है, पुरुष अगर नहीं सुनते हैं, पति नहीं सुनते हैं, तो आप खुद से डॉक्टर साहिबा से बात कर सकती हैं, बात करवा सकती हैं। बड़े बुजुर्ग आपके लिए भी बहुत जरूरी है। रही बात पैसे की, तो उसकी चिंता भी नहीं करनी है। श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी, जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम चला रहे हैं, और जो कह रहे हैं अब संकोच नहीं बोलने का वक्त आ गया है, यहाँ पैसे की कोई समस्या नहीं है। 24 महीने में आप पैसा दे सकते हैं इंस्टॉलमेंट पर। और अगर आप आके कहिएगा कि ये ममता का आंचल सुनकर आ रहे हैं, तो पहला अल्ट्रासाउंड फ्री, पहला कंसल्टेंसी फ्री, उसके अलावा जो आप हॉस्पिटल में अगर रहना पड़ा तो अटेंडेंट का रहना फ्री, बहुत सारी चीजें जो है वो फ्री में आपको हो जाएंगी। और मकसद एक ही है कि आपके घर में बच्चा हो। बहरहाल, एक सवाल आया था, हम पूछना चाहते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो।
1: बिल्कुल पूछिए।
0: किसी ने फोन किया था कि इनकी पत्नी की नसबंदी हो चुकी है, बंध्याकरण हो चुका है, क्या वो फिर से प्रेग्नेंट हो सकती है क्या?
1: बिल्कुल, मेरे पास भी ऐसे मरीज आते हैं, खासकर वैसे दंपति जिनको पहले से बच्चा होता है और फिर वो बच्चेदानी का बंदी करा लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश कोई बच्चा नहीं रहता है
0: जी
1: उसमें से, तो वो या दोनों बच्चा नहीं रहा,
0: हाँ।
1: तो वो दुखी होकर के आते हैं,
0: हाँ।
1: तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, बिल्कुल उन वैसे लोगों को बच्चा ठहर सकता है,
0: हाँ।
1: क्योंकि बंध्याकरण में जो हम लोग करते हैं वो सिर्फ इसी ट्यूब नली को काटते हैं
0: जी,
1: यानी कि औरत का अंडा और शुक्राणु नहीं मिले। ये बहुत ही सक्सेसफुल तरीका है बंध्याकरण का, पॉपुलेशन कंट्रोल का। लेकिन इस जो लोग ये करा चुके हैं उनको भी बच्चा ठहर सकता है, उनको बच्चा ठहर सकता है या तो IVF से या रिवर्सल सर्जरी से।
0: वाह वाह, क्या जानकारी दी है। IVF करा लें तो बच्चा ठहर जाएगा?
1: बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जो ट्यूब जो लाइगेशन होता है उसमें सिर्फ ट्यूब काटते, यानी कि वो जगह जहां अंडा और शुक्राणु मिलता है। तो IVF में हम लोग क्या करते हैं, औरत से अंडा निकालते हैं, पुरुष का शुक्राणु मिलाते हैं अपने IVF लैब में
0: जी जी,
1: और जो काम उस नली में होना था वो हम लोग अपने IVF लैब में करते हैं, यानी कि भ्रूण तैयार।

0: तैयार कर लेते हैं और वो तैयार करके औरत के अंदर डाल देते हैं। और ये बहुत सक्सेसफुल पद्धति है ऐसे लोगों के लिए जिनका बंध्याकरण हो चुका है और दोबारा से बच्चा ठहर सकता है।
1: लीजिए, अब ये भी जानकारी मिल गई कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि बंध्याकरण हो चुका, नसबंदी हो चुकी, अब बच्चा नहीं हो सकता है, किसी कारण से आपके यहाँ बच्चा था आज नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए डॉक्टर श्रद्धा ने कितनी सही बात और सही जानकारी दी। सब मर्ज का एक इलाज है IVF, बस सही डॉक्टर के पास पहुंचना है। और हम बातें कर रहे हैं IVF विशेषज्ञ डॉक्टर श्रद्धा चकहियार से और ये कार्यक्रम हम आपके घर आंगन में लेकर आ रहे हैं श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी की तरफ से, जो कि पटना के भिखना पहाड़ी मोड़ पटना में है। अब इससे ज्यादा हम क्या बोलें, नंबर बताए देते हैं, सीधे सीधे बात कीजिएगा 9162562266 9162562266। और जो लोग हमारे इस कार्यक्रम को इंतजार कर रहे हैं अभी भी शनिवार को ना, तो आप जो लोग सुन रहे हैं ना उन्हें जानकारी पहुंचा दीजिएगा। बहरहाल लौटते हैं ट्यूब की तरफ एक बार फिर से, है ना। ये कैसे पता चलेगा कि ट्यूब जाम है?
0: ट्यूब जाम है इसके लिए कुछ जांच होते हैं।
1: हाँ।
0: सबसे आसान जांच जो होता है वो होता है HSG।
1: जी।
0: ये काफी कम दाम में हो जाने वाला जांच होता है।
1: हाँ।
0: इसमें औरत को लिटाया जाता है, बच्चेदानी के रास्ते से डाई डालते हैं, एक्सरे हाँ। करते हैं हाँ। और ट्यूब बंद है कि खुला है पता हाँ। चल जाता है।
1: हाँ।
0: अदर जो और जो चीज कर सकते हैं वो हाइकोजी कर सकते हैं या लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, अगर सिर्फ ये जानना है कि ट्यूब ठीक है कि नहीं
1: हाँ।
0: उसके लिए HSG या हाइकोजी ही पर्याप्त होता है। दूरबीन जैसा चीज से ट्यूब ठीक है कि नहीं वो जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक तो ये सर्जरी है और काफी महंगा भी हो जाता है।
1: हाँ।
0: और उसके बाद जो भी, अगर आपका ट्यूब ठीक है तो आप, बसरते आपका बाकी सब ठीक हो, तो आप अपने आप से भी कोशिश कर सकते हैं, आपको बच्चा ठहर जाएगा। लेकिन जिन लोगों का ट्यूब ब्लॉक है,
1: हाँ।
0: एक जमाना था जब किसी औरत का ट्यूब ब्लॉक होता था तो डॉक्टर कहते थे उनको बच्चा नहीं ठहर सकता है।
1: जी।
0: लेकिन अब जमाना बदल गया है, विज्ञान बहुत आगे जा चुकी है। जिस भी औरत का नली ब्लॉक है उनको उम्मीद नहीं खोना चाहिए, उनके लिए एक बहुत सक्सेसफुल पद्धति है IVF, और IVF से ऐसे लोगों को आराम से बच्चा ठहरता है। राजेश जी, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि दुनिया में पहला IVF का जो आविष्कार हुआ
1: जी,
0: था
1: जी, जी।
0: वो भी इसी का 1978 में हुआ था। वो भी इसीलिए हुआ था कि औरत का ट्यूब में ब्लॉकेज था और IVF से उन्हें पहला बच्चा प्राप्त हुआ। मतलब दुनिया की पहली बच्ची लुईस ब्राउन 1978 में आई IVF से
1: हाँ।
0: क्योंकि उसकी माँ का ट्यूब ब्लॉक था। और अच्छी बात यह है कि आज लुईस ब्राउन को अपना बच्चा हो चुका है
1: हाँ।
0: और उसे कोई IVF की जरूरत नहीं पड़ी।
1: क्या बात है, नॉर्मल,
0: बिल्कुल नॉर्मल।
1: अच्छा, कहें कि अगर छोटा सा कुछ आप टिप दे दीजिए जिससे कि खुद से इलाज करें, या इलाज क्या है इसका?
0: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इन्फेक्शन सबसे बड़ा कारण होता है ट्यूब में ब्लॉकेज का। इसलिए हर इंसान को मैं ये कहती हूँ इन्फेक्शन से दूर रहें, यानी कि अगर कभी इन्फेक्शन होता है तो सही दवाई लें, डॉक्टर से मिलें, अपना अच्छा खान पान करें ताकि आपके शरीर में जो इम्यूनिटी, जिसको कहते हैं कि कीटाणु से लड़ने की जो ताकत
1: हाँ, हाँ।
0: उसको मेंटेन करें। उसके लिए अपना अच्छा खाना पीना खाएं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा इन चीजों से दूर रहें, क्योंकि इन चीजों से भी आपका जो कीटाणु से लड़ने की ताकत होती है वो घट जाती है।
1: जी, जी।
0: और अगर नली में ब्लॉक है तब ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग को बच्चा नहीं ठहर सकता, ऐसे लोग को 90% चांस है कि बच्चा ठहर सकता है, और इसके लिए IVF एक बहुत ही सफल पद्धति है।
1: IVF एक बहुत ही सफल पद्धति है। वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। बहरहाल चलने का वक्त हो गया। डॉक्टर श्रद्धा, दो बातें हम कर लें अपने सुनने वालों से कि वैसे लोग जिनको बच्चा नहीं है निराश नहीं हो, आज ढेर सारी बातें हुई हैं और उस पर अमल कीजिए, है ना। और नहीं समझ में आए तो सीधे सीधे फोन उठाइए और डॉक्टर श्रद्धा से बात कीजिए। नंबर है 9162562266 9162562266। और पैसे की चिंता तो करनी नहीं है अब, क्योंकि 24 महीने में आप पैसा श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी में दे सकते हैं। IVF बहुत ही सफल तरीका है बच्चा प्राप्त करने का, और डॉक्टर श्रद्धा IVF विशेषज्ञ हैं। चलते हैं फिर से अगले रविवार को मुलाकात होगी आपके फोन कॉल।

0: आएंगे उसके जवाब लेकर आऊंगा डॉक्टर श्रद्धा के साथ। राजेश और डॉक्टर श्रद्धा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
2: ममता का आंचल, अभी आपने यह प्रायोजित कार्यक्रम सुना। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

जिला प्रशासन कैमूर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर प्रातः 5 बजे अमृत सरोवर दतियाओं गांव बेतरी पंचायत में योग कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आम जन के बीच योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में आचार्य कल्याण मित्रानंद अवधूत एवं उनके शिष्यों द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास कराया गया। योगाचार्य ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि नियमित योगाभ्यास शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाता है तथा व्यक्ति को तनाव मुक्त एवं ऊर्जावान जीवन जीने में सहायक होता है। जिला जनसंपर्क कार्यालय कैमूर द्वारा प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार भीषण गर्मी एवं लू को देखते हुए कैमूर में विद्यालयों के संचालन समय में किया गया बदलाव। खबर है कि कैमूर जिले में लगातार बढ़ते तापमान एवं दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी तथा लू की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिला दंडाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कैमूर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के संचालन संबंधी निर्देश निर्गत किए हैं। जारी आदेश के अनुसार प्री स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों सहित कक्षा 5 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 30 जून 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वहीं कक्षा 6 से 12 तक की शैक्षणिक गतिविधियां केवल पूर्वाह्न 11 बजे तक पर्याप्त सावधानी एवं सुरक्षा उपायों के साथ संचालित की जाएंगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में सरकारी विद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मी, नामांकन सहित अन्य गैर शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन हेतु विद्यालयों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि वे आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। दिनांक 21/6/2026 को खेल भवन न्यू स्टेडियम फजलगंज सासाराम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुश्री विनीता कुमारी द्वारा की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन, रोहतास एवं खेल विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शारीरिक शिक्षक, योग खिलाड़ी, बॉक्सिंग खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी तथा राज्य एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास

कराया गया तथा योग के शारीरिक एवं मानसिक लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित खिलाड़ियों एवं बच्चों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वास्थ्य एवं फिटनेस के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। पूरे आयोजन का वातावरण उत्साह, अनुशासन एवं ऊर्जा से परिपूर्ण रहा। अंत में सभी प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए स्वस्थ एवं निरोग समाज निर्माण के लिए योग को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। योग कार्यक्रम नवल किशोर के देख रेख में किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं, आइए सुन लेते हैं एक नगमा।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा नमस्कार। ये

आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: एक अंतराल के बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: AIR at 90.
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने संदेश में कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की घोषणा, अगले वर्ष से योग राज्य के स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नीट यूजी पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न, राज्य के 34 जिलों के 331 केंद्रों पर किया गया परीक्षा का आयोजन। और वैभव सूर्यवंशी के नाम नया विश्व रिकॉर्ड, श्रीलंका ए के खिलाफ एक दिवसीय मुकाबले में 11 गेंदों पर सबसे तेज अर्धशतक लगाया। अब समाचार विस्तार से। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज देश विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष का विषय है, बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। योग दिवस का मुख्य आयोजन आज सुबह पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वयं तारासन, अर्ध चक्रासन, भद्रासन, त्रिकोणासन सहित कई योग मुद्राओं का अभ्यास किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि योग आज दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन माना जाना चाहिए।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित योग कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने लोगों से योग को अपनी जीवन शैली में शामिल करने की अपील की है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने लोक भवन में आयोजित योग शिविर में भाग लिया और योगाभ्यास किया। इधर राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न स्थानों पर योग दिवस के अवसर पर योग शिविर और योगाभ्यास का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित शिविर में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और रामनाथ ठाकुर, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने

0: यहां योगाभ्यास किया। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से भी योग शिविर कार्यक्रम आयोजित किए गए। पटना उच्च न्यायालय में इस अवसर पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि अगले वर्ष से बिहार के स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में योग को शामिल किया जाएगा। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारत की प्राचीन और अमूल्य सांस्कृतिक विरासत है तथा स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन का आधार है। उन्होंने लोगों से नियमित योगाभ्यास को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से योग को वैश्विक पहचान मिली है। आज दुनिया के अनेक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे। इससे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मुख्यमंत्री से राज्य के स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में योग को शामिल करने का अनुरोध किया था। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुमार ने कहा कि आधे घंटे का योग कार्यक्रम वैकल्पिक तौर पर पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए।
1: आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध की है कि योग को बिहार के जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उसके पाठ्यक्रम में शामिल करें। आधे घंटे का एक प्रोग्राम होना चाहिए योग का, जिसमें योग ध्यान, योग निद्रा कराई जाए, और वो कोई बात ही नहीं है आप करने के लिए। हम इलेक्टिव रखेंगे, आपको करना है करें, ना करना है ना करें। उसके लिए कोई अटेंडेंस बनाने की जरूरत नहीं है, क्लास करने की जरूरत नहीं है। अगर करें तो करें, कोई एग्जाम नहीं लेंगे बस।
0: मुंगेर स्थित बिहार योग विद्यालय के पादुका दर्शन आश्रम में विद्यालय के अध्यक्ष स्वामी कैवल्यानंद महाराज के संचालन में योगाभ्यास किया गया। इसमें योग साधकों, श्रद्धालुओं और आम नागरिकों ने भाग लिया। औरंगाबाद के सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित योग कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कटिहार के फणीश्वरनाथ रेणु ऑडिटोरियम में रेल मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग शिविर में भाग लिया। शिविर का उद्घाटन डीआरएम किरेंद्र नरह ने किया। लखीसराय के बड़ैया प्रखंड अंतर्गत बीएनएम कॉलेज परिसर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त समेत कई वरीय अधिकारी शामिल हुए। भभुआ व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित योग कार्यक्रम में न्यायिक पदाधिकारियों ने योगाभ्यास किया। पटना के इको पार्क में सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय पटना और एसएसबी की 40वीं वाहिनी के संयुक्त तत्वावधान में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अरवल के समाहरणालय पार्क में आयोजित योग कार्यक्रम में जिलाधिकारी अमृता बैंस समेत विभिन्न पदाधिकारियों ने योगाभ्यास किया। भोजपुर जिला मुख्यालय आरा स्थित खेल भवन में आयोजित योग शिविर में विभिन्न खेल संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने योग किया। सुपौल के महात्मा गांधी चिल्ड्रन पार्क, दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर, अररिया के व्यवहार न्यायालय प्रांगण और खेल भवन, बक्सर के रामरेखा घाट समेत सभी जिलों में योग शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के तत्वावधान में आज नीट यूजी पुनर्परीक्षा का आयोजन किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा भारत के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए। प्रदेश के 34 जिलों में 331 केंद्रों पर नीट यूजी परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो गई। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू हुई और अपराह्न 5:15 बजे समाप्त हुई। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। पटना में कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा भवन के आसपास विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई। इसके साथ ही कई मार्गों पर परीक्षा की समाप्ति तक वन वे ट्रैफिक लागू रहा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की आज पटना में आयोजित बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर निर्वाचन की विधिवत घोषणा की गई। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इससे संगठन को नई वैचारिक ऊर्जा मिलेगी। बैठक में उमेश सिंह कुशवाहा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर निर्वाचन को भी औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया। राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अन्य राज्यों में भी जदयू को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वे स्वयं अन्य राज्यों में जाकर पार्टी के विस्तार के लिए कार्य करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
3: राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी के निर्वाचन का अनुमोदन किया गया। इस बैठक में चार प्रस्ताव पेश किए गए।
2: बैठक में पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए। समस्तीपुर के रहने वाले युवा क्रिकेटर खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। वैभव ने श्रीलंका के दाम्बुला में खेले जा रहे त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में आज श्रीलंका ए के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदों में अर्धशतक बनाया। इनमें 5 चौका और 5 छक्का शामिल है। वैभव ने 29 गेंदों में 94 रन बनाए। इधर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने वैभव की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत को अगला स्टार मिल गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यह खिलाड़ी कई और रिकॉर्ड ध्वस्त करेगा। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल की वापसी हुई है। दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन ने टीम में अपनी जगह बनाए रखी है। सीरीज का पहला मैच 14 जुलाई को एजबेस्टन में खेला जाएगा। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार हो रही हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मानसून की एक ट्रफ रेखा राज्य के जमुई और मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर भागों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश हो सकती है।
4: 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। अररिया, कटिहार एवं किशनगंज जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा उष्ण लहर के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा एवं सुपौल जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
2: इधर राज्य के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज भी बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर समेत विभिन्न जिलों में लू की स्थिति बनी रही। प्रचंड गर्मी के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों में 30 जून तक शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन प्रातःकालीन सत्र में ही करने का निर्देश दिया है। इधर पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने 8वीं कक्षा तक सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 27 जून तक शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। भोजपुर जिला प्रशासन ने कक्षा 8 तक सभी स्कूलों में 24 जून तक पठन पाठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने अपने आदेश में कहा है कि वर्ग 9 से 12 तक की कक्षाएं सुबह 11 बजे तक ही संचालित की जाएंगी। दरभंगा और जयपुर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा आज से शुरू हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान की राजधानी जयपुर के खातीपुर

0: में आयोजित समारोह में सप्ताह के 6 दिन चलने वाली इस नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस ट्रेन का नियमित परिचालन कल से शुरू होगा। नई ट्रेन सेवा से मिथिलांचल और उत्तर बिहार के यात्रियों, विशेषकर कामगारों, व्यापारियों और पर्यटकों को राजस्थान आने जाने में अधिक सुविधा मिलेगी। पटना जिले के दानापुर अनुमंडल अंतर्गत शाहपुर दियारा के हेतनपुर गांव में गंगा नदी में स्नान के दौरान डूबने से 3 किशोरों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नहाते हुए ये किशोर गहरे पानी में चले गए और डूब गए। अंचलाधिकारी चंदन कुमार ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दानापुर से भाजपा विधायक और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मृतक के परिजनों को नियमानुसार उचित मुआवजा और सरकारी सहायता दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वैशाली जिला प्रशासन द्वारा संचालित जियो नन्ही परी पहल को बालिका सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रतिष्ठित एस्कॉच अवार्ड मिला है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने यह सम्मान प्राप्त किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने संदेश में कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की घोषणा, अगले वर्ष से योग राज्य के स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नीट यूजी पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न। राज्य के 34 जिलों के 331 केंद्रों पर किया गया परीक्षा का आयोजन। और वैभव सूर्यवंशी के नाम नया विश्व रिकॉर्ड, श्रीलंका ए के खिलाफ एक दिवसीय मुकाबले में 11 गेंदों पर सबसे तेज अर्धशतक लगाया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभे खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है गोपालगंज जिले की हलचल। गोपालगंज जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता मदेश कुमार तिवारी।
4: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज जिले में विभिन्न स्थानों पर योग शिविरों का आयोजन किया गया। शहर के मिंज स्टेडियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सदर विधायक सुभाष सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और योगाभ्यास किया। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी री एग्जाम का आयोजन जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। परीक्षा को कदाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई तथा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई। परीक्षा में कुल 3,906 अभ्यर्थियों ने शामिल होने की व्यवस्था की गई थी। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बीते दिनों प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास कार्य हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस

0: इस पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें बिना सीटेट या टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को वर्ष 2028 तक यह योग्यता प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। मंत्री ने कहा कि बिहार की स्थिति अन्य राज्यों से अलग है, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक, शिक्षा मित्र और टीआरई के माध्यम से नियुक्त शिक्षक कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है।
1: क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के हम भी चिंतित हैं, सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो देश भर के मामले को देख करके और कोई ना कोई डायरेक्शन हमेशा वहां से पास होता रहा है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर न हम हैं न हमारी सरकार है, उसका अध्ययन करेंगे। हमने अपने लीगल टीम को कहा है कि उसका अध्ययन करिए।
0: जिले में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार जारी है। गर्म हवाओं और उमस भरे मौसम के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। वर्षा नहीं होने के कारण कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि सारण नहर में पानी छोड़े जाने के बाद नहर क्षेत्र के किसानों ने धान की नर्सरी तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन ने लोगों से दोपहर में अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यालयों के संचालन को लेकर विशेष निर्देश जारी किया है। जिला पदाधिकारी ने आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र तथा कक्षा 1 से 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 27 जून तक रोक लगा दी है। वहीं कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई केवल सुबह 11 बजे तक ही संचालित करने का निर्देश दिया गया है। इधर जिले में प्रशासनिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। गोपालगंज के जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा का स्थानांतरण कर दिया गया है। उनकी जगह पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समीर सौरभ को नया जिलाधिकारी बनाया गया है। बीते दिनों जिले में बिसूत्री कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार तथा अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की गई तथा जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
2: जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है और NDA सरकार केंद्र और राज्य की योजनाओं का हमारी जनता तक सही रूप से पहुंचे, इसको गंभीरता के साथ अगली बैठक के पूर्व अनुपालन को लिए निर्देश दिया गया है।
0: इधर रेल यात्रियों के लिए जिले में एक महत्वपूर्ण सुविधा शुरू हुई है। छपरा थावे रेलखंड के दिघवा दिघोली स्टेशन पर थावे सूरत ताप्ती गंगा एक्सप्रेस का ठहराव प्रारंभ हो गया है, जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने किया। उन्होंने कहा कि इस ठहराव से क्षेत्र के लोगों को बड़े शहरों में आने जाने की सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। पिछले दिनों जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारी पैदल चलकर न्यायालय पहुंचे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गीता गुप्ता ने बताया कि ईंधन की उपलब्धता में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए ऊर्जा संरक्षण और देश हित के संदेश के रूप में यह पहल की गई है। गोपालगंज को पश्चिम चंपारण से जोड़ने वाले मंगलपुर सेतु में पिलर संख्या 5 के समीप स्पेन में गैप पाए जाने के बाद प्रशासन ने बड़े मालवाहक वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। सेतु की तकनीकी जांच के लिए IIT और NIT पटना के विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है, जिनकी निगरानी में मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह को गोपालगंज न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है। विशेष MP MLA न्यायालय ने शर्तों के साथ उन्हें जमानत प्रदान की है। उन पर मीरगंज थाना में हथियार लहराने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
3: अभी आप सुन रहे थे गोपालगंज जिले की।
4: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ई मन पसंद।

ई मनपसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी। चलिए हम शुरू करते हैं गीतों का सफ़र। आपकी फरमाइश के

आधार पर दिलवाले फिल्म के एक नगमे से, जिसे आवाज़ें दी हैं कुमार सानू, अलका याग्निक और अजय देवगन ने। समीर के लिखे गीत की तर्ज बनाई है नदीम श्रवण ने, और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। जी हाँ, आप हैं छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले, कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आप हैं, आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूलवाले, और लखमीनिया ज़िला बेगूसराय से शमीम अहमद राइन ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं श्रोतागण, आप हैं नूर महल मेहसौल सीतामढ़ी बिहार से, मुसर्रत जहाँ नाज, तलहत जहाँ नाज, फरहत जहाँ नाज, रिफत जहाँ नाज, नुजहत जहाँ नाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, और कलेर बिहार से आप हैं निकहत परवीन सदफ आरजू और सादिया तस्नीम आलिशा। और एक फरमाइश और भी आई है हमारे श्रोतागण हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये नगमा।

रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है।

तो श्रोताओं, आज के चित्रपट तराने कार्यक्रम में आपने जिन फिल्मों के नगमे सुने उनके नाम हैं क्रमशः पारसमणि, अनपढ़, नवरंग, चरस और शहनाई। इन्हीं गीतों के तोहफों के साथ ही संजय चतुर्वेदी को आज के चित्रपट तराने से दीजिए आज्ञा। नमस्कार, ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। एक नज़र हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

प्रातःकालीन प्रसारण में आप 7:30 पर सुनते हैं नमस्ते रोहतास, और 8:20 पर सुनिएगा अपनी फरमाइशों के फिल्मी नगमे पसंद आपकी कार्यक्रम में। आठ बजकर 45 पर आप सुनते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार, और 9:10 पर सुनिएगा गीत मल्लिका।

सेहतनामा या स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य आप सुनेंगे 9:05 पर और सांध्यकालीन प्रसारण में 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गांव घर।

हमारी बहनें अपना प्रसारण सुनेंगी घर आंगन 5:30 पर और 6:40 पर आप सुनेंगे सांझ गीत।

प्रातःकालीन प्रसारण में लोक माधुरी 10:30 बजे और रसधार आप तक पहुंचेगा 10:45 पर। अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर।

0: होने की संभावना है। हवा की रफ्तार 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और हवा में आर्द्रता 43% रहने की संभावना है। तो यथा कल का मौसम पूर्वानुमान, ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिक गलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के